ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 10 अगस्त 2026 सुबह के 5:53 और 36 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: और अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:10 पर ज्योति आनंद स्टूडियो में लेकर आएंगी प्रोग्राम सुप्रभात, और 7:10 पर रेणु भट्ट फिल्मी सॉन्ग्स लेकर हाजिर होंगी।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4-5 रेनबो पर।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। 6 बजने को है, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

प्रस्तुत है एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की। श्री मोदी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि जो खेलेंगे वे आगे बढ़ेंगे। उन्होंने लोगों से हमेशा भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने की अपील की। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने आज़ादी की भावना का जश्न मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम वाली एक खास मेट्रो ट्रेन शुरू की। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लाभार्थियों को 1 करोड़ से अधिक घर सौंपकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। भारतीय सेना और अमेरिकी नौसेना के बीच विस्फोटक आयुध विनिरोधक अभ्यास आज से 14 अगस्त तक कोची में आयोजित किया जाएगा। सरकार ने प्रवर्तक निदेशालय के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। वे 1993 में बेच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

Hey listeners, good morning and welcome. आकाशवाणी रेनबो के साथ हमारा आज का सफर शुरू हो चुका है. मैं हूँ ज्योति आपके साथ. कार्यक्रम सुप्रभात के साथ 6:10 हो चुके हैं और आपको भी इंतजार था ना. आपको पता था कि आज आपसे रेनबो का कौन सा रंग मिलने वाला है. तो चलिए, इंतजार खत्म हो चुका है, सुप्रभात कार्यक्रम शुरू हो चुका है और मैं हूँ आपके साथ ज्योति. तो आज भी करेंगे कुछ ऐसी बातें जो हमारे आज के दिन को, हमारे आने वाले दिनों को, हमारी ज़िंदगी को और खूबसूरत और आसान बना देंगे.

Hey listeners, welcome back. आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप 102.6 की फ्रीक्वेंसी पर कार्यक्रम सुप्रभात ज्योति के साथ. और आज की मंडे मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है. अभी फिलहाल तो गति इतनी तेज नहीं है, मगर बस अभी कुछ ही देर में बहुत स्पीड बढ़ जाएगी. रास्तों पे ट्रैफिक बढ़ जाएगा.

हर मौसम में फल नहीं देते हैं। नदी भी हर वक्त उफान पर नहीं रहती है, कभी कभी कितने निर्मल आराम से बहती है। तो फिर इंसान से ही क्यों ऐसी उम्मीद की जाती है कि वो हर दिन हर पल पूरी ताकत से बस चलता रहे। चलना ज़रूरी है, मगर हाँ कभी थक जाएं तो रुक जाएं, थोड़ा रुकिए, अपने शरीर को आराम दीजिए, अपने मन को शांति दीजिए और अपने आप से बस इतना कहिए कि मैं रुका हूँ, हारा नहीं हूँ। तो इसलिए कभी कभी बहुत सारे काम के बाद थोड़ा सा एक ब्रेक लेना, थोड़ा सा रुक जाना हारना नहीं होता है, वो आपके अपने आराम के लिए है।

देखा आपने, दिल हमारा जानता है, जाने क्यों। हमारा दिल सबको जानता है मगर उसकी हम सुनते नहीं हैं। बस भागते रहते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा रुकिए, अपने दिल के, दिमाग के, अपने मन की, अपने शरीर की सुनिए। मोबाइल की बैटरी भी चार्ज होती है भाई, उसको भी चार्ज नहीं करेंगे तो मोबाइल भी नहीं चलता है, तभी लंबे समय तक आपका साथ देती है। तो इंसान भी कुछ ऐसा ही है, आराम आपकी कमजोरी नहीं, आपकी अगली ताकत की तैयारी है। इसलिए आज अगर आप थके हुए हैं तो खुद को बिल्कुल दोष मत दीजिए। ठीक है, मंडे मॉर्निंग है, काम पे जाना है, मगर मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि 2 दिन का रेस्ट हो गया है और आज आप फिर से एक रेजुविनेट होकर फ्रेश माइंड से आप काम पे जा सकते हैं। और वो कैसे जा सकते हैं, क्योंकि आपने थोड़ा सा आराम किया था, है ना, किया था ना। चाहे आपने वो अपना टाइम किसी ऐसी एक्टिविटी में दिया जो आपको खुशी देती है, चाहे आपने वो मतलब फ्री टाइम नहीं बिताया, कुछ ऐसा करते गए जिसमें आपको खुशी मिलती है, कुछ नया सीखते हैं, तो वो भी आपको बहुत हैप्पीनेस और रेजुविनेशन देता है। तो ज़िंदगी की कोई ऐसी दौड़ नहीं है जिसमें हर वक्त सबसे आगे रहना ज़रूरी है, तो कभी कभी धीरे चलना भी ज़रूरी है और कभी कभी बस रुक जाना भी, क्योंकि मंजिल तक पहुँचना ज़रूरी है लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले खुद को खो देना ज़रूरी नहीं है।

इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आप और हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आप के हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं तो भी हमें अधूरापन लगता है, और अगर हम में से कोई ना आए मतलब हम या ना आए तो हमें अधूरा लगता है। और आपके मैसेजेस हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग जगहों से, सो वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। और फिर से मिलते हैं आपसे थोड़ी सी एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद, आपसे फिर से जुड़ती हूँ क्योंकि आपका और हमारा साथ यहीं बना हुआ है 102.6 की फ्रीक्वेंसी पर।

0: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: एक जमाने से कहानी है, सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

मंडे मॉर्निंग है आज 10 अगस्त 2026 का दिन है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो और इस वक्त आप हमें सुन रहे हैं और हम आपसे बातें कर रहे हैं। क्या इत्तेफाक है खूबसूरत सा इत्तेफाक है। 102.6 की फ्रीक्वेंसी पर आकाशवाणी रेनबो पर कार्यक्रम सुप्रभात ज्योति के साथ। और वैसे तो आज मंडे मॉर्निंग है और सबके माइंड सबके दिमाग ऐसे सुपर फास्ट स्पीड में भाग रहे हैं ना, मतलब कि एक के बाद एक के बाद ये काम करना है वो काम करना है ना, ऐसा चल रहा है ना मगर हाँ अभी पिछले दो दिन जो आपने बिताए हैं आई थिंक कुछ लोग उसमें रिलैक्स हुए होंगे, माइंड आपका शांत हुआ होगा और आपने इन दो दिनों को एंजॉय किया होगा और रिलैक्स भी किया होगा। तो क्या हुआ है, यही हुआ है कि आराम के बाद हम फिर से रेजुवेनेट हो गए हैं, फिर से रीलोड हो गए हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा है हमारे अंदर और आज के दिन को हम कितना भी खूबसूरत कितना भी अच्छा पॉजिटिव बना सकते हैं। मगर हम बात इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर फिर भी वीकडेज में भी कभी आपको लगे कि हाँ आप बहुत ज़्यादा बर्न आउट हो रहे हैं, थक गए हैं, माइंड फॉग हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो येस यू कैन टेक रेस्ट। हाँ आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा आपकी सेहत से ज़्यादा कुछ भी ज़्यादा नहीं होता है। तो एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको। एक लड़का था गौरव और बहुत मेहनती था और सुबह सबसे पहले उठ जाता था, दिन भर काम करता था और अपने सपनों के पीछे भागता था और लोग उसकी तारीफ़ करते थे, देखो कितना मेहनती बच्चा है। तो गौरव को भी लगता था कि हाँ

जितना ज़्यादा काम करूँगा उतनी ज़्यादा सफलता मुझे मिलेगी। तो एक दिन उसके जो पिताजी थे, उसके फादर थे, उन्होंने उसे एक पुरानी घड़ी ला कर दी। तो गौरव ने घड़ी हाथ में ली और पूछा कि ये घड़ी इतनी खास क्यों है पापा। तो उसके जो पापा थे वो मुस्कुराए और बोले कि क्योंकि ये मुझे एक बहुत ज़रूरी बात सिखाती है। तो गौरव ने घड़ी की तरफ बहुत ध्यान से देखा और पूछा कि क्या बात सिखाती है। तो उसके फादर ने बोला कि इसकी सेकंड वाली सुई लगातार चलती रहती है, लेकिन घड़ी की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ उसका चलना नहीं है। और जो गौरव था बहुत ध्यान से सुन रहा था और चुप रहा। फिर उसके फादर बोले कि अगर घड़ी की सुई हर समय तेज़ भागने लगे तो क्या वो सही समय बताएगी। तो गौरव ने कहा नहीं। तो फिर उसके फादर मुस्कुराए और बोले कि बस जिंदगी भी ऐसी ही है। तो गौरव को ये बात समझ नहीं आई। तो फिर उन्होंने फिर से समझाया कि लगातार चलते रहना ज़रूरी नहीं, सही दिशा में चलते रहना ज़रूरी है। फिर उन्होंने गौरव से कहा कि जब आपका शरीर थक जाए तो आराम करो, जब मन थके तो थोड़ा शांत हो जाओ, क्योंकि थका हुआ इंसान कभी कभी मंजिल से ज़्यादा अपनी थकान को देखने लगता है। उस दिन गौरव पहली बार अपने लिए रुका। उसे महसूस किया कि आराम करने के बाद उसके काम कम नहीं हुए थे, बल्कि उसकी सोच साफ हो गई थी, उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई थी और वो नए क्रिएटिव आइडिया सोचने लग गया था। तो बस यही हम बताना चाहते हैं कि ठीक है, भागिए, दौड़िए, लक्ष्य बनाइए, उन्हें पूरा कीजिए, मगर कभी कभी अगर रुकने का दिल कर जाए ना तो थोड़ा रुक जाइए, थम जाइए और हमारे साथ यूं ही आकाशवाणी रेनबो पर खूबसूरत से गाने सुनते रहिए।

बिल्कुल सही बात है, हम में से हर व्यक्ति कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है, हर किसी को ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चाहिए, मगर सुकून के बिना और हेल्थ के बिना तो कुछ भी मिल जाए हमें, हम उसे एंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि इस खूबसूरत से गाने में आपने सुना कि वो कह रहे थे कि सांस भी कम आती है और नब्ज़ भी धीरे हो गई है और बस मैं क्या लब रहा हूँ, मतलब कि क्या ढूंढ रहा हूँ, तो वही सवाल सबका है। मगर कितना भी पैसा, कितना भी स्टेटस, पोजीशन, वेल्थ सब कुछ मिल जाए, मगर अगर हेल्थ नहीं होगी तो आप इन सब चीज़ों को कैसे एंजॉय करेंगे? और आपकी हेल्थ कैसे होगी जब आप अपने शरीर को, मन को, दिमाग को थोड़ी देर के लिए आराम देंगे? और आराम का मतलब ये नहीं है कि रुक के ही रहें, बस थोड़ा सा आराम करना है और अपने आप को शांत करना है, और उसके बाद नए क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ, नए नए आइडियाज़ के साथ आप फिर से आगे बढ़ सकते हैं। और यकीन मानिए कि जब आप रेस्ट करके उठते हैं तो आपके जो काम करने की स्पीड होती है ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और आपका माइंड भी बेटर वर्क करता है। तो दुनिया कुछ देर इंतज़ार कर सकती है, आपकी ज़िंदगी को आपकी ज़रूरत है, लेकिन आपके थके हुए रूप की नहीं, आपके संतुलित और खुश रूप की। जब आप बैलेंस्ड होते हैं, हैप्पी होते हैं, तभी सब आपसे मिलना, बात करना पसंद करते हैं। तो बस आराम मंजिल से दूर नहीं करता है, कभी कभी वही हमें सही रास्ते पर वापस ले आता है।

आपके दिमाग में थोड़ी सी हवा चली, आपकी सोच बदली, आपको अच्छा लगा, आपके मैसेजेस जुड़े और एक श्रोता ने लिखा कि मैं तो किसान हूँ, रुक ही नहीं सकता। तो किसान हैं और आप हमारा पेट भरते हैं और हमें अनाज देते हैं, तो आपके लिए आराम करना ज़रूरी है, तो बिल्कुल आराम भी कीजिए। और जो आप काम कर रहे हैं वो तो है ही बहुत अच्छा। और हमारे साथ और बहुत सारे लिसनर्स जुड़े अलग अलग जगह से, और जैसे कि इस गाने में बड़ी खूबसूरत सी लाइन थी कि ले ले दौलत सारी और मुझे कर दे रिहा। तो जैसा मैंने कहा कि कभी कभी सब कुछ हो जाने के बाद भी अगर हमारे अंदर सुकून नहीं है और हेल्थ नहीं है तो हम इन सब चीज़ों को कभी भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम अक्सर कुछ ना कुछ, हर इंसान ढूंढता है, अलग अलग जीवन के स्टेजेस में ढूंढता है, अलग अलग उम्र में ढूंढता है और अलग अलग सिचुएशंस में ढूंढता है। तो बस सबका जवाब अलग अलग हो सकता है, मगर हाँ थोड़ा सा आराम करिए ताकि आप दुगनी ऊर्जा के साथ, नए नए आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ सकें। और जैसे कि मुझे पता है कि आप भी ये जानना चाहते हैं, ढूंढ रहे हैं कि अगला कार्यक्रम कौन लेकर आएगा, तो बता दूं आपको कि रेणु भट्ट होंगी आपके साथ लेकर 7:02 से गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर, और उसके बाद 8:00 मैं जुड़ूंगी आपके साथ लेकर गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर का दूसरा अंक, और 9:00 फिर आपके साथ होंगी रेणु भट्ट लेकर दिल के तराने, गाने नए पुराने, रेनबो पर यह सिलसिला चलता रहेगा, रंग बदलते रहेंगे और आपको पता लगता रहेगा कि आज आप क्या क्या कार्यक्रम सुनते रहेंगे किन के साथ। तो बस यूं ही सुनते रहें आकाशवाणी रेनबो। मैं लेती हूं आपसे थोड़ी सी देर के लिए विदा और मिलती हूं आपसे 8:00। कीप एंजॉयिंग, कीप लिसनिंग, ब्यूटीफुल मंडे मॉर्निंग। और मंडे को वैसे तो मन बहुत कुछ कहता है ना, मगर आज हम फिर से मन को मन की नहीं मानेंगे, मन को अपने हिसाब से चलाएंगे और फिर से नई ऊर्जा के साथ आज की मंडे मॉर्निंग को, अपने इस हफ्ते को शुरू करेंगे।

नमस्कार, पेश है अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बात की। श्री मोदी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि जो खेलेंगे वो आगे बढ़ेंगे। उन्होंने लोगों से हमेशा भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने की अपील की। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने आजादी की भावना का जश्न मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम वाली खास मेट्रो ट्रेन शुरू की। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लाभार्थियों को 1 करोड़ से अधिक घर सौंपकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच विस्फोटक आयुध निरोधक अभ्यास आज से 14 अगस्त तक कोची में आयोजित किया जाएगा। सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। वे 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। भारत ने बोलीविया की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 8 मीट्रिक टन जीवन रक्षक और आवश्यक दवाइयों की खेप भेजी। रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए हिंद महासागर और भारत तक रेल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विश्व एथलेटिक अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में बसंत कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक और शहनवाज खान ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीता और FIBA अंडर 18 एशिया बास्केटबॉल कप का आयोजन अहमदाबाद में 13 से 23 अगस्त तक किया जाएगा। भारत 14 अगस्त को जापान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। तो ये थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

0: की वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं रेणु भट्ट, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, जहाँ पर हम आपके साथ शेयर करते हैं ढेर सारी बातें जो आपके लिए ज़रूरी हैं और आपको जानना चाहिए। अच्छा, आज है मंडे, मंडे मॉर्निंग की एक बहुत ही ब्राइट सी सुबह। किस किस का दिल कर रहा है कि आज वो कुछ ना करें, आज बस घर पर बैठा जाए। कल ही तो संडे था। अच्छा, संडे कई बार क्या लगता है, दो संडे होने चाहिए हफ्ते में, संडे के बाद संडे, एक संडे संडे के खुमार से बाहर निकलने के लिए, पर संडे के बाद आ जाता है मंडे, मंडे यानी कि काम का दिन और काम करने के लिए पूरा हफ्ता बस शुरू ही हुआ है। तो ये पूरा हफ्ता अच्छा जाए, आज के दिन अच्छा जाए, दिन की शुरुआत बेहतरीन हो, बस हम यही कामना करते हैं। बेहद खूबसूरत ट्रैक आप सभी के लिए प्ले करते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में, गुड मॉर्निंग। Thank you.

और अब समय है हम उन व्यक्तित्व को याद करें जिन्हें आज के दिन याद करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भारत रत्न से सम्मानित भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी की। इनका पूरा नाम रहा वराहगिरी वेंकट गिरी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गृहनगर बहरामपुर में ही संपन्न हुई। बहरामपुर ओडिशा में 10 अगस्त 1894 इनका जन्म हुआ। इसके बाद यानी कि अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद ये डबलिन यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने के लिए आयरलैंड चले गए और वहाँ वे डी वलेरा जैसे प्रसिद्ध ब्रिटिश विद्रोही के संपर्क में आने और उनसे प्रभावित होने के बाद आयरलैंड की स्वतंत्रता के लिए चल रहे सिनफिन आंदोलन से जुड़ गए। परिणाम स्वरूप उन्हें आयरलैंड से निष्कासित कर दिया गया और प्रथम विश्व युद्ध के समय सन 1916 में वो वापस भारत लौट आए और भारत लौटने के तुरंत बाद वे श्रमिक आंदोलन से जुड़ गए। इतना ही नहीं, रेलवे कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से उन्होंने बंगाल नागपुर रेलवे एसोसिएशन

एसोसिएशन की स्थापना भी की और अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और इस वजह से अंग्रेजों ने इन्हें जेल भी भेज दिया। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद उन्हें सिलोन में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किया गया और सन 1969 में जब राष्ट्रपति के चुनाव आए तो ये चौथे राष्ट्रपति बनाए गए। आज इनकी जयंती है, हम इन्हें नमन करते हैं और अपने कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आप इस तरह हमारे साथ बने रहें। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर, और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं रेणु भट्ट एक बार फिर से। और हम आपको बता दें कि आज के दिन ऐसा क्या कुछ खास हुआ था जिसने आज के दिन को इतिहास में खास बनाया। तो हम आप सभी को बता दें कि आज ही के दिन सन 1741 में, यानी कि 1741 में राजा मार्तंड वर्मा ने डच सेना को हराया, जिससे भारत में डच औपनिवेशिक शासन का अंत हुआ। और इसके साथ ही आज ही के दिन एक सन 1979 की बात करें तो उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 को प्रक्षेपित किया गया था। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसने आज के दिन को इतिहास में खास बनाया। और भी कई चीज़ें हुई होंगी यकीनन, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो हमें गौरवान्वित करती हैं और हमें उन्हें याद करना चाहिए, इन सभी बातों को आपके साथ हमने साझा की आज के दिन का इतिहास। और आप ये बात आगे भी शेयर कर सकते हैं, अपनी बातें भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं, किस तरह से बताऊंगी जरूर। लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद विशाल डडलानी और शिल्पा राव की आवाज़ में आप सभी के लिए बेहद खूबसूरत ट्रैक आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

वेलकम बैक। और आपको शरारा होना भी चाहिए क्योंकि आप जुड़े हुए हैं हमसे यानी कि आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल से। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में आप सभी का स्वागत करती एक बार फिर से मैं रेणु भट्ट। और चलिए अपनी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको हमें मेल करना है। मेल करके आप हमें बता सकते हैं कि आप क्या बात है जो हमसे शेयर करना चाहते हैं। feedback@fmrainbow@gmail.com पर आप हमें मेल करें और अपने दिल की बात शेयर करें। मैसेजेस आप करते रहते हैं, आप सभी के मैसेजेस का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बहुत प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध नाम हम आपके साथ साझा करेंगे, व्यक्तित्व आपके साथ साझा करेंगे। मैं बात कर रही हूँ पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी की। भारत के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विद्वान, शास्त्रीय संगीत के सबसे बड़े आधुनिक आचार्य के रूप में उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। पूरी तरह से निस्वार्थ और समर्पित संगीत साधक, इन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को वैज्ञानिक पद्धति से व्यवस्थित, वर्गीकृत और मानकीकृत करने का पहला आधुनिक प्रयास किया। इन्होंने देश भर में घूम घूम कर उस्तादों से बशिंदे एकत्रित करने और विभिन्न रागों पर उनसे चर्चा करके उनके मानक रूप निर्धारित करने यानी कि उनको स्टैंडर्ड रूप दे निर्धारित करने और संगीत शास्त्र के रहस्यों से पर्दा उठाते हुए अनेक विद्वतापूर्ण की पुस्तकें भी लिखी उन्होंने, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य था। इनकी संगीत यात्रा 1904 में शुरू हुई। इन्होंने भारत के सैकड़ों स्थानों पर भ्रमण किया जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, और संगीत संबंधी साहित्य की खोज की। इन्होंने बड़े बड़े गायकों को सुना, उनका संगीत सुना, उनकी स्वर लिपि तैयार कर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति क्रमिक पुस्तक मालिका नाम से एक ग्रंथमाला प्रकाशित करवाई जिसके 6 भाग हैं। और शास्त्रीय ज्ञान के लिए इन्होंने हिंदुस्तानी संगीत पद्धति जो कि हिंदी में भातखंडे संगीत शास्त्र के नाम से छपी है, इसके 4 भाग मराठी में भी लिखे। संस्कृत भाषा में इन्होंने लक्ष्य संगीत और अभिनव राग मंजरी नामक पुस्तकें लिखकर प्राचीन संगीत की विशेषताओं, उसमें फैली हुई भ्रांतियों पर प्रकाश डाला। इन्होंने अपना शुद्ध ठाट बिलावल मानकर ठाट पद्धति स्वीकार करते हुए 10 ठाटों में से बहुत से रागों का वर्गीकरण किया। और आज इनकी जयंती है, सन 1860 में इनका जन्म हुआ था मुंबई में। हम इस महान व्यक्तित्व को नमन करते हैं, अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह हमसे जुड़े रहें। और जो भी व्यक्तित्व के बारे में हम आपसे बातें साझा करते हैं ना, बहुत सरासरा सी प्रेरणा हम सभी से लें तो हम सभी का जीवन बहुत बहुत बेहतरी की ओर बढ़ेगा। तो इतना छोटा सा प्रयास, कदम हम बढ़ा सकते हैं अपने सुधार के लिए।

अब बात करेंगे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की, और आज इनकी पुण्यतिथि है। ये हिंदी के पहले रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग को विधा का दर्जा दिलाया और हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। उनकी रचनाओं की अगर हम बात करें, अगर आप उनकी रचनाओं को आपने पढ़ा है, उनको पढ़ते हैं, तो आपको पता होगा कि कैसे उनकी रचनाएं सिर्फ मन में गुदगुदी नहीं पैदा करती, लेकिन समाज में जितनी भी कुरूतियाँ हैं या जितनी भी समस्याएँ हैं जिसे हम अपने आप को अलग तो नहीं कर सकते, उनके बारे में वो हमें रूबरू करवाते हैं। मध्यम वर्गीय मन की सच्चाइयों को हरिशंकर परसाई ने बहुत ही पास से पकड़ा है और सामाजिक पाखंड और रूढ़िवादी जीवन मूल्यों की खिल्ली उड़ाते हुए उन्होंने सदैव विवेक और विज्ञान सम्मत दृष्टि को ही सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया और हमारे सामने प्रस्तुत किया। उनकी भाषा शैली में एक खास प्रकार का अपनापन नजर आता है। और अगर हम उनकी रचनाओं की बात करें तो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, तब की बात और थी, बेईमानी की परत, भोला राम का जीव, विकलांग, श्रद्धा का दौरा, ज्वाला, जल आदि। तो ये कुछ ऐसी रचनाएं थी उनकी जो उन्होंने लिखी। उनके पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, शिक्षा सम्मान, शरद जोशी सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। और आज इनकी पुण्यतिथि हम इन्हें नमन करते हैं और एक और व्यक्तित्व के बारे में आपके साथ बातें साझा करेंगे जिनका नाम है सरस्वती देवी। भारत की पहली महिला संगीतकार थी वो, जिन्होंने 1930 और 1940 के दशक में हिंदी सिनेमा में काम किया। पूरा नाम खुर्शीद मिनोखर होमजी, और संगीत के प्रति इनके प्रेम को देखते हुए इनके पिता ने प्रख्यात संगीताचार्य विष्णु नारायण भातखंडे के मार्गदर्शन में इन्हें शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दिलाई। इनकी प्रमुख फिल्मों की हम बात करेंगे जिसमें इन्होंने संगीत दिया, वह जीवन नैया, अछूत कन्या, बंधन, नया संसार, प्रार्थना, भक्त रैदास, पृथ्वी वल्लभ, खानदानी, नकली हीरा और कई फिल्में। पहली फिल्म रही इनकी 1936 में आई जीवन नैया, और हम इन्हें नमन करते हैं। अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और आप यूं ही हमारे साथ बने रहे कट ऑन इटली एनसीआर में।

और चलिए अब क्योंकि कुछ ही पलों में मैं आपसे इजाजत ले लूंगी और 7:45 पर आप सुनेंगे स्पोर्ट्स पल्स शिवेंद्र के साथ। तो इसीलिए पहले मैं आपको बता दूं, एक बहुत जरूरी बात मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूं कि कांवड़ मार्गों पर 11 अगस्त तक भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू हो गया है गुरुग्राम। और अगर आप एयरपोर्ट जाने के लिए जाना चाहते हैं तो मेट्रो से चलने की सलाह आपको दी गई है। ट्रैफिक एडवाइजरी पढ़कर देखकर ही आप अपने घर से निकले ताकि आप ट्रैफिक में ना फंसे, क्योंकि इस समय पर सावन की शिवरात्रि है कल, और हरिद्वार और गंगोत्री से गंगा जल लेकर आ रहे हैं कांवड़िए, और इनकी संख्या जो है राजधानी की सड़कों पर बढ़ने वाली है। तो आप अपने पास थोड़ा

एक्स्ट्रा समय लेकर टाइम लेकर के घर से निकले ताकि अगर आप जाम में फंसे तो आपको जहाँ पर पहुँचना हो समय से आप पहुँच पाएं। कुछ रूट हैं जहाँ पर आपको जाने से परहेज करना है, जैसे अक्षरधाम से धोलाकुआ मार्ग, दक्षिण पूर्वी दिल्ली मार्ग जिसमें सरायकाले खां, आश्रम चौक और एम्स, अरबिंदो मार्ग, IIT लाडोसराय, आय नगर बॉर्डर इस तरफ और उत्तर पूर्वी दिल्ली आंतरिक मार्ग पर वजीराबाद रोड, लोनी फ्लाईओवर, गोकुलपुरी, GT करनाल रोड, सिंधु बॉर्डर मार्ग पर आपको भोपुरा बॉर्डर, वजीराबाद ब्रिज, आफ्टर रिंग रोड, मुकरबा चौक, GT करनाल रोड, सिंधु बॉर्डर, पश्चिमी दिल्ली लिंक पर और NH 9 और बदरपुर मार्ग के साथ साथ नोएडा गुरुग्राम कनेक्टिंग मार्ग 1 और कनेक्टिंग मार्ग 2। इन सभी को आपको देखना है, अवॉइड करना है, इन रास्तों पर आप ना जाएं ताकि अगर आप जाएंगे तो जाम में फंस सकते हैं, तो इसीलिए इनको अवॉइड करें और जो ऑल्टरनेटिव रास्ते आपको सजेस्ट किए जा रहे हैं उनको आप फॉलो करें, उनको आप ले करके ही घर से निकलें।

तेरी बस तेरी। तो हर महादेव की गूंज में आप भी खो जाएं और इस बात को ध्यान रखें कि सड़कों पर यातायात प्रभावित ना हो, ये हमारी ही जिम्मेदारी है। तो अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते रहें। और अभी फिलहाल मुझे रेणु भट्ट को दे इजाजत, थोड़ी देर में फिर मिलूंगी आपसे दिल के तराने गाने नए पुराने में। शिवेंद्र लेके आ चुके हैं स्पोर्ट्स पल्स, खेलों के मैदान में क्या कुछ घट रहा है आपको बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर। गुड बाय एंड टेक केयर।

0: Parey. Hima Das has done it.
1: India win by 137 runs. They go 2-1 up in the series.
2: Sports Pulse.
3: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात साथियों, शिवेंद्र का प्यार भरा नमस्ते स्वीकार कीजिए। और खेलों की दुनिया हमेशा की तरह जीवंत बनी हुई है, जैसा हम हमेशा कहते हैं, रोमांच से भरपूर है। एक से बढ़कर एक एक्टिविटीज चल रही हैं। कुछ खेल मेलों का समापन हो चुका है तो कुछ खेल मेले शुरू होने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, अगर हम किसी खेल मेले के समापन की बात कर रहे हैं, संपन्न होने की बात कर रहे हैं, तो वो है राष्ट्रमंडल खेल, जो कि ग्लासगो में ऑर्गेनाइज किए गए थे। और लगातार इन खेलों के बारे में हम आपसे बात करते रहे हैं जब ये खेल चल रहे थे। और ऑफ कोर्स भारत ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया राष्ट्रमंडल खेलों में। हम जरूर उसके बारे में बात करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन साथ ही साथ कुछ आने वाले खेल मेलों की बात करें तो, या खेल आयोजनों की या इवेंट्स की बात की जाए तो उसमें कई इंपॉर्टेंट इवेंट हैं। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम इस समय श्रीलंका में पहुंच चुकी है, 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी। 15 अगस्त से पहला टेस्ट मैच शुरू होगा। इसके अलावा हॉकी का विश्व कप भी 14 अगस्त से शुरू हो रहा है और यहां पर भी भारतीय टीम अपनी चुनौती पेश करती हुई नजर आएगी। भारत ने साथियों सिर्फ एक बार 1975 में हॉकी का विश्व कप जीता है, और वो भी ट्रेजेक्ट्री जो थी वो यात्रा बड़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि 1971 में विश्व कप में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, 1973 में भारत ने हॉकी विश्व कप में सिल्वर मेडल जीता, और 1975 में भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। हम सभी जानते हैं कि ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी की यात्रा बड़ी सुनहरी रही है। पिछले 2 ओलंपिक खेलों से भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन 1928 से लेकर के 1980 तक भारत ने 8 गोल्ड मेडल ओलंपिक हॉकी में जीते थे और भारत को तब महाशक्ति में शामिल किया जाता था। भारतीय टीम एक रीग्रुप करने की कोशिश कर रही है, दोबारा से वापसी का प्रयास कर रही है, पेशेवर एटीट्यूड उसमें आया है। और हॉकी विश्व कप जहां पर भारतीय टीम अपनी चुनौती पेश करती हुई नजर आएगी, उम्मीद करेंगे कि टीम का प्रदर्शन बेहतर होगा। तो 2 इंपॉर्टेंट इवेंट हैं जो कि शुरू होने वाले हैं। एक तो भारतीय क्रिकेट टीम का श्रीलंका दौरा है और वहां पर 2 टेस्ट मैच भारतीय टीम खेलेगी। इस समय टीम थोड़ी इंजरीज की समस्या से जूझ रही है, उसके बारे में जरूर हम आपसे बात करेंगे। लेकिन राष्ट्रमंडल खेलों की बात कर लेते हैं, जिसका जिक्र हमने सबसे पहले किया था। राष्ट्रमंडल खेलों के जो विजेता खिलाड़ी थे उनसे कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और सभी खिलाड़ी बहुत प्रसन्न थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके। और हो भी क्यों ना, एक तो आप पोडियम फिनिश कर रहे हैं, आप देश का नाम रोशन कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में देश के लिए पदक जीत रहे हैं, आपका स्वदेश वापसी पर धूमधाम से स्वागत हो रहा है, और उसके बाद देश का शीर्ष नेतृत्व आपको आमंत्रित कर रहा है, आपसे मुलाकात कर रहा है, आपका उत्साह वर्धन कर रहा है, इससे बढ़ करके और क्या बात हो सकती है। खिलाड़ी जब राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिले तो प्रधानमंत्री महोदय ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
4: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
3: भारत माता की जय के नारे लगाए गए। और जैसा प्रधानमंत्री महोदय हमेशा कहते हैं कि जो खेलेगा वो खेलेगा, और खेलों को लेकर के पिछले वर्षों में यह तो मानना पड़ेगा कि हमारे मुल्क में काफ़ी जागरूकता आई है, खिलाड़ियों को रिकॉग्नाइज किया जाने लगा है। राष्ट्रमंडल खेलों की बाबत अगर हम बात कर रहे हैं तो 2030 आज से 4 साल बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मकाम होने वाला है भारतीय खेल परिदृश्य के लिहाज से, क्योंकि भारत राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। और 2030 में अहमदाबाद में इन खेलों का आयोजन होगा, 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था। तो जब भी बड़े मेगा इवेंट किसी भी देश में होते हैं तो खेलों का प्रचार प्रसार को बढ़ावा तो मिलता ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होती है। भारत ने, हम आपको बताएं साथियों, 1934 वो पहला साल था जब भारतीय दल ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेना शुरू किया। वैसे राष्ट्रमंडल खेलों का नाम समय के साथ साथ बदलता रहा। 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी, 2010 में दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने इतिहास रचा था, 100 पदक जीते थे, 38 स्वर्ण, 27 रजत और 36 कांस्य उसमें शामिल थे। ग्लासगो में 2014 में भारत ने 64 पदक जीते जिसमें 15 गोल्ड, 30 सिल्वर और 19 ब्रॉन्ज शामिल थे। 2018 में गोल्ड कोस्ट में भारत ने 66 पदक जीते जिसमें 26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य पदक शामिल थे। बर्मिंघम में 2022 में 21 स्वर्ण, 16 रजत, 23 कांस्य, कुल 60 पदक और

आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।

0: 2026 में ग्लासगो में हम सभी जानते हैं कि भारत ने 13 स्वर्ण 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते। भारत मेडल टैली में चौथे पायदान पर रहा और बहुत सारे जो इवेंट्स थे, बहुत सारी स्पर्धाएं, बहुत सारे खेल हटा दिए गए थे और उस वजह से भारत का जो कंटिंजेंट था वो भी छोटा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस दिया। 13 स्वर्ण पदक जिसमें भारतीय महिलाओं ने मुक्केबाजी में गोल्डन पंच लगाए थे और स्वर्ण पदक जीतने की बौछार कर दी थी। और स्वर्ण पदक जीतने वाली जो खिलाड़ी राष्ट्रमंडल खेलों में थी उन्हीं में से एक थी साक्षी चौधरी, जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय से जिनको मिलने का सौभाग्य मिला कल। और साक्षी चौधरी क्या कह रही थी जब वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंची, तो उनके क्या उद्गार थे, जल्दी से सुनते हैं।
1: हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी चौधरी। आज हम सब कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट को हमारे ऑनरेबल पीएम सर ने बुलाया है और हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है इस बात पर। हमें इनसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा।
0: जी हाँ, साक्षी चौधरी कह रही थी कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मिलकर के उनको बहुत ही अच्छा लगा। और सच्चाई तो ये है कि प्रधानमंत्री महोदय से मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है और भारतीय खिलाड़ियों को जो राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता थे उनको ये सौभाग्य हासिल हुआ, इसके लिए हम ज़रूर उनको मुबारकबाद देते हैं और वो इसके हकदार भी हैं क्योंकि उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, पोडियम फिनिश किया है एक क्वाड्रेनियल इवेंट में राष्ट्रमंडल खेलों में। और 2030 में उम्मीद की जा सकती है जिस तरीके से तैयारी चल रही है, जिस तरीके से खेलों को बढ़ावा मिल रहा है, खेलो इंडिया का बजट काफ़ी बढ़ा दिया गया है, तो खेलो इंडिया एक ऐसा आयोजन है, चाहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें, लगातार आयोजन हो रहा है इन खेलों का। और 2030 में हम ये उम्मीद कर सकते हैं, 4 साल पहले ही हम ये बात कर रहे हैं साथियों आपसे, और मैं उम्मीद करूंगा कि हमें सौभाग्य मिले दोबारा से इस बारे में बात करने का 4 साल के बाद भी, कि भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में मेडल टैली में सबसे ज़्यादा पदक जीतकर एक नया इतिहास रचा है। 101 टैली है भारत की 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों की। और ये एक लॉन्ग कॉल है, एक टफ कॉल भी है, आसान नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं, जैसा हम सभी जानते हैं कि मुश्किल चीज़ें ज़रूर हैं लेकिन असंभव दुनिया में कुछ भी नहीं है। एक और खिलाड़ी है जिनका जिक्र करना ज़रूरी है, जिन्होंने ये दिखाया है कि चीज़ें मुश्किल ज़रूर हैं लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है, उनके बारे में ज़रूर हम बात करेंगे। पहले एक छोटी सी क्लिप आप सुन लीजिए।
2: A first title in 2026 for Ashmita. The world number 50 has beaten the world number 35 in sensational form.
0: जी हाँ, आपने सुन लिया, अश्मिता चालिहा जो कि असम से आती हैं, आ से उनका नाम है असम और आ से अश्मिता चालिहा। अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स का टाइटल जीता है साथियों, और उनके करियर का ये पहला BWF सुपर 300 टाइटल है और ये एक स्टेपिंग स्टोन है अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन में अपने कदम आगे बढ़ाने का। एक और लिहाज से ये बहुत ही अहम कामयाबी है कि अगले सप्ताह ही जब हमने कुछ मेगा इवेंट्स की या बड़े इवेंट्स की बात की थी जो आगे आने वाले दिनों में ऑर्गेनाइज किए जाने वाले हैं, तो अगले सप्ताह ही राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम पर 17 तारीख से विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत हो रही है। और उस लिहाज से भी अश्मिता चालिहा की ये जो कामयाबी है उसको एक बहुत ही अच्छा स्टेप कहा जा सकता है, अपॉर्चून टाइम पर ये मोमेंट आया है। 2026 में सबसे पहले देविका सिहाग ने भारत के लिए टाइटल जीता BWF सर्किट में, उसके बाद PV सिंधु ने जापान ओपन जीता, पिछले सप्ताह ही तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन का खिताब जीतने में कामयाबी हासिल की थी, और अब अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स का टाइटल जीता है। और ये भी एक डिस्टिंक्शन है कि कोरिया मास्टर्स का खिताब जीतने वाली अश्मिता चालिहा पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। अपनी जीत को शब्दों में कैसे व्यक्त कर रही थी अश्मिता चालिहा, आइए सुनते हैं।
3: I feel really great and unbelievable, but then I'm trying to digest. I feel blessed and thank you to everyone for supporting me back home, and I'm hungry for more. For sure it was a little bit tricky because of the drift condition, so I was not able to manage it.
0: अश्मिता चालिया कह रही थी कि शी इज हंग्री फॉर मोर, और हम भी चाहेंगे कि उनकी ये जो भूख है खेल के मैदान पर कामयाबी हासिल करने की, वो दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से बढ़ती रहे और भारत के लिए वो मेडल जीतें, परचम फहराएं भारत का। बहुत ही अहम कामयाबी उन्होंने अर्जित की और देश को उन्होंने एक और पोडियम फिनिश करवाया अश्मिता चालिया ने। लगातार दूसरा BWF वर्ल्ड टूर फाइनल का खिताब था। इससे पहले तन्वी शर्मा ने पिछले रविवार को ताइपे ओपन का खिताब जीते में कामयाबी हासिल की थी। भारतीय एथलीट शाहनवाज खान ने अमेरिका के यूजीन में चल रही U20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लॉन्ग जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उन्होंने फाइनल में तीसरे दौर में 7.84 मीटर की छलांग लगा करके पोडियम फिनिश किया। 18 साल के शाहनवाज इस चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले तीसरे भारतीय हैं। इससे पहले शनिवार को आशीष यादव ने जेवलिन थ्रो में और बसंत कुमार मेघवाल ने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता था। बसंत कुमार मेघवाल ने अपने बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ सिल्वर मेडल जीता था। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के रहने वाले हैं, शहर अनूपगढ़ है। 19 साल के हैं मेघवाल। 2.21 मीटर की ऊंचाई उन्होंने तय की। चैंपियनशिप के चौथे और अंतिम से एक दिन पहले शनिवार को उन्होंने ये अचीवमेंट हासिल किया था। अल्जीरिया के यूनेस अनाची ने सिल्वर गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की थी। आशीष यादव ने जेवलिन थ्रो इवेंट में सिल्वर मेडल हासिल किया। भारत के युवा एथलीट हैं आशीष। उन्होंने 79.09 मीटर का थ्रो किया जिससे उन्हें रजत पदक हासिल हुआ। भारत के टी धरनिधरन 72.35 मीटर के थ्रो के साथ छठे स्थान पर रहे। 19 साल के आशीष इस इवेंट में मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा के बाद दूसरे भारतीय बन गए हैं। दो बार के ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने 2016 में पोलैंड में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था और 86.48 मीटर का थ्रो किया था, जो अब भी वर्ल्ड जूनियर्स का एक रिकॉर्ड है। क्रिकेट की बात कर लेते हैं। भारत ने टेस्ट सीरीज से पहले वार्म अप मैच में श्रीलंका इलेवन को छह विकेट से हरा दिया है। मोहम्मद सिराज ने आखिरी ओवर की लगातार 3 गेंदों पर छक्के लगा करके भारत को जीत दिलाई। कोलंबो में मैच के आखिरी दिन रविवार को खेल समाप्त होने से पहले भारत को जीत के लिए 16 रन चाहिए थे और सिराज ने शुरुआती 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के लगाए केशर नुवंथा के ओवर में, और हालांकि उसके बाद भी खेल जारी रहा। और उंगली की चोट से लौट रहे कप्तान शुभमन गिल ने 44 रन की पारी खेली। यशस्वी जायसवाल के साथ 105 रन की साझेदारी की। भारत को दरअसल 207 रन का टारगेट मिला था और दिन का खेल शुरू होने से पहले ही पहली पारी 357 रन 6 विकेट के स्कोर पर घोषित की। श्रीलंका क्रिकेट 11 ने दूसरी पारी 200 रन बनाए 6 विकेट पर और श्रीलंका 11 ने पहली पारी में 363 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पर। तो ओवरऑल आउटिंग अच्छी रही, लेकिन कुछ खिलाड़ियों की इंजरी की समस्या से भारतीय टीम जूझ रही है। सरफराज खान बैटर हैं, उनको 2 साल बाद टीम इंडिया में जगह मिली है। साई सुदर्शन की जगह पर उनको टीम में शामिल किया गया है। सायराज बहुतले एक पूर्व अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाज हैं, भारतीय टीम के बॉलिंग कोच हैं, और वो क्या कह रहे थे कि किस तरीके की आउटिंग रही यहाँ पर जो वार्म अप मैच था जहाँ पर भारत ने जीत हासिल की। इस लिहाज से कि 15 अगस्त से भारत पहला टेस्ट मैच खेलता हुआ नजर आएगा श्रीलंका क्रिकेट टीम के साथ। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है। आइए सुनते हैं सायराज बहुतले को।
4: Preparation is a very integral part of coming on any tour. The reason of us coming is to make sure that we adapt to the conditions, understand how the pitches are. Few of the guys have come here, experienced guy. Jaddu has already played here, but the new guys like Manav, Taran, Jain, they need to just adapt to what will be the ideal lines, what will be the ideal lens, and obviously the field sets, which is very much important. I think this helps in our preparation to get into the gold test match, and I think they used the 3 days brilliantly. The bowlers had a great opportunity to go down and express themselves on a pitch which was slightly on a flatter side in the first day, but as the days went by there was more turn onto it, and definitely a good outing for the spinners.
0: तो सहराज बहुतले कह रहे थे कि भारतीय टीम के लिए एक बहुत अच्छी आउटिंग थी और विशेष तौर पर स्पिनर्स के लिए जो 3 दिन का प्रैक्टिस मैच था जहां पर भारतीय टीम ने जीत हासिल की, और एक कह सकते हैं कि टेस्ट मैच से पहले एक वेलकम रिजल्ट आया है भारतीय क्रिकेट टीम के लिहाज से। बर्थडेज की बात कर लेते हैं। 10 अगस्त यानी आज के दिन साई प्रणीत भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी और सौरभ घोषाल जो कि पूर्व अंतर्राष्ट्रीय स्क्वाश खिलाड़ी हैं और अनहत सिंह के मेंटोर हैं, वो आज अपना बर्थडे मना रहे हैं। 11 अगस्त को पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी अंजू जैन अपना बर्थडे मनाती हैं। यशपाल शर्मा का भी बर्थडे होता है 11 अगस्त को। 12 अगस्त को पीट सैंप्रास पिस्टल पीट के नाम से विख्यात रहे हैं, वो अपना बर्थडे मनाते हैं। और एक और टेनिस खिलाड़ी हैं स्टेफानोस सिटसिपास जो कि ग्रीस से आते हैं, उनका बर्थडे होता है 13 अगस्त को। लीजा स्थालेकर, 14 अगस्त को प्रभजोत सिंह और भारत के स्वतंत्रता दिवस के दिन KM बीना मोल का बर्थडे होता है। आप सभी को बर्थडे इसकी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए शिवेंद्र अनुमति ले रहा है। अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। साथियों अपना ध्यान रखें। नमस्कार।
5: India win by 137 runs. They go 2-1 up in the series.
6: Sports Pulse.
7: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।

नमस्कार, 8 बज चुके हैं। पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प को नवीकृत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की। श्री मोदी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि जो खेलेंगे वे आगे बढ़ेंगे। उन्होंने लोगों से हमेशा भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने की अपील की। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने आज़ादी की भावना का उत्सव मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम वाली एक खास मेट्रो ट्रेन शुरू की। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लाभार्थियों को 1 करोड़ से अधिक घर सौंपकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया। भारतीय नौसेना और अमरीकी नौसेना के बीच विस्फोटक आयुष निरोधक अभ्यास आज से 14 अगस्त तक कोची में आयोजित किया जाएगा। सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया है। वे 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेना के अधिकारी हैं। भारत ने बोलीविया की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 8 मीट्रिक टन जीवन रक्षक और आवश्यक दवाओं की खेप भेजी। चीन में इस वर्ष के सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान डॉल्फिन के पूर्वी तटों से टकराने के कारण तेज बारिश, तीव्र हवाओं के साथ बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई। रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए हिंद महासागर और भारत तक रेल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। विश्व एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप 2026 में बसंत कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक और शाहनवाज खान ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीता और FIBA अंडर 18 एशिया बास्केटबॉल कप का आयोजन अहमदाबाद में 13 से 23 अगस्त तक किया जाएगा। भारत 14 अगस्त को जापान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। ये थे FM रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

Hey listeners, good morning and welcome back. Akashwani Rainbow के साथ आपका और मेरा सफर शुरू हो चुका है 102.6 की फ्रीक्वेंसी पर. यही वो फ्रीक्वेंसी है जहां आपकी और हमारी फ्रीक्वेंसी भी मैच करती है. तो आपके मंडे को हमने रॉकिंग बनाने के लिए आपको सुनाया मैंने ये खूबसूरत सा गाना. और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर और आज़ादी का उत्सव हम मना

रहे हैं और इस साल हमने 79 ईयर्स पूरे कर लिए हैं, 79 साल पूरे कर लिए हैं और 80वां साल लग गया है। और इसी के चलते हर घर तिरंगा अभियान भी जो है वो शुरू हो चुका है। कल से 9 अगस्त से इसकी शुरुआत हो चुकी है और 17 अगस्त के बीच इसे आयोजित किया जाता है। और मुख्य रूप से आप 13 से 15 अगस्त तक सभी देशवासी जो हैं हमारे अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की जाती है, आप इसे फहरा सकते हैं। साथ ही साथ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है हर घर तिरंगा, उसमें जाकर आप अपनी सेल्फी अपलोड कर सकते हैं और सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसकी एक पूरी प्रक्रिया है, उसके लिए आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। और कुछ ऐसी बातें हैं हमारे तिरंगे के बारे में जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी हैं। ये कुछ रूल्स हैं, जैसे कि जो रंगों का क्रम है तिरंगे को फहराते समय, हमेशा केसरिया रंग सबसे ऊपर होना चाहिए, फिर सफ़ेद और फिर हरा। और इसका जो इसको आप दिन और रात फहराने की आपको छूट है, आप अपने घर तिरंगे को दिन और रात दोनों समय फहरा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि झंडा जो है वो फटा हुआ है या गंदा है या किसी भी वजह से आपको लगता है कि नहीं फहरा सकते, तो उसे बिल्कुल मत फहराना, उसे हटा दीजिएगा। और ज़मीन से संपर्क तो बिल्कुल ना होने पाए, बिल्कुल भी नहीं, फर्श या पानी को भी नहीं छूना चाहिए। और तिरंगे के ऊपर या उसके बराबर में कोई और झंडा या कोई और डेकोरेटिव सामान आप नहीं लगा सकते हैं। और उसके बाद इसको सम्मानजनक रूप से आप इसे अलग करके रख सकते हैं जब ये उत्सव पूरा हो जाएगा। अब इधर उधर कहीं पे भी लावारिस ना इसे छोड़ें, इसका पूरा सम्मान करें। ये हमारी आन है, बान है, शान है हमारे देश की। तो आकाश पर ऊंचा लहराएं और हमारे झंडे को कभी भी जमीन पर ना छूने पाएं।

0: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
1: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
0: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
1: हैं इतनी जल्दी?
0: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय काले खान स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खान से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
3: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: हे लिसनर्स, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में ज्योति आपके साथ है। 8:22 हो चुके हैं, मंडे मॉर्निंग है, आप अपने काम पर निकल चुके होंगे, ट्रैफिक मिलेगा। तो दो दिन की बारिश के बाद, इतनी लगातार बारिश हुई और उसके बाद कल थोड़ी राहत मिली, धूप निकली तो थोड़ी ऐसा लगा कि हाँ राहत मिली है। तो बारिश ज़्यादा हो जाए तब भी हम परेशान हो जाते हैं, ऑफकोर्स वाटर लॉगिंग होती है। और आज के अगर मौसम की बात करूँ तो दोपहर के बाद शाम के टाइम होते होते गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा और हाँ ह्यूमिडिटी तो है ही 80%, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी आपको फील हो सकती है। मगर सबसे ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मौसम तो फेरबदल करता ही रहेगा मगर इसी मौसम में हमें होती हैं अक्सर आई प्रॉब्लम्स। जी हाँ, मानसून में, बारिश के मौसम में आई प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बहुत कॉमन है कंजक्टिवाइटिस। तो ये हाई ह्यूमिडिटी की वजह से होती है और कंटामिनेटेड वाटर की वजह से होती है, जिससे कि जर्म्स जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो करते हैं। तो इस मौसम में आप बहुत सारी चीज़ों का आप ख्याल रख सकते हैं, अननेसेसरी कहीं पे भी टच ना करें और उन्हीं हाथों को आंखों पर ना लगाएं। अगर आपको लगता है कि रेड आइज़ हैं या स्वेलिंग हो रही है या इचिंग हो रही है या आई एलर्जी हो रही है जो कि डस्ट और मोल्ड की वजह से हो सकती है क्योंकि हवा में नमी है, तो आप कुछ बातों का ध्यान रखें। अपने जो हैंकी है आपका या फिर कोई भी ऐसी आइटम है जो आप खुद पे यूज़ करते हैं वो किसी और के साथ शेयर ना करें, और कोई भी ड्रॉप जो आप यूज़ करते हैं आई ड्रॉप वो बिना कंसल्टेशन के या फिर जो ओपन पैक है उसको ना यूज़ करें। इसके अलावा मेकअप भी अपना किसी के साथ शेयर ना करें, और प्रोटेक्टिव ग्लासेस आप पहन सकते हैं बाइक राइड करते टाइम या फिर वॉक करते टाइम भी जब बारिश हो या तेज़ हवाएँ चलें, और कॉन्टैक्ट लेंसेज को आप अवॉइड कर सकते हैं जो कि आपको इरिटेशन देंगे। तो इस मानसून को एंजॉय करें, इस बारिश को एंजॉय करते करते अपनी आंखों का भी ख्याल रखें।

ऐसी बहुत सारी गाथाएं हैं और कहानियां हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। आज़ादी का उत्सव हम मना रहे हैं और इस आज़ादी को पाने के लिए हर किसी ने अपना योगदान दिया। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान गंवा दी और बहुत सारे लोगों ने अपने अपने सक्षम के हिसाब से योगदान दिया। तो भारत के जनजातीय विद्रोहों ने भी ब्रिटिश सरकार, शासन, महाजनों और जमींदारों के शोषण के खिलाफ जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए अद्भुत साहस दिखाया था। इन आंदोलनों में कई नायक इतिहास के पन्नों पर प्रमुखता से आए और कई गुमनाम हो गए जो अनसुने ही रह गए। प्रमुख और प्रसिद्ध जनजातीय नायक बिरसा मुंडा, जो झारखंड से थे, उन्होंने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्हें धरती आवा भी कहा जाता है। उनके जन्म दिवस 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसके अलावा सिद्धू और कानू मुर्मू, इन्होंने 1855 और 56 के ऐतिहासिक संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। इनके नेतृत्व में हजारों संथालों ने अंग्रेजों और महाजनों के खिलाफ हुंकार भरी थी। अनसुने हैं कम चर्चित जनजातीय नायक यू तिरोथ सिंह। खासी पहाड़ियों के इस महान राजा ने सीमित संसाधनों के बावजूद अंग्रेजों के विरुद्ध वर्षों तक कड़ा संघर्ष किया और इनका प्रेरणादायक कथन था, गुलाम राजा बनकर जीने से बेहतर है एक स्वतंत्र राजा के रूप में मर जाना। तो भारत के जनजातीय समाज का देश की कला, संस्कृति और संरक्षण और देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज़ादी की लड़ाई में कई जनजातीय नायक नायिकाओं ने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया और इन जनजातियों क्रांतिकारियों में से कुछ प्रमुख हैं बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, टंटिया भील, भीमा नायक, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, सीताराम कंवर, मंशु ओझा, सुरेंद्र साय, रघुनाथ सिंह मंडलोई। तो काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो आज हम उनको नमन करते हैं क्योंकि सभी के योगदान की वजह से हमें ये आज़ादी मिली है।

0: बड़ी है मात।
1: पताका चाय, गजब का स्वाद।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

और क्या, मैं ही बताऊंगी और क्या। दिल्ली एनसीआर के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ही तो गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन। सो आज मंडे से मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था और ज़्यादा सख्त हो जाएगी नॉर्मल डेज के मुकाबले, और क्योंकि स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनज़र दिल्ली मेट्रो में भी रेड अलर्ट घोषित किया गया है। तो आज से मंडे से आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि पहले जहां आपकी एक बार चेकिंग होती थी अब दो बार होगी, और यात्रियों को गहन सुरक्षा जाँच आपकी की जाएगी और इसीलिए इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको कहीं पर भी पहुंचना है तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर जाइएगा, क्योंकि मेट्रो में जब चेकिंग होगी तो वहाँ तो आपको टाइम लगेगा ही। पहले आप नॉर्मल डेज में जब मेट्रो स्टेशन पर आप जाते हैं तो CISF के जवान आपकी एक बार सुरक्षा जाँच करते हैं, और फिर मेटल डिटेक्टर से गुजरने के बाद जो हाथ वाली मशीन होती है, हैंड हेल्ड मशीन से जाँच की जाती है। मगर क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने हैं, सिक्योरिटी देखनी है, तो उसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो इसलिए आप पेशेंस रखिएगा, इस वजह से वहाँ पे भीड़ भी लग सकती है, लंबी क्यूज भी होंगी, थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगेगा, क्योंकि इसमें अब आपकी दो बार जांच होगी मेटल डिटेक्टर से। आप गेट से भी गुजरने से पहले दो बार जांच की जाएगी, तो इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा टाइम और लंबी क्यूज लगेंगी, और ये आज से ही होने वाला है। तो इसमें आपका योगदान देना बहुत ज़रूरी है, आप पेशेंट रहिएगा और किसी पर भी गुस्सा ना कीजिएगा। आकाशवाणी रेनबो आप सुन रहे हैं, ये सेफ्टी सिक्योरिटी आपके लिए ही है, बस यूं ही सुनते रहिए। और एक खूबसूरत सा गाना और आपके लिए, उसके बाद आपको देती हूँ एक और अपडेट, वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए है। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड कीप दिस थिंग।

डीयू में भी काफी कुछ हो रहा है और स्टूडेंट्स के दिल में भी बहुत हलचल हो रही है, कौन सा कॉलेज होगा, कहाँ पढ़ाई करेंगे, कौन सा कोर्स करेंगे। फिलहाल तीसरा राउंड शुरू हो चुका है और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए और तकरीबन 11,000 सीट्स के लिए अलॉटमेंट हो चुकी है और अभी तक 48,000 स्टूडेंट्स ने अपनी सीट फ्रीज की है, यानी कि ये जो स्टूडेंट्स हैं अपनी सीट से संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं, श्योर हैं और आगे चलकर वो कॉलेज या कोर्स नहीं बदलना चाहते हैं। और तीसरे राउंड के साथ 11 अगस्त तक, जी हाँ आज 10 अगस्त है और कल 11 अगस्त तक सीट एक्सेप्ट करने का मौका है आपके पास। 12 अगस्त तक डॉक्यूमेंट्स की जाँच होगी और 13 अगस्त तक यानी 13 अगस्त को आप को फीस जमा करनी होगी। तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन है और 11 अगस्त तक स्टूडेंट्स सीट पर अपनी हामी दे देंगे, उसके बाद फीस देंगे और आपका जो एडमिशन है वो पक्का हो जाएगा। इससे पहले डीयू ने मिड एंट्री ऑप्शंस भी खोले थे जिसके तहत उन स्टूडेंट्स को मौका दिया गया था जो रजिस्ट्रेशन करने से किसी भी वजह से रह गए थे या फिर उनके फॉर्म में कोई गलती कर दी थी। तो इस सुविधा का फ़ायदा भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने उठाया और इस मिड एंट्री ऑप्शंस ने उनके लिए फिर से ऑप्शंस खोल दिए। और तीसरे राउंड में साइंस के कोर्सेज में नॉर्थ कैंपस में और साउथ कैंपस में कई सारे कॉलेज में दाखिले का आपको मौका मिलेगा। तो कल की एक वो डेट मैंने बता दी है, तीसरा राउंड जो है वो शुरू हो चुका है। सो टाइम पे अपनी फीस भरिए और अपने कॉलेज डेज को एंजॉय करना स्टार्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट।

आकाशवाणी रेनबो आप सुन रहे हैं 102.6 की फ्रीक्वेंसी पर, यहीं हमारे दिल मिलते हैं। 8:56 हो चुके हैं और 9 बजे से आपके साथ होंगी रेणु भट्ट। 9:02 से आपके साथ वो लेकर आएंगी दिल के तराने, गाने नए पुराने। उसके बाद 10:02 से अदिति बिष्ट होंगी आपके साथ लेकर मैचलेस म्यूजिक आर। और रेनबो पर कार्यक्रमों का सिलसिला चलता रहेगा, बता रही हूँ भैया, आगे भी बता रही हूँ। 11:02 से बॉलीवुड ट्रेल्स आप सुन सकते हैं आकृति खंडूरी के साथ। 12:02 से अदिति बिष्ट के साथ फिर से आप सुनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक शो प्ले इट कूल। उसके बाद 1:02 से आकृति फिर होंगी आपके साथ लेकर रेनबो हेल्पलाइन, अ मस्ट शो जो आपको सुनना चाहिए। और इसमें आज का टॉपिक है डिफाइंड बाउंड्रीज इन पर्सनल लाइफ, जो कि बहुत जरूरी है। और आज के एक्सपर्ट हैं आज के एक्सपर्ट हैं श्री सतीश कौशिक, जो साइकोलॉजिस्ट हैं एंड हैप्पीनेस कोच हैं। तो हैप्पीनेस तो सबको चाहिए, तो बस आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए, आकाशवाणी रेनबो सुनते रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे फिर बहुत जल्द इन्हीं एयरवेव्स पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर। एंड ये लास्ट गाना आपके लिए, इन्जॉय कीजिए।

नमस्कार, पेश है एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता की भावना का उत्सव मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम से सजी एक विशेष मेट्रो ट्रेन शुरू की है। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए जाने हैं। इनमें ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 शामिल हैं। भारतीय नौसेना अमेरिकी नौसेना का संयुक्त विस्फोटक आयुध रोधक ईओडी अभ्यास 2026 आज से कोच्चि स्थित

प्रदर्शनी नौसेना कमान में शुरू होकर 14 अगस्त तक चलेगा। रूस ने भारत के लिए हॉर्मूज, जलडमरू, मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। आज सावन माह का दूसरा सोमवार है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने श्रद्धालुओं और कांवड़ियों के लिए विशेष व्यापक व्यवस्था की है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार बारिश और भूस्खलन के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में 62 सड़कें बाधित हो गई हैं और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुग पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। ये थे इस घंटे के FM रेनबो मुख्य समाचार।

आपकी वाणी आकाशवाणी पर आप सुन रहे हैं, एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं दिल के तराने गाने नए पुराने रेणु भट्ट के साथ, और मैं लेकर आई हूँ हमेशा की तरह नॉनस्टॉप म्यूजिक जो आपको थिरकने पे मजबूर करेगा। और तीन रेट्रो म्यूजिक का तड़का, तीन ट्रैक आपको ऐसे सुनाई देंगे जो कि आपको यादों के पिटारे खोलने पर मजबूर कर देंगे। तो उन पिटारों को आप सोचिए, सहेजिए और आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें, हमारे सभी गीतों का, कार्यक्रमों का आप आनंद लें। और अभी फिलहाल बातों को यहीं पर रोकते हुए आप सभी के लिए म्यूजिक का दौर शुरू करते हैं हर्षदीप कौर की आवाज़ में, बेहद खूबसूरत ट्रैक आप सभी के लिए।

मन भी हमारे बल्ले बल्ले कर रहा, दिल भी हमारा हुलेरे मार रहा है, और क्यों ना मारे भाई। देशभक्ति की जो मांगे हैं, जो भावना है, वो हमारे पूरे तन बदन में दौड़ रही है। पता है ना क्यों?

इस जोश और जज्बे को हमें अपने अंदर पूरे साल 365 दिन जगाए रखना है। किसी दिन इस भावना को कम नहीं करने देना है। 15 अगस्त आने वाली है और हम सब उसके रंग में रंग चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको बताऊंगी कि दिल्ली की सड़कों का क्या हाल है। कौन सा रंग है दिल्ली की सड़कों में? अगर देखा जाए तो लाल रंग इस समय वहाँ पर है, यानी कि ट्रैफिक लगा हुआ है। अगर आप ट्रैफिक में हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं और आप मैसेज करते ही रहते हैं। पहले मैं आपको बता दूँ कि कहाँ कहाँ पर ट्रैफिक है। अगर आप जे डी बिरला मार्ग पर हैं तो डेफिनेटली आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। द्वारका एक्सप्रेस वे पर भी आपको ट्रैफिक मिलेगा, द्वारका फ्लाईओवर पर भी आपको ट्रैफिक मिलेगा, वज़ीराबाद रोड पर भी आपको ट्रैफिक मिलने वाला है। मयूर विहार फ्लाईओवर पर है तो आपको 11 मिनट का डिले है वहां पर, और कालंदी कुंज ब्रिज पर है तो भी आप 24 मिनट डिले रहेंगे। लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर 10 मिनट का डिले है, मेहरौली बदरपुर रोड पर आपको 7 मिनट का डिले, यानी कि हल्का फुल्का ट्रैफिक है, लेकिन ट्रैफिक है। इस समय यदि मैं दिल्ली के सड़कों पर नजर डालूं तो काफी जगह पर ट्रैफिक है, और अगर आपके यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है तो आप हमें ज़रूर बताएं मैसेज करके, और आप यूं ही बने रहें हमारे साथ। और आप सुनते रहें दिल के तराने, गाने नए पुराने। अब समय है हमारे समय में थोड़ा पीछे जाने का। आप सभी के लिए बेहद खूबसूरत ट्रैक लेकर आई हूँ मैं, मोहम्मद रफ़ी और सुमान कल्याणपुर की आवाज़ में। समय में आपको पीछे ले जाएगा, आपको ज़रूर पसंद आने वाला है गाना। कैसे पता लगते हैं आपको हमारे ट्रैक्स और हमारे प्रोग्राम्स, आप हमें ज़रूर बताएं। आपको करना है हमें मेल feedback@rainbow@gmail.com पर आपको हमें मेल करके बताना है कि आप हमारे प्रोग्राम्स को लेकर क्या राय रखते हैं, क्या बात है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं। तो बिंदास आप कर दीजिए हमें मेल।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम

बल अपने दिल के दरवाजे और खिड़कियां आपने हमारे लिए खुले हुए रखे हुए हैं, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन अभी आपको कान खोल कर बहुत ही आराम से ध्यान से सुनना है जो प्रोग्राम्स मैं आपको बता रही हूँ। आप 1:02 पर आप सुन सकते हैं रेनबो हेल्पलाइन और आकृति रहेंगे आपके साथ। और आज हम बात करने वाले हैं डिफाइन बाउंड्रीज इन पर्सनल लाइफ। बहुत ज़रूरी हो जाता है अपनी पर्सनल लाइफ में बाउंड्रीज को डिफाइन करना, किस तरह से कर सकते हैं आपको बताएंगे हमारे एक्सपर्ट। वो हैं श्री सतीश कौशिक, आप साइकोलॉजिस्ट हैं और हैप्पीनेस कोच हैं। आप ये प्रोग्राम ज़रूर सुने और अपनी बातें अपनी क्वेरीज हमारे एक्सपर्ट से ज़रूर शेयर करें। 3 बजे का समय है रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम का, आप जानते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं स्किन इन्फेक्शन इन रेनी सीजन। इस तरह के मौसम में यानी कि बरसात के मौसम में हमारी स्किन पे त्वचा संबंधी जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं उससे जुड़ा हुआ कोई भी आपका सवाल है, आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अखिलेश थोले। आप सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी डॉक्टर RML हॉस्पिटल नई दिल्ली से। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें ज़रूर कॉल करें। हमारे टेलीफोन नंबर है 2342-1080। इन नंबरों से पहले आप 011 ऐड करना ना भूले। व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं 9868107070 पर। अपनी सारी क्वेरीज अपनी सारी बातें आप हमसे शेयर करें, हमें बताएं कि क्या बात है जो आप हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं। और आप हमारे एक्सपर्ट से जरूर पूछें, हम चाहते हैं। और आप सभी के लिए गीता दत्त मोहम्मद रफी की आवाज़ में बेहद खूबसूरत ट्रैक।

दिल के तराने गाने नए पुराने में। चलिए अब मैं आपको दे देती हूँ क्विक ट्रैफिक अपडेट, तो मैंने दे दिया आपको, वेदर अपडेट मैं आपको दे देती हूँ। अगर हम करंट टेम्परेचर की बात करें दिल्ली में, तो 33 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम तापमान आज का 28 डिग्री सेल्सियस और आज का मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस जाने वाला है। ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा रहेगा, तो अपना केयर करना ना भूलें, क्योंकि नंबर ज़रूर आपको थोड़े कम या ऐसे लग रहे होंगे कि ठीक ठाक है, लेकिन ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा होने की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज पूरा दिन भर आपको आसमान में बादल नज़र आने वाले हैं और बारिश होने के भी चांसेस हैं, यानी कि संभावना बनी हुई है। आगे आने वाले अगर हम दिनों की बात करें तो कुछ दिन बारिश वाले हैं, तो आप अपने प्रिकॉशन लेके रखें और एक्स्ट्रा टाइम लेकर ही जाएं, क्योंकि अगर बारिश हो जाए आपको ट्रैफिक में कहीं पे फंसना ना पड़ जाए, उसके बारे में आप सोच कर ही घर से निकलें और देखें भी किस तरह से आप सेफली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। ये तो रहा हमारा आज का वेदर अपडेट और आपके लिए लता मंगेशकर की आवाज़ में बेहद खूबसूरत ट्रैक आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर।

वेल, आप कहीं भी मुड़े कहीं भी जुड़े, लेकिन लौट कर आपको हमारे पास ही आना है, यानी कि आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर। अब मेरे जाने का समय हो गया, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी वो तमाम प्रोग्राम जो आप मेरे जाने के बाद सुन सकते हैं एफएम रेनबो पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे अदिति बिष्ट को मैचलेस म्यूजिक आर में। 10:02 का समय रहेगा और आकृति के साथ रहेंगे आप बॉलीवुड ट्रेल्स में 11:02 पर। बॉलीवुड की सभी ताज़ा तरीन हलचल लेकर आने वाली हैं वो। और उसके बाद यानी कि 12:02 पर आप सुनेंगे प्ले इट कूल अदिति के साथ। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें 24/7 साल के 365 दिन। तो मैं रेनबट ले लेती आप सभी से इजाजत, गुड बाय एंड टेक केयर, फिर मिलूंगे आपसे। और आप सुनते रहें एफएम रेनबो, क्योंकि एंटरटेनमेंट का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म होने वाला बिल्कुल नहीं है। गुड बाय एंड टेक केयर।

0: Muhammad Rafi there with Tu Is Tarah Se Meri Zindagi Mein Shamil Hai. Thank you everybody who is enjoying the music and sending in their messages. We are now taking a very short break, but we are back after some time with more music. Stay tuned.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी

0: आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
2: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सराय काली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
1: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
2: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
1: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।

नमस्कार, पेश है इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार। लोकसभा में आज चार विधेयक पेश किए जाएंगे। इसमें ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरला नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 शामिल हैं। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया है। दिल्ली मेट्रो रेल ने स्वतंत्रता की भावना का उत्सव मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम से सजी एक विशेष मेट्रो ट्रेन शुरू की है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आज छात्रों का विधानसभा मार्च। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। भारतीय नौसेना अमरीकी नौसेना का संयुक्त विस्फोटक आयुधरोधक ईओडी अभ्यास 2026 आज से कोची स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा है। आज सावन माह का दूसरा सोमवार है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने श्रद्धालुओं और कांवड़ियों के लिए व्यापक व्यवस्था की है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की और खेलों में ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुंग पंड्यन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। ये थे अभी तक के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार।

बॉलीवुड की चटपटी अटपटी मजेदार जायकेदार और थोड़ी सी मिर्चीदार खबरों के साथ मैं आकृति इस घंटे आपके साथ रहूंगी और साथ ही मौका भी दूंगी आपको आज का बॉलीवुड सरताज बनने का। जी हाँ, प्रोग्राम में शेयर की जा रही बातों को ध्यान से सुनिए क्योंकि इन्हीं में छुपा होगा हमारा आज का बॉलीवुड सरताज का सवाल, जिसे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर सबसे पहले सही जवाब के साथ पहुंचाकर बन सकते हैं आज के बॉलीवुड सरताज भी।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: अगस्त आने वाला है और आजादी की हवा में जब तिरंगे की शान खुलती है तो हर भारतीय का दिल गर्व से भर उठता है। हमारे देश के इतिहास का वो गौरवशाली दिन 15 अगस्त जब भारत ने सालों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर इंडिपेंडेंस का सूर्योदय देखा था। इस स्वतंत्रता दिवस पर आइए एक बार फिर अपने घर में, अपनी गली में, अपने घर में, अपने शहर में अपने दिल को तिरंगों के रंगों से सजाएं।

आकाशवाणी रेनबो पर सुन रहे हैं आप बॉलीवुड ट्रेल्स, और बॉलीवुड ट्रेल्स में बॉलीवुड की दुनिया से पहली अपडेट हम तक आ रही है अजय देवगन के बारे में, जिनके पास इस वक्त बहुत सारी फिल्म्स हैं जो आने वाली हैं, जिन पर वो काम कर रहे हैं। चौहान एक है, दृश्यम 3 पर वो काम कर रहे हैं, गोलमाल 5, गृह प्रवेश, बहुत सारी ऐसी फिल्म्स हैं। और यानी कि ये साल और आने वाला साल अजय के लिए बहुत ही खास होने वाला है। उनकी बैक टू बैक फिल्म्स जो हैं वो थिएटर में रिलीज़ होंगी। और अब इस लिस्ट में एक और एक्शन प्रोजेक्ट जो है वो जुड़ गया है। सुनने में ये आया है, खबर हम तक ये पहुँची है कि एक्टर अब मशहूर फिल्म मेकर निखिल नागेश भट्ट के साथ एक नई एक्शन ड्रामा फिल्म में काम करने वाले हैं। इस फिल्म में और कौन सी कास्ट होगी या कहानी होगी ये खबर तो अभी तक नहीं आई है, लेकिन ये ज़रूर बात पक्की है कि अजय देवगन ने किल के डायरेक्टर निखिल नागेश भट्ट के साथ हाथ मिला लिया है। ये एक्शन फिल्म होगी और अगले साल ये सिनेमा हॉल्स में दिखाई दी जाएगी। फिलहाल इस फिल्म के बारे में रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो है वो सीक्रेट रखी जा रही है। खबर दे दी गई है कि एक्शन ड्रामा फिल्म है, अजय देवगन लीड रोल में होंगे। और अजय की अगर हम बात करें, निखिल इनफैक्ट नागेश भट्ट हॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं। वो जेमी फॉक्स स्टारर एक्शन फिल्म डेड लॉक्ड का डायरेक्शन करेंगे। ये एक इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है और एक ऐसे पूर्व अमेरिकन मरीन की कहानी है जो अपने उसके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं और वो अपनी जो ड्यूटी है वो भी कर रहा है। फिलहाल अजय देवगन और निखिल नागेश भट्ट की ये एक्शन ड्रामा फिल्म प्रोडक्शन की तैयार प्री प्रोडक्शन के दौर से गुजर रही है और 2027 यानी अगले साल दूसरे हाफ में फिल्म के कैमरे जो हैं वो रोल कर दिए जाएंगे। और अजय का ये न्यू प्रोजेक्ट देखते हैं आगे, जैसे जैसे खबर हम तक मिलती रहेगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे।

अजय की हालिया रिलीज धमाल 4 ने थिएटर्स में बहुत अच्छी कमाई की थी ना, और अब देखते हैं दृश्यम 3 में भी वो काम कर रहे हैं, गोलमाल 5 पर भी काम कर रहे हैं।

0: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही? रोज तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
1: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगम पुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
0: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
3: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
4: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी रेनबो पर सुन रहे हैं आप बॉलीवुड रील्स, जिसे आप 102.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर सुन सकते हैं, या फिर देश या दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना बैठे हो आप, जुड़े रह सकते हैं आकाशवाणी रेनबो से न्यूज ऑन एयर ऐप पे या फिर वेब्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। फिलहाल बॉलीवुड की दुनिया से अगली अपडेट हम तक आ रही है यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म टॉक्सिक के बारे में। अगस्त में बहुत धमाका करने वाली है, इसके बारे में कोई शक नहीं है, लेकिन पिछले दिनों इसका धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हुआ था और जितना एक्सपेक्टेशंस ऑडियंस की थी उससे मुझे लगता है कहीं ज़्यादा ही थ्रिल और एक्शन जो है इसमें देखने को मिला। और इनफैक्ट 4 मिनट का यह ट्रेलर है, यश बेहद ही इंटेंस और ख़तरनाक अवतार में देखने को मिल रहे हैं। पहले तो अंदाज़ा लग रहा था कि यश का डबल रोल होगा, लेकिन जो पोस्टर रिलीज़ हुआ है उसमें तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। एक अलग ही अंदाज में यश दिखाई दे रहे हैं, ज़बरदस्त एक्शन है, डार्क इंटेंस विजुअल्स हैं। और रामायण में जहाँ यश के रावण लुक की बहुत ही तारीफ हो रही थी, इस फिल्म में तो धमाकेदार एक्शन करते हुए नजर आएंगे। जैसे टॉक्सिक के ट्रेलर में यश लंबे बालों में और बियर्ड है उस वाले लुक में दिख रहे हैं, जो पहले KGF में भी उनका देखने को मिला था। और अब ट्रेलर जो आया है उसमें उनका क्लीन शेव का लुक भी मतलब दिख रहा है। और एक नया सा सस्पेंस हो गया है इसके बाद, क्योंकि ट्रेलर में एक्टर 2 नहीं बल्कि 3 अलग अलग अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल देखते हैं आगे क्या होगा। कहानी ऐसा लग रहा है ट्रेलर को देख के कि बेटे और उसके पिता के रिश्ते के इर्द गिर्द ही घूम रही है। और फिलहाल डायरेक्टर गीतू मोहनदास पिता और बेटे की कहानी को किस अंदाज में पेश करते हैं टॉक्सिक में, ये अब 26 अगस्त को फिल्म के रिलीज के साथ ही देखने को मिल जाएगा हम सबको।

बॉलीवुड रील्स में आपके साथ हूँ मैं आकृति। बॉलीवुड की चटपटी हटपटी मजेदार और थोड़ी सी मिर्चीदार खबरों के साथ फिलहाल प्रियंका चोपड़ा के बारे में अगली अपडेट हम आप तक पहुंचाने वाली हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट से वो जुड़ी हुई हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी और हॉलीवुड इंडस्ट्री में। फिलहाल वाराणसी में फिल्म में काम कर रही हैं, लीड रोल में हैं। इसके बारे में तो हम बार बार आपको बॉलीवुड रील्स में बताते ही रहे हैं, लेकिन फिलहाल चार और फिल्म हैं जिसमें वो नज़र आने वाली हैं, उनके बारे में भी बता देते हैं। मीरा नायर की फिल्म अमरी, इसमें सुनने में आ रहा है कि प्रियंका चोपड़ा का बहुत ही अहम रोल हो सकता है। इसमें वो मैडम अजूरी का रोल निभाते हुए नजर आएंगी और इस फिल्म में इमली वॉटसन, जयदीप अहलावत, अंजलि श्रीवर्मन और जिम सब जैसे एक्टर हैं और इस फिल्म की राइटर भी मीरा नायर है। इंग्लिश फिल्म है और 2027 में सुनने में आ रहा है कि ये फिल्म जो है रिलीज हो जाएगी। एक और फिल्म है जजमेंट डे, इसमें भी प्रियंका चोपड़ा नजर आएंगी लीड रोल। इस फिल्म का डायरेक्शन निकोलस टॉलर कर रहे हैं और प्रियंका के अलावा इस फिल्म में विल फेरल, जैक एफ्रॉन और बिली इचनर जैसे एक्टर्स दिखाई देंगे। ब्लू फ्लाई, ये एक और प्रोजेक्ट है प्रियंका का, इसकी भी अनाउंसमेंट हो चुकी है और इसमें प्रियंका चोपड़ा की एंट्री भी हो चुकी है। इसको इस फिल्म में प्रियंका के ऑपोजिट रसेल क्रो होंगे और इससे उन्हें जो फिल्म इंडस्ट्री में ग्लैडिएटर और ब्यूटिफुल माइंड जैसी फिल्म्स के लिए जाना जाता है, खासा अच्छा प्रोजेक्ट है ये प्रियंका का। और एक और ख़बर हम आज तक आज आपको पहुंचाने वाले हैं कि हाल ही में अनाउंसमेंट हुई थी कि प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस एंजेलिना जॉली के साथ भी एक्टिंग करती हुई नजर आएंगी। ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में भी काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं।

और बॉलीवुड टेल्स में अब वो पल आ चुका है जब हम आपसे पूछने वाले हैं आज का बॉलीवुड सरताज सवाल। और इस सवाल का जवाब सबसे पहले हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर जो सबसे पहले पहुंचाएगा वो बन जाएगा आज का बॉलीवुड सरताज। तो सवाल ये है कि अजय देवगन की हाल ही में यानी कि इसी जुलाई 10 जुलाई को रिलीज हुई फिल्म का आपको नाम बताना है। बताइए मुझे कि अजय देवगन की हाल ही में कौन सी फिल्म रिलीज हुई थी। हिंट आपको ये दे दूँ, कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म में अजय के अलावा अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी और रवि किशन भी हैं। बताइए मुझे अजय देवगन की हाल ही में हुई रिलीज फिल्म का नाम क्या है। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
2: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगम पुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
1: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
4: NCRAPEC से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
5: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
6: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
0: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

बॉलीवुड सरताज कौन बन रहे हैं, इस बात का इंतजार आप सभी को होगा। हमने आपसे सवाल पूछा था कि अजय देवगन की जुलाई में रिलीज हुई फिल्म का नाम क्या है, कॉमेडी फिल्म है, उनके साथ अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, रवि किशन भी हैं। बहुत से लोगों के सही जवाब हम तक पहुंचे हैं, कुछ लोगों ने गलत भी बताए हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में सबसे पहले इस सवाल का सही जवाब जो कि है धमाल 4 बताने वाली है कंचन सोनिया विहार दिल्ली से, और बन रही है वो आज की बॉलीवुड सरताज। बहुत बहुत बधाई हो आपको कंचन। वैसे कंचन के अलावा भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस सवाल का सही जवाब हम तक पहुंचाया है, हम सभी के नाम हम जरूर लेना चाहेंगे। तरुण कोहली साहब का मेरठ से सही जवाब हम तक आया है, सलीम मलिक साहब का भी सही जवाब हम तक पहुंचा है, ईशा फ्रॉम धर्मशाला उन्होंने भी सही जवाब हमें दिया है। इसके अलावा अंश का सोनिया विहार से, धमाल 4 बताने वाली हैं परवीन, प्रमोद चिचोलकर अकोला से हम तक सही जवाब के साथ हाजिर हैं, ये हैं अदिति सही जवाब के साथ हम तक जुड़ने वाले हैं, राहुल बंसोर इसके अलावा सही जवाब हम तक पहुंचाया है कहने वाले हैं ऑल राइट, प्रवीण साहब का, राजकुमार के संतानी साहब का, नंद गी साहब का, निकिता पारेकर पुणे से, इरशाद अशरफी राजस्थान से हमसे जुड़े हैं, धर्म भाटिया जी, बसंत तोमर, उमेश कुमार साहब, सुकुल बाला वेस्ट बंगाल से धमाल 4 बता रही हैं। इसके अलावा राजीव कुमार का मेरठ से सही जवाब आया है, संजय खत्री ये हैं, शुरुजीत ग्रेटर नोएडा से धमाल 4 बताने वाले हैं, बलजीत नगर से सबीर साहब, लेकिन आज के प्रोग्राम में एक और सही जवाब आया है नरेंद्र सोनी साहब का, ये हैं अजय देवगन की धमाल 4 रिलीज हुई, अर्पित खुराना साहब, सुखविंदर सिंह साहब, दिनेश नाहर सिंह साहब, नितिन माथुर साहब, ऋषु कटारिया, लेकिन कंचन को मिलती है आज की सबसे बड़ी बधाई आज के प्रोग्राम में, और जो बनती हैं आज की बॉलीवुड सरताज। और इसी के साथ मैं आकृति भी आज के प्रोग्राम से लेती हूँ विदा, लेकिन रेनबो पर हर घंटे एक नए रंग के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। अदिति स्टूडियो में एंटर कर चुकी हैं, प्लेट कूल लेकर आपके साथ रहेंगी 12 बजे, 1 बजे रेनबो हेल्पलाइन में आपसे रूबरू मैं ही होंगी, और बहुत ही खास टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं विच इज़ अबाउट डिफाइनिंग बाउंड्रीज इन पर्सनल लाइफ। नॉर्मली सोचा जाता है कि बाउंड्रीज मतलब रिश्तों में मतभेद हो जाएगा या रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि बाउंड्रीज को डिफाइन करना यानी कि कभी कभी ना कहना या अपनी लिमिट बताना भी आपके रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बना सकता है। हमारे एक्सपर्ट सतीश कौशिक साहब जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और हैप्पीनेस कोच हैं हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ेंगे। आप जरूर अपने सवालों को, अपनी दुविधाओं को, अपनी शंकाओं को हम तक पहुंचाइएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर, और आशियाना प्रोग्राम में 2 बजे शालिनी खंडेलवाल आपके साथ रहेंगी, और रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम में 3 बजे आज बात होगी बरसात के इस मौसम में स्किन डिसऑर्डर्स के बारे में, स्किन इन्फेक्शंस के बारे में। डॉक्टर अखिलेश थोले जो कि सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी आरएमएल हॉस्पिटल में, इस विषय में हमें जानकारी देंगे।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
6: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
7: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
8: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
7: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
8: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
7: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।

0: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदीनगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर,
3: म्यूजिक मस्ती।
8: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
9: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
10: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: क्या है बदल, जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

प्रस्तुत है इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार। संसद में विपक्ष के गतिरोध के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में आज ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए जाएंगे। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आज छात्रों का विधानसभा मार्च। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया जीईएम पर सरकारी खरीद का कारोबार 1 दशक में 422 करोड़ से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपये से अधिक हुआ। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। भारतीय नौसेना अमरीकी नौसेना का संयुक्त विस्फोटक आयोध रोधक ईओडी अभ्यास 2026 आज से कोची स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस के अवसर पर कहा भारत में एशियाई शेरों की आबादी लगातार बढ़ रही है और उनके आवास और विचरण का क्षेत्र भी लगातार विस्तार कर रहा है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की और खेलों में ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुंग पंड्यन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। ये थे अभी तक के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: रेनबो हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आकृति खंडूरी और कहना आपसे यही चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम दूसरों को खुश रखने की कोशिश में खुद को ही भूल जाते हैं। हर बात पर हाँ कहना, अपने इमोशंस को दबाना और अपने मन को अलग रख के रिश्तों को निभाना, क्या ये सही तरीका है या नहीं? रेनबो हेल्पलाइन में आज हम यही जानेंगे कि लाइफ में हेल्दी बाउंड्रीज डिफाइन करना क्यों जरूरी है और कैसे ये बाउंड्रीज हमारी रिलेशनशिप्स को, हमारी लाइफ को स्ट्रांग बनाती हैं। हमारे साथ हैं

0: आज के हमारे एक्सपर्ट सतीश कौशिक जी, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और हैप्पीनेस कोच हैं। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है रेनबो हेल्पलाइन में आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आकृति, और जितने भी हमारे सुनने वाले हैं उनको भी मेरा नमस्कार
0: जी। और सतीश जी से अगर आप भी जानना चाहते हैं कि व्यक्तिगत जीवन में सीमाएं तय करना, पहले तो व्यक्तिगत सीमाएं तय कैसे करें, होती क्या हैं और करें तो कैसे करें, इससे संबंधित आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पहुंचा सकते हैं, जो है 9868107070, या फिर आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800111026 पर भी हमें फ़ोन करके अपने सवालों को हम तक पहुंचा सकते हैं। मेरे पास तो सतीश जी से पूछने के लिए बहुत से सवाल हैं। इससे पहले कि आपके सवालों को शुरू करें, सतीश जी पहले तो मुझे यही बताइए कि भाई ये पर्सनल बाउंड्रीज, ये जो व्यक्तिगत सीमाएं हैं, ये होती क्या हैं और क्यों जरूरी हैं?
1: देखिए, बाउंड्रीज आप नॉर्मल कोर्स में अगर आप देखें तो उसका मतलब ये है कि आपने एक बैरिकेड बना दिया है या एक रुकावट बना दी है। जैसे घर के तरफ आप बाउंड्रीज चारों तरफ बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पर्सनल बाउंड्रीज की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये हमारे लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस या रूल्स जो हम लोग अपने लिए बनाते हैं कि हमारे रिलेशनशिप हेल्दी रहें और अच्छे रहें, हम लोग खुश रह सकें। क्योंकि आपने देखा है, वो कहते हैं ना कि जीवन की मिठास जो है वो रिलेशनशिप है। अगर वहाँ पे हमने बाउंड्रीज नहीं बनाई हमने कि कहाँ तक मुझे जाना है, कहाँ तक मुझे कोई बात कहनी है। आप देखिए ना, बचपन से हम लोग जब छोटे होते हैं तो नहीं, आपको बड़ों से ऐसे नहीं बोलना है ना
0: जी।
1: आपका आप उनको तुम कह के नहीं बोलोगे, आप उनको आप कह के बोलोगे। तो ये धीरे धीरे बचपन से हम लोगों को सिखाया जाता है कि ये रिलेशनशिप में अगर इन चीज़ों का हम लोग ध्यान रखें, इन रूल्स और लिमिटेशंस का ध्यान रखें, तो हमारे रिलेशनशिप बहुत बढ़िया होंगे और हम लोग भी खुश रह सकते हैं।
0: एब्सोल्युटली, खुश आप और हम सभी रहना चाहते हैं और हम कोशिश भी भर से करते हैं, लेकिन कितनी बार क्या होता है कि उस कोशिश को करते करते हम थक जाते हैं या फिर हमारी ये जो प्रयास हैं वो सफल नहीं होते हैं। इन सभी सवालों का जवाब आज जान रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन प्रोग्राम में, डिफाइन बाउंड्रीज इन पर्सनल लाइफ, व्यक्तिगत जीवन में सीमाएं तय करना, यही आज की रेनबो हेल्पलाइन का विषय है। हमारे एक्सपर्ट श्री सतीश कौशिक साहब, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और हैप्पीनेस कोच हैं, हमारे प्रोग्राम में रहेंगे। आपके सवाल हम तक पहुँच सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर।

अगस्त का महीना है, बहुत ही खास महीना है, क्योंकि आज़ादी के जोश के रंग में, स्वतंत्रता दिवस के जोश में हम सब रंगे हुए हैं। देश में देशभक्ति है, दिल में जोश है, हवा में देशभक्ति है, हर तरफ नज़र आ रहा है। तो प्यारा तिरंगा, आप भी देखिए अपने आसपास, आपने अपने घर की बालकनी में या फिर आपकी छत में या फिर आपके हाथों में तिरंगा तैयार है या नहीं, क्योंकि इस साल 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के जरिए हम सभी एक बार फिर अपने राष्ट्र के प्रति गर्व और सम्मान की भावना को व्यक्त कर रहे हैं।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
0: हर घर सूर्य घर।
3: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
4: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
3: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
5: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
6: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
7: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
9: रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आकृति खंडूरी, और कहना आपसे यही चाहती हूँ कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि किसी रिलेशनशिप में या फिर लाइफ में अगर हम बाउंड्रीज तय करने लगेंगे तो हमारी रिलेशनशिप्स यानी कि हमारे जो रिश्ते हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन सच ये है कि क्लियर बाउंड्रीज ही रिलेशनशिप को और स्ट्रांग बनाती हैं, और पर्सनल लाइफ में ट्रस्ट आता है, रिस्पेक्ट आता है और अपनापन जो है इसी से बढ़ता है। इस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आज रेनबो हेल्पलाइन में बात हो रही है, डिफाइन बाउंड्रीज इन पर्सनल लाइफ, व्यक्तिगत जीवन में सीमाएं तय करना। श्री सतीश कौशिक साहब जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, हैप्पीनेस कोच हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में हाजिर हैं एज एन एक्सपर्ट, और आपके सवाल हम तक लगातार आ रहे हैं व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर, या फिर आप हमें टेलीफोन करके भी अपने सवालों को हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-111-026, या फिर स्टूडियो का लैंडलाइन 011 दिल्ली का एसटीडी कोड, और फिर आपको डायल करना है 2342-1080 एंड 2342-1082। और सतीश जी, सवाल तो बहुत हैं। पैंथर तोमर साहब कह रहे हैं कि सर बताइए कि मैं खुद को सोशल मीडिया और रील्स की लत से बचाने के लिए अपनी सीमाएं कैसे तय करूं, आजकल बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी
10: देखिए ना, ये सोशल मीडिया आपको यानी एक्सेस में आप यूज़ कर रहे हैं शायद इसको, तो धीरे धीरे अगर आप कोशिश करेंगे, आप देखिए अगर आप 2 घंटे अभी टाइम लगाते हैं
9: जी,
10: तो उसको 1 घंटा 45 मिनट्स करके देखिए। पहले आप एकदम मत छोड़िए, देखिए क्या क्या ज़रूरी है। एक्चुअली जब हम बाउंड्रीज बनाते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि पहली बात तो मैं कौन हूँ और मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करनी पहले पड़ती हैं, तब आप बाउंड्रीज बनाते हो। आपको सोशल मीडिया की कितनी ज़रूरत है कितनी नहीं है ये आपको पहले सोचना पड़ेगा, और उसके साथ ही आप धीरे धीरे फिर उसको कम कर सकते हैं। और जब आपने सोच लिया कि मुझे इतना ही यूज़ करना है, तो आप बाउंड्री सेटअप, पहली बार बाउंड्री बनाएंगे, फिर टूट सकती है वो, फिर बाउंड्री बनाएंगे, शायद दोबारा जब टूटेगी तो टाइम गैप ज़्यादा होगा, शुरू शुरू में जल्दी जल्दी टूटेगी
9: जी। लेकिन अगर आप लगे रहेंगे जरूर जो है ये बाउंड्री भी आप तय कर पाएंगे। फिलहाल पूजा का देहरादून से एक मैसेज आया है सर, दैट मेरी लाइफ में लोग कॉन्स्टेंटली इंटरफेयर करते रहते हैं और मैं चाह कर भी इन लोगों को डील नहीं कर पाती, अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन नहीं कर पाती हूँ, कैसे करूँ आप बताएं।
10: देखिए पहली बात तो हमको अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी होती है, तो हम लोग ये कहते हैं कि अनलेस यू पुट योर फुट डाउन, उसके बिना काम नहीं होगा। तो पहले तो आपको सोचना पड़ेगा कि कौन कौन सी परेशानियां मुझे हो रही हैं
9: जी,
10: यानी मुझे किस किस परेशानियों को रोकना है, एक लिस्ट बना लीजिए।

0: पेपर पे, और उसमें से फिर चूज करिए कि सबसे आसान वाली कौन सी है। वो कहते हैं ना लो हैंगिंग फ्रूट पहले तोड़िए आप। तो पहले वहां पे रोक लगाइए कि आपका कोई नज़दीक है जिससे आपका रिलेशन, आप सोचते हैं कि इससे अगर थोड़ा बहुत रिलेशन इधर उधर भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पहले वहां पे करिए कि ये चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही है। पास में बैठ के आप बात करिए, असर्टिव तरीके से बात करिए, उसमें आप रेस्पेक्ट भी करते हैं लेकिन आप अपनी बात को बहुत तरीके से बोलते हैं
1: जी,
0: और प्रॉपर टाइम पे बोलना,
1: वो बहुत
0: प्रॉपर टाइम पे बोलना। यानी कई बार हम लोग, आपने घर में भी देखा होगा कि पापा मम्मी आर्ग्यू कर रहे हैं और तब आप अपनी बात कहते हैं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है उसकी, लेकिन जब आपने देखा दोनों खुश हैं तो आपके सारे काम हो जाते हैं
1: जी। तो समय, काल और शब्द तीनों जो है मुझे लगता है किस तरह से आप कहें, किस
0: प्रॉपर टाइम पे बात करना वो इम्पोर्टेंट है,
1: वो बहुत इम्पोर्टेंट।
0: तो आप धीरे धीरे उनको पकड़ के मोमेंट्स को और वहाँ पे बात करिए, एंड देन ग्रेजुअली आप देखिए कि इम्प्रूव हो जाएगा
1: जी। सतीश जी से मैं जान रही हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे बाउंड्रीज को डिफाइन किया जाए पर्सनल लाइफ में। पहली बात आपने जो कही थी पहले सवाल के जवाब में कि आपको क्लियर होना चाहिए, जो सवाल का जवाब सोशल मीडिया के बारे में था, लेकिन मुझे जो समझ में आया कि अगर हम क्लियर हैं कि हमें क्या करना है तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए वो एक बाउंड्री को तय करना,
0: डिफाइन
1: करना। दूसरा आपने कहा कि लो हैंगिंग फ्रूट जो है जो सबसे आसान है पहले वहां से शुरुआत करते वो आदत भी पड़ जाएगी। हालांकि अमित जयपुर से कह रहे हैं कि जब मैं किसी को नो कहता हूँ यानी कि अपनी बाउंड्री को डिफाइन करता हूँ तो मुझे बड़ा गिल्ट लगता है कि मैंने कैसे नो कह दिया, क्योंकि आज तक कभी ना नहीं कहा है किसी से। तो क्या ये सेटिंग अ बाउंड्री, इनफैक्ट रोहित का भी यही सवाल है कि बाउंड्री सेट करना कोई सेल्फिश नहीं है, स्वार्थी तो नहीं बन रहे हम?
0: बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है
1: जी।
0: तो
1: ना कहना कैसे सीखें विदाउट फीलिंग गिल्टी?
0: देखिए जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कम्युनिकेशन हम कैसे करते हैं, नो कहने का भी तरीका है। आप एकदम फटाक से नहीं मैं नहीं करूँगा तो दूसरा हर्ट हुआ, लेकिन आपने धीरे से कहा कि देखो मैं आपका काम तो कर सकता हूँ लेकिन मेरे पास इतना सारा काम है कि मुझे दो दिन से पहले फुर्सत नहीं मिलेगी उस काम को करने की, तो आई एम रियली सॉरी, आई इंटेंड टू डू इट बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अगर आप मुझे 3 दिन देते हैं तो आई डू इट। तो आपने ना भी कह दिया और आपका काम भी हो गया
1: जी जी।
0: तो वो हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं
1: हाँ।
0: तो जब भी आप कोई बात करते हैं उसके बारे में पहले सोचिए
1: उसके बाद जी, यानी कि नॉर्मली हम लोग रिएक्ट करते हैं, वी हैव टू रिस्पॉन्ड करना
0: जी, बिल्कुल एग्जैक्टली।
1: हम लोग बिना सोचे समझे आवेश में आके जो इमोशन उस वक्त आया हम उसके माध्यम से जवाब दे देते हैं और बात जैसा कि आपने कहा बनने की बजाय बिगड़ जाती है। तो थोड़ा सा शांति से फिर ठहर के स्थिरता के साथ जवाब दीजिए, क्यों नहीं आपकी बाउंड्रीज को लोग रिस्पेक्ट करेंगे, यही आज का विषय।
0: क्योंकि ये जब बाउंड्री आप सेटअप नहीं करते या लोग आपकी बाउंड्रीज को तोड़ देते हैं तो दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम। आपकी जो पर्सनालिटी है, आइडेंटिटी है, वो कहीं पे धुंधली हो रही है। तो आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं
1: जी,
0: इनको होगी एंजाइटी की प्रॉब्लम,
1: आई एम श्योर। नेहा चंडीगढ़ से कह रही है कि सर बताइए कि मैं अपनी फैमिली के साथ कैसे एक हेल्दी बाउंड्री बनाऊं, मैं परिवार के साथ रहती हूं एंड आई डोंट वांट टू हर्ट देम। मैं समझती हूं उनका बार बार बाउंड्री क्रॉस करना मेरे प्रति प्यार है लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूं इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस से, तो आप थोड़ा सा मुझे समझाएं कि हेल्दी बाउंड्रीज कैसे बनाई जाए विदाउट हर्टिंग एनी ऑफ द फैमिली मेम्बर।
0: देखिए पहली बात तो आप सबको खुश नहीं कर सकते
1: हाँ।
0: आप ये सोचें कि मुझे सबको खुश करना है तो आप परेशान हो जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, आप फैमिली की बात कर रहे हैं, फैमिली में जो जो मेंबर हैं आप इंडिविजुअली लीजिए उनको। आपके ब्रदर से किस तरह से रिलेशन है, ब्रदर से आप किस तरह से बात करते हैं, और उसमें आप बताइए कि ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। एंड जब आप दोबारा से उसको करते हैं, थोड़ा सा उसको पहले करिए ना, उसके बाद दूसरे, मदर के साथ, फिर फादर के साथ, फिर

0: तो आपके वर्ड्स भी ठीक होने शुरू हो जाएंगे. तो एक तो वर्ड्स का ध्यान रखिए जब आप करते हैं, दूसरा आपकी फीलिंग्स क्या है उसके साथ
1: जी,
0: यानी जब आप रियलिटी में बात करते हैं, फेक तरीके से बात नहीं करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा. और तीसरा आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है. जब भाग दौड़ करनी है आपको, एकदम बस पकड़नी है या ट्रेन पकड़नी है या फ्लाइट पकड़नी है, उस टाइम बात ना करें तो बेटर है.
1: बिल्कुल, ठहराव के साथ, शांति के साथ, आराम से बात कीजिए. और एक और चीज़, कम्युनिकेशन की जब बात आती है सतीश जी, तो अक्सर हम लोग मानते हैं कि हम बस अपने दिल की बात कह दें, हम जो कहना चाहते हैं वो कह दें. हम इस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते कि हमें दूसरे की बात को भी सुनना और समझना होगा. और ब्लॉकेज आई थिंक तभी आ जाता है. तो अगर यू रियली वॉन्ट टू हैव अ वेरी हैप्पी एंड अ पीसफुल लाइफ, पर्सनल लाइफ, तो वो डिफाइन बाउंड्री करने के लिए आई थिंक दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. जी, डिफाइनिंग बाउंड्रीज इन पर्सनल लाइफ, यही आज की रेनबो हेल्पलाइन का हमारा टॉपिक है. श्री सतीश कौशिक जी, जो कि साइकोलॉजिस्ट एंड हैप्पीनेस कोच हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में हैं. पूरे 2 बजे तक आपके मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं, 9868107070 पर.

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: एपीई से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
2: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही? रोज तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
3: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
2: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
5: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
6: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं, आकृति खंडूरी, और पूछना आपसे यही चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, या फिर किसी को ना कहना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, या फिर दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते करते कभी कभी आपको लगता है कि वो आप पर ही भारी पड़ रहे हैं। अगर इन सभी सवालों के जवाब कहीं ना कहीं आपके मन में हैं या ये सवाल आपके मन में हैं, तो आज का रेनबो हेल्पलाइन आप ही के लिए है, क्योंकि आज की रेनबो हेल्पलाइन में हम लोग बात कर रहे हैं डिफाइनिंग बाउंड्रीज इन पर्सनल लाइफ, व्यक्तिगत जीवन में सीमाएं तय करना क्यों जरूरी है और कैसे करें। इस विषय में हमें बहुत कुछ बता रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट श्री सतीश कौशिक साहब, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और हैप्पीनेस कोच हैं। आपके सवाल व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर हम तक पहुंच रहे हैं। बहुत से सवाल हम तक आ रहे हैं। एक तो ये है राजेश का मेरठ से, सतीश जी, जो कहते हैं कि मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करते ही रहते हैं और मैं भी दोस्तों के बिना रह नहीं सकता, और अगर रहूं तो फिर वो इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस होती है, समझ ही नहीं आता कैसे बैलेंस बनाऊं, बताइए।
8: राजेश, इसने बाउंड्री तो बिल्कुल ही नहीं बनाई हुई है। यानी कोई बाउंड्री नहीं बनी हुई है
7: जी।
8: तो थोड़ा बहुत अगर धीरे धीरे अगर बनाएंगे तो आई थिंक इनकी लाइफ बेटर हो सकती है। यानी अब कई बार हम लोग अपने आप को भूल जाते हैं दूसरों के लिए करते करते
7: जी,
8: तो
7: जी।
8: आपको अपने आप को भी याद रखना पड़ेगा और उस पे काम करना पड़ेगा।
7: बट कई लोग कहते हैं कि अगर बाउंड्री बनाने लगो तो दोस्ती पीछे छूट जाती है, टूट जाती है।
8: देखिए, बाउंड्री कोई हम यानी कोई टेंजिबल तो चीज़ नहीं है कि भाई आपके सामने एक ग्लास रखा हुआ है, आपने बनाया। इनविजिबल हैं ये
7: जी।
8: यानी आप अपनी जिंदगी को चलाना कैसे चाहते हो, उसके लिए आप रूल्स बनाते हो, आप पैरामीटर्स बनाते हो, ये मुझे करना है, ये नहीं करना है। यानी आप, मेरी सोच ये है
7: जी,
8: मुझे दूसरे टॉपिक पे बात करना अच्छा नहीं लगता, तो आपने बाउंड्री बनाई है कि ये मेरा, तो आपकी जो इंटेलेक्चुअल बाउंड्री है वो एक डिफाइन होती है।
7: हाँ।
8: तो आपको वहां मजा आएगा जहां पे आपकी वेवलेंथ मिलती है उस एरिया में।
7: जी जी जी। तो अगर कुछ दोस्त जो हैं आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, एक बात जो सतीश जी से हमको समझ में आई कि वो बाउंड्री तो मुझे ही तय करनी होगी। कितनी बार हम ढील देते देते देते भूल ही जाते हैं अपने आप को। तो आई थिंक आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि आत्मसम्मान होना चाहिए, एरोगेंस नहीं, आत्मसम्मान जो है।
8: आत्मसम्मान के साथ साथ आपको क्या चाहिए, आप इस रिलेशनशिप में भी, हाँ,

0: देखिए ना, फ्रेंड्स के रिलेशनशिप में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि मेरा सारा गड़बड़ कर देंगे
1: जी,
0: ये
1: जी,
0: तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
1: बिल्कुल भी नहीं। दोस्ती का मतलब
0: पहले डिफाइन, ये दोस्ती का मतलब तो एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना भी
1: है। हाँ, तो दैट मींस कि राजेश वो आपकी दोस्त ही नहीं है अगर वो आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो शायद वो दोस्त कहने लायक ही नहीं है और उनसे दूर हो जाना में भी आई थिंक इट्स
0: धीरे धीरे आपको वो करना पड़ेगा उसमें जी, और अदरवाइज इनको वैसे भी प्रॉब्लम होती होगी, यानी इसकी वजह से इनको फैमिली में भी वो हो सकते हैं। इफ ही इज मैरिड तो भी वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है।
1: हर तरह के रिलेशनशिप में मुझे लगता है, जैसा आपने कहा कि ये एक्चुअली आपकी अपनी पर्सनालिटी के बारे में है, आप किस तरह से अपनी आपकी आइडेंटिटी के बारे में है ये,
0: और आपकी सेफ्टी के बारे में भी,
1: और आपकी सेफ्टी, आपकी इमोशनल फिजिकल हर तरह की सेफ्टी के बारे में भी ये है। तो बाउंड्रीज तय करने के लिए हमें बाहर कुछ नहीं करना है, बहुत अच्छा सतीश जी ने कहा, आपको अपने मन में ही वो क्लैरिटी लानी होगी। इनफैक्ट आई एम रिमेम्बरिंग बहुत दार्शनिक थे एक, उन्होंने कहा था दैट इन ऑर्डर टू मेंटेन अ हेल्दी रिलेशनशिप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द इंडिविजुअल्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन दैट रिलेशनशिप्स उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, वो अपने आप में खुश हैं। अगर वो अपने आप में खुश हैं, अपनी सीमाओं को जानते हैं, तो वो किसी भी रिलेशनशिप में क्यों ना रहें, चाहे वो दोस्ती का हो, परिवार का हो, प्रोफेशनल हो, दे विल हैव वेरी हेल्दी रिलेशनशिप एंड वेरी हैप्पी लाइफ। जी, चिया का एक पटना से हम तक मैसेज आया है, ये कहती हैं सतीश जी मैं शादीशुदा हूँ लेकिन मेरी अपने हस्बैंड के साथ अक्सर लड़ाई हो जाती है और हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, और इस हद तक लड़ाई हो जाती है कि जब मैं ऑफिस में जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड घर पर बहुत कुछ तोड़ फोड़ कर चुके होते हैं। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इसे मैं ठीक कैसे करूँ। बताइए, चिया का सवाल है।
0: देखिए ना, यहाँ पे बहुत क्लियर है कि बाउंड्रीज कहीं पर सेटअप नहीं हुई है हस्बैंड वाइफ में, और इस तरह के जो रिलेशंस में जो गड़बड़ होती है वहाँ बाउंड्रीज हम लोग रेस्पेक्ट नहीं करते हैं एक दूसरे की। देखिए, किसी भी रिलेशनशिप में, इसमें जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में तीन आइडेंटिटी होती है, दो नहीं होती हैं
1: जी।
0: तीन आइडेंटिटी का मतलब एक हस्बैंड की आइडेंटिटी है, एक वाइफ की आइडेंटिटी है, और एक टुगेदर आइडेंटिटी है दोनों। तो वहाँ पे आपने बाउंड्रीज तो बनाई नहीं है, तो आप वाइफ की बाउंड्रीज में घुस रहे हो, वाइफ आपकी बाउंड्रीज में घुस रहे हो, और जो बेचारा तीसरी आइडेंटिटी थी
1: जी
0: उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आप थोड़ा थोड़ा देखिए, हम इंडिविजुअल्स हैं, हस्बैंड वाइफ इंडिविजुअल्स हैं, अलग अलग तरीके से वो पले हैं,
1: बिल्कुल
0: उनकी सोचने के तरीके डिफरेंट हैं। देखिए, प्यार भी तब है कि जब हम एक दूसरे की ग्रोथ को देखते हैं। तो जो आपने एक थर्ड आइडेंटिटी बनाई है, पहली बात तो उस पर काम करिए, और एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना शुरू। उसकी जो वाइफ की आइडेंटिटी है उसको क्या चाहिए,
1: बिल्कुल
0: वहां पे उसको देखना बहुत जरूरी है, और जो हस्बैंड को क्या चाहिए वहां पे हस्बैंड को अपना देखना है। उसके बाद टुगेदर अगर आप उसको वो कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं
1: जी,
0: तो नथिंग लाइक इट। तो जो थर्ड आइडेंटिटी आपकी है
1: जी,
0: उस पे ऑटोमेटिकली बेटर होगी वो।
1: एब्सोल्युटली, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और चिया, एक हल्की सी बात मैं कहना चाहूँगी आपसे कि कुछ समय के लिए ना आप रिएक्ट करना बंद कर दें, क्योंकि सवाल आप पूछ रही हैं आप इस चीज़ को ठीक करना चाहती हैं। यू नो, एट टाइम्स वी फील कि यही सब कुछ है जिंदगी में, बहुत कुछ है,
0: यहाँ पे एक चीज और भी कर सकते हैं।
1: हाँ,
0: यहाँ पे एक बहुत जरूरी है कि प्रॉपर टाइम पे,
1: हाँ
0: प्रॉपर टाइम पे बैठ के बात करिए कि ये मुझे अच्छा लगता है, ये नहीं,
1: ये
0: अच्छा
1: नहीं
0: लगता है।
1: बिल्कुल
0: सुनिए एक दूसरे की।
1: हाँ,
0: यानी आप मेरे ख्याल से क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते हैं।
1: हाँ, बातचीत होती है तो तभी जब गुस्से में दोनों एक गुस्से में भरे हुए होंगे, तो फिर जबान से चाहे सही बात भी निकले उसका असर तो गलत ही होता है। आप पहले ही कह चुके हैं सतीश जी इस बात
0: तो
1: को,
0: बैठ के बात करिए।
1: हाँ,
0: एक दूसरे की सुनिए।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ आकाश का सवाल है दिल्ली से, ये कहते हैं कि रिलेशनशिप में पर्सनल स्पेस होना कितना इम्पोर्टेंट है।
0: बहुत इम्पोर्टेंट है, फिजिकल बाउंड्री है ये।
1: ये कैसे क्रिएट करें,
0: पर्सनल स्पेस
1: कैसे क्रिएट करें?
0: नहीं देखिए, मेरा ये है कि मैं हाथ मिला रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि हाथ मिलाते हैं फिर उसके बाद गले भी मिलते हैं
1: जी,
0: मुझे

0: नहीं मिलना है तो आपको अपना स्पेस बनाना पड़ेगा, आपको ये कहना पड़ेगा कि नमस्कार
1: जी
0: हाथ छोड़ के तो जी. आपको मुझे पर्सनली कितना क्लोज होना है. और आकृति जी ये मैं बताऊं कि एक स्टडी भी है इस पे कि इंटीमेट रिलेशंस में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, आप कितनी दूर रह के बात कर सकते हैं. जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, फादर मदर है, तो वहां पे 2 फुट के करीब.
1: बिल्कुल.
0: और अगर आपके फैमिली मेंबर्स हैं तो देर नॉर्मली 4 फुट के करीब डिस्टेंस से बात करिए आप. यानी आप एकदम बिल्कुल सामने. हमारी जो कल्चर है उसमें हम लोग क्लोजनेस की बात करते हैं. तो इसी तरह से आउटसाइडर्स है, फ्रेंड्स हैं, उसमें और भी ज्यादा डिस्टेंस है.
1: जी.
0: और पब्लिक में आपने देखा होगा दूर से आप बात करते हैं.
1: बिल्कुल.
0: तो ये जो पैरामीटर्स हैं ये फिजिकल बाउंड्रीज हैं.
1: बिल्कुल.
0: जो अगर उनको आप वो करेंगे तो यू विल बी वेरी हैप्पी.
1: एब्सोल्युटली. एंड एट द सेम टाइम पर्सनल स्पेस इमोशनली आपको खुद को रखना होगा और बहुत जरूरी है उस रिलेशनशिप को में पर्सनल स्पेस को मेंटेन करना. चाहे वो कहते हैं ना चांद को भी अगर आप बहुत करीब से देखेंगे और लगातार देखेंगे तो उसमें भी दाग नजर आने लगेंगे. तो आई थिंक दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट फॉर यू टू हैव दैट पर्सनल स्पेस. एंड एट द सेम टाइम जो आपकी जिंदगी में कोई और है उनके भी पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट करना. मतलब हमारे यहाँ ट्रेंड कुछ इस तरह से हो जाता है समाज में कि आप प्यार करते करते करते ओवरवेलमिंग हो जाते हैं. yeah, या यू नो करते करते यू नेवर रियलाइज कि आपने कब इंक्रोच कर दिया किसी के पर्सनल स्पेस में. और इसीलिए डिफाइनिंग बाउंड्रीज इन पर्सनल लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. और यही आज की रेनबो हेल्पलाइन का टॉपिक भी है. यश शिंदे साहब मुंबई से हमसे जुड़े हैं और कहते हैं कि जीवन में सीमाएं होना बहुत जरूरी है. लेकिन सर सतीश जी जितना हम अच्छा बनते हैं लोग हमारा उतना ही फायदा उठाते रहते हैं. अब समझ नहीं आता कि कैसे सीमाएं उसको बनाएं.
0: देखिए यहाँ पे रियलाइजेशन है कि बाउंड्री नहीं है यहाँ पे. तभी दूसरे लोग जो हम फिजिकल मटेरियल बाउंड्री की बात करते हैं
1: जी
0: कि ये मेरी चीज है, ये मैं इसको देना चाहता हूँ या इसको नहीं देना चाहता, कोई दूसरा यूज करेगा नहीं करेगा, मेरा चार्जर दूसरा इस्तेमाल करे नहीं करे, ये आपको बाउंड्रीज अपनी बनानी पड़ेंगी. तो इसमें भी आपको नहीं तो डिसेंट एडवांटेज तो होगा.
1: हो गए.
0: लोग फायदा उठाएंगे.
1: जी जी. एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है प्रिया का कानपुर से. और ये कहती हैं कि रिलेशनशिप में अपनी पर्सनल डिटेल्स एक दूसरे के साथ शेयर करना क्या हेल्दी होता है, जैसे कि बैंक डिटेल्स या रेस्ट ऑफ द डिटेल्स, क्योंकि कहते हैं कि आप ट्रस्ट ही नहीं करें तो रिलेशनशिप कैसे होगी. तो आप बताएं सतीश जी, इज इट इम्पॉर्टेंट टू शेयर एवरी पर्सनल डिटेल विद समवन वेरी क्लोज. जी
0: देखिए रिलेशन पे भी डिपेंड करता है आप कितना शेयर करना चाहते हैं. पर मैं ये बात मैं जानता हूँ कि कोई भी रिलेशनशिप हो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सारी की सारी डिटेल्स बांटें आपस में. हालांकि हस्बैंड वाइफ में ये आप भी डिटेल हैं. अभी जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी ना
1: कि
0: इंडिविजुअलिटी सबकी है. दोनों की इंडिविजुअलिटी है या दूसरे की भी इंडिविजुअलिटी है मेरी भी है. मैं नीड बेस्ड क्यों नहीं शेयर करते आप
1: जी. जब जरूरत है तो तभी.
0: हाँ उतनी ही शेयर करिए ना. बहुत ज्यादा आप किसी को अपने बारे में बताते हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सारा का सारा पॉजिटिवली लिया जाए. वो नेगेटिवली भी तो ले सकते हैं ना.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: तो उसका इम्पैक्ट आपको फिर भुगतना पड़ेगा. तो पहले से ही तैयार रहिए ना.
1: हाँ हाँ. आई थिंक वही जो एकदम शुरुआत में आपने कहा ना कि हम ही कंफ्यूज रहते हैं और इसीलिए हम इमोशनली उसी तरह से बिहेव करते रहते हैं और फिर किसी बड़े से कंफ्यूजन में हम भी फंस जाते हैं. आई थिंक वंस वी आर सॉर्टेड हमारे दिमाग में हमारे प्रिंसिपल्स और हमारी बाउंड्रीज हमने खुद ही डिफाइन करी हुई हैं तो बहुत इजी हो जाता है टू हैंडल रिलेशनशिप्स एंड लाइफ एज वेल. सोनिया का गुरुग्राम से सवाल आया है सर कि पेरेंट्स अपने बच्चों को यंग एज से ही कैसे पर्सनल बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करना या बनाना सिखाएं. बच्चों को कैसे ये फॉस्टरिंग की जाए, नर्चरिंग की जाए बचपन से ही.
0: देखिए जो बच्चे सीखते हैं डिफरेंट एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके अलग अलग एज ग्रुप्स हैं. उसमें मैक्सिमम चीज़ें तो हमारे से सीखते हैं. पेरेंट्स से सीखते हैं
1: जी।
0: अगर आपको किसी को सिखाना है अपने बच्चे को, तो पहले ये देखना पड़ेगा कि आप भी उसको मानते हैं या नहीं मानते हैं। आप अपने बच्चे को कहते हैं कि सेलफोन यूज नहीं करना है
1: जी,
0: लेकिन आप हर समय लगे हुए हैं अपने सेलफोन पे। तो डिसिप्लिन हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। वहां पे धीरे धीरे बच्चे देखते हैं ना, दे ऑब्जर्व। आपने देखा होगा जिस घर में अब्यूजिव है तो बच्चे भी उसी तरह से बिहेव करना शुरू कर देते हैं। और शुरू से करिए ना, वो ये कहते हैं कि एक बच्चे को पालने के लिए पूरा गांव चाहिए। तो आप वहां पे इस तरह से बनाइए ना, एनवायरनमेंट इस तरह का दीजिए उनको। हाँ। वो अपने आप सीख जाएंगे।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: आपको सिर्फ एनवायरनमेंट देना है।
1: हाँ, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, एनवायरनमेंट देना है, यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल।
0: धीरे धीरे आप देखे ना, छोटे बच्चे को धीरे धीरे देखो ये नहीं करना चाहिए, ये क्यों नहीं करना चाहिए, इससे आपको चोट लग सकती है।
1: हाँ।
0: तो आप जब धीरे धीरे बताते हैं, चलो आज ये हो गया, उसने फिर से वैसे किया, फिर उसको देखो आपने दोबारा से किया, इसको नहीं करना चाहिए ना। तो थोड़ी देर के बाद आप एक दो दिन में देखेंगे वो आपकी बात
1: एक्सेप्ट करने लगेगा, ओबे करने
0: लगेगा। तो वो इज लर्निंग आल्सो,
1: जी और शी,
0: दे आर लर्निंग आल्सो बच्चे।
1: एब्सोल्युटली, आई थिंक आपने बहुत ठीक कहा कि घर पे ही हम धीरे धीरे करके वो बाउंड्रीज, जैसे कितनी बार क्या होता है पेरेंट्स बड़ा मोह में आके, प्यार में आके उनकी जिद को मानने लगते हैं कि चलो अच्छा बच्चा चुप हो जाएगा, मुझे भी शांति मिलेगी।
0: नहीं वो देखे ना, मुझे शांति मिलेगी वो वाला फिर तो सेलफोन दे देते हैं ना हाथ में।
1: बिल्कुल जी, जी जी,
0: वो नहीं करना।
1: बिल्कुल आपने बहुत ठीक कहा। दीपक का एक हिसार से सवाल है और ये सवाल बहुत से यंगस्टर्स को है। अब भारत जो है वहाँ पे परिवार मिलके रहते हैं, बहुत सारी जनरेशन एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहती हैं, और वहाँ पर ये सवाल मैंने बहुत से यूथ के जुबानी सुन चुकी हूँ मैं कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मेरी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट ही नहीं करते। मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ, कमा रहा हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन फिर भी मेरे पेरेंट्स जो हैं मेरी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हर बात पे टोका टाकी होती है, हर बात पे सलाह होती है, कैसे हैंडल किया जाए? बताइए सतीश जी।
0: देखिए मुझे नहीं लगता इन्होंने, दीपक है ना
1: जी,
0: उन्होंने कभी अपने पापा मम्मी से बैठ के जब इंटरफेयर हो रही है बात की है।
1: हाँ।
0: कि पापा मुझे ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है।
1: हाँ।
0: बैठ के बात करिए और धीरे धीरे बात करिए ना। आप पूरी अपनी लिस्ट बना लीजिए कि मुझे ये इश्यूज हैं।
1: हाँ, हाँ,
0: कि पापा
1: हाँ।
0: मुझे आपसे बात करनी है।
1: हाँ।
0: कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा
1: जी।
0: जैसे मैं भी अपने बच्चों से जब बात करता हूँ तो कई बार मैं उनको बोलता हूँ कि भाई ये मुझे अच्छा नहीं लगा।
1: हाँ। जी।
0: तो जब आज तक आप नहीं बताएंगे, कई बार आपने देखा होगा कि पेरेंट्स की भी कई बार वो होती हैं, बच्चे तो सुनते ही नहीं है। एक बार किसी ने बोला रेडियो पे मुझे
1: जी
0: कि सर ऐसा है कि वो बच्चे कहते हैं कि सुनते ही नहीं है। तो मैं ये यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि आप किस तरह से बात करते हो।
1: हाँ।
0: आप किस तरह से बात करते हो, तब फिर आप अगर मुझे कहें कि नहीं सुनते हैं तब उस पे बात करें,
1: तब उस पे बात कीजिएगा। बातचीत का तरीका, बातचीत ही इस चीज का जरिया है। लेकिन बातचीत, सर सतीश जी बार बार बता रहे हैं कि किस तरह से आप करते हैं, किस लाइफ कंडीशन से करते हैं, किन शब्दों के साथ करते हैं, किस समय पर करते हैं, ये बातें जो उसका आउटकम होगा उस पर निर्भर करता है।
0: जी
1: हाँ। डिफाइनिंग बाउंड्रीज इन पर्सनल लाइफ, यही रेनबो हेल्पलाइन में आज का विषय है।

0: एक हैप्पी और पीसफुल लाइफ की शुरुआत तब होती है जब हम अपना रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, दूसरे नहीं, हम खुद अपना रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं। और इसका सबसे आसान या फिर इम्पोर्टेंट तरीका है अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन करना और उन्हें क्लियरली और कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करना। यही जान रहे हैं हम श्री सतीश कौशिक साहब से, जो कि आज के प्रोग्राम में हमारे एक्सपर्ट हैं। और रेनबो हेल्पलाइन में आज हम जान रही हैं कि बाउंड्रीज को डिफाइन कैसे करें। और इनफैक्ट ये भी समझ में आ रहा है कि बाउंड्रीज को डिफाइन करना सेल्फिश नहीं है, बल्कि ये तो सेल्फ रिस्पेक्ट की पहचान है, आपके आत्मविश्वास की पहचान है। प्रोफेशनली बाउंड्रीज कैसे सेट की जाएं सर, ये एक मुद्दा उठता है, सवाल उठता है कि विदाउट यू नो शेयरिंग आर डिसकंटेंटमेंट, लेकिन आप बाउंड्रीज भी सेट करें।
1: देखिए, जब आप सीख जाते हैं अपनी पर्सनल बाउंड्रीज बनाना, तो वो आपको आपके वर्क में भी हेल्प करता है, ऑफिस में भी।
0: जी जी,
1: यानी वहाँ पे अगर बाउंड्रीज नहीं बनाएंगे, मुझे किसी को मैं नहीं चाहता कोई मुझे डिस्टर्ब करे, तो वहाँ पे कि भी मुझे काम है तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, तो आपका काम ठीक से होगा।
0: हाँ,
1: तो वहाँ पे जैसे आपने एक क्वेश्चन लिया था कि नो कहना, वहाँ पे अगर नो कहना आपने सीख लिया है, यानी कई बार तो नो कहने से प्रॉब्लम भी हो सकती है, बट किस तरीके से आप कहते हैं और जेन्युइन नो है
0: जी,
1: कि मैं करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको यू हैव टू वर्क इन अ डिफरेंट वे। और वर्क लाइफ बैलेंस की जब हम बात करते हैं, तो चार चीजों का होना बहुत जरूरी होता है। एक तो वर्क है आपका, एक फैमिली लाइफ है, एक सोसाइटी है, एंड एक आपका सेल्फ ग्रोथ है। जब आप उन चारों चीजों पे काम करते हैं, तब आपका वर्क लाइफ बैलेंस आता है। और वर्क लाइफ बैलेंस इज ये वेरी करता रहता है। जैसे बाउंड्रीज भी आपकी इवॉल्व होती हैं
0: जी,
1: वक्त के साथ, रिलेशन के डेवलपमेंट के साथ, टाइम के साथ, इन चीजों के साथ वो डेवलप होती हैं। इसी तरह से वर्क लाइफ बैलेंस सवेरे से शाम तक फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी ऊपर है कभी नीचे है। लेकिन जब आप बाउंड्रीज बना लेते हैं उसमें कि मुझे इतना टाइम, यानी मुझे 5 बजे तक अपना काम खत्म करना है, तो फिर देन यू स्टार्ट रिमूविंग ऑल हिंड्रेंसेस बीच में। ये यहाँ से मेरा टाइम खराब हो रहा है तो मुझे यहाँ पे खत्म करना है, ये गप्पे वाला जो टाइम है ये मुझे छोड़ना है।
0: हाँ। जी जी जी, और चलते चलते अब समय समाप्ति की तरफ है, क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से?

0: देखिए, ज़िंदगी में अगर डिसिप्लिन नहीं है, यानी डिसिप्लिन का दूसरा नाम, आपने नॉर्म्स नहीं बना रखे हैं अपनी जिंदगी। पहली बात तो जैसे आपने कहा कि पहले तो अपने आप से सोचिए कि आप चाहते क्या हैं, उस पर थोड़ा ध्यान लगाइए, अपने से प्यार करना शुरू करिए।
1: जी
0: तो जैसे ही आप अपने से प्यार करना शुरू करते हैं तो वो आपको पता लगता है कि ये मुझे करना है, ये नहीं करना, तो बाउंड्रीज अपने आप क्रॉप
1: सेट हो
0: अप सेट
1: जाती
0: हो
1: है।
0: जाती हैं,
1: जी हाँ
0: और धीरे धीरे आप उनको कम करिए या ज़्यादा करिए। जहाँ पे आपको मज़ा आने लगे तो बाउंड्री छोटी कर सकते हैं आप, है ना।
1: बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि ये हर वक्त हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग कभी हाई होंगी कभी लो होंगी,
0: जी हाँ
1: तो जेन्युइन इमोशंस होना बहुत ज़रूरी है। आप ये
0: जी
1: देखिए
0: हाँ
1: कहीं
0: जी
1: आप
0: हाँ
1: इमोशनली बहुत वीक हो रहे हैं और इसलिए तो आपको बाउंड्रीज की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ऑन दिस नोट थैंक यू वेरी मच सतीश जी फॉर बींग विद अस।
0: थैंक यू
1: रेनबो
0: मैम, वैसे
1: हेल्पलाइन में
0: जी
1: आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी
1: और आखिर में मैं आकृति खंडूरी भी चलते चलते आपसे यही कहना चाहूँगी, लाइफ में खुश रहने के लिए अच्छे सर्कमस्टांसिस ही ज़रूरी नहीं है, निर्भर ये करता है कि हम अपने लिए कितनी हेल्दी बाउंड्रीज को डिफाइन करते हैं। जब हम अपने इमोशंस या लाइफ की वैल्यू करना सीखते हैं तभी लाइफ ट्रूली हैप्पी और वैल्यूएबल होती है। याद रखिए
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हेल्दी बाउंड्रीज दीवारें नहीं है बल्कि हैप्पी और रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप और लाइफ की स्ट्रांग फाउंडेशन है। इसी नोट पर आकृति को दीजिए विदा। नमस्कार।

नमस्कार, दो बज चुके हैं। पेश हैं इस घंटे के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। संसद में विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। लोकसभा में आज ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए गए। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आज छात्रों का विधानसभा मार्च। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया, जीईएम पर सरकारी खरीद का कारोबार एक दशक में 422 करोड़ से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना का संयुक्त विस्फोटक आयुध रोधक ईओडी अभ्यास 2026 आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। चीन में तूफान डॉल्फिन का कहर, 10 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस के अवसर पर कहा, भारत में एशियाई शेरों की आबादी लगातार बढ़ रही है और उनके आवास और विचरण का क्षेत्र भी लगातार विस्तार कर रहा है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। और खेलों में ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुग पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। ये थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 102.6 आकाशवाणी रेनबो और शुरू हो चुका है आपका फेवरेट प्रोग्राम आशियाना। और आज आशियाना में मैं हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त आरजे शालिनी। दोस्तों, आशियाना एक ऐसा कोना होता है जहाँ बात होती है हमारे घर परिवार से जुड़ी छोटी छोटी लेकिन बेहद खास बातें। आज बात एक ऐसी ही आदत की जो बच्चों की कल्पना को पंख देती है और बड़ों के ज्ञान को लगातार बढ़ाती है, और वो क्या है? वो है पढ़ने की आदत। दोस्तों, आज के दौर में जब मोबाइल और स्क्रीन हमारे खाली समय का बहुत बड़ा हिस्सा ले रहे हैं, उन्हें लगता है जैसे उन्होंने हमारा पूरा समय ही कब्जा लिया है। ऐसे में किसान के किताब के कुछ पन्नों के लिए समय निकालना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम तो स्क्रीन ले लेती है, परिवार के लिए भी समय नहीं बचता। तो बुक रीडिंग कैसे हम कर पाएँ और कैसे वो आदत हमारी आने वाली पीढ़ी को भी मिले, इसके लिए सोचना बेहद ज़रूरी है। और ये आदत आपके साथ साथ पूरे परिवार की भी बन जाए तो घर का माहौल बिल्कुल बदल सकता है। तो दोस्तों, आज बात होगी कि परिवार में कैसे बुक रीडिंग की हैबिट को बढ़ाया जाए और कैसे कैसे स्क्रीन से अपने घर के बच्चों को दूर किया जाए।

दोस्तों, नैनो का नहीं लेकिन आपका कसूर ज़रूर है अगर आप खुद घंटों मोबाइल में स्क्रॉल करते रहते हैं, क्योंकि बच्चे भी वही देखते हैं और बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। और अक्सर हम बच्चों से तो कहते हैं कि पढ़ाई करो, किताब पढ़ो, कहानियाँ पढ़ो, लेकिन क्या हम खुद किताब उठाकर पढ़ते हैं? बच्चे सिर्फ हमारी बातें ही नहीं सुनते, वे हमारे पूरे बिहेवियर को नोटिस कर रहे होते हैं और उन्हीं को देख के वो कब उन चीज़ों को सीख जाते हैं, कब उनके व्यवहार में उसकी झलक मिलने लगती है पता ही नहीं लगता। अगर घर में माता पिता, दादा दादी या बड़े भाई बहन रेगुलर पढ़ रहे हैं, कोई भी किताब पढ़ रहे हैं या अखबार पढ़ रहे हैं और उनमें रीडिंग की आदत है, तो बच्चों के लिए भी वो उनके जीवन का हिस्सा बन सकती है क्योंकि वो उसी को देखते हैं। इसलिए पढ़ने की आदत सिखाने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? कि आप उसे अपने घर के माहौल का हिस्सा बनाएं। हर दिन सिर्फ 15 से 20 मिनट का फैमिली रीडिंग टाइम भी एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। फिलहाल आकाशवाणी रेनबो पर आपके लिए गीत।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम आशियाना। दोस्तों इन दिनों पूरे देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, तो बात करते हैं तिरंगे की। तिरंगा सिर्फ तीन रंगों से बना एक झंडा नहीं, बल्कि भारत की पहचान, हमारी स्वतंत्रता और हमारे गौरव का प्रतीक है। केसरिया हमें साहस और त्याग की याद दिलाता है, सफेद रंग शांति और सत्य का संदेश देता है, तो हरा रंग समृद्धि और विकास का प्रतीक है, और इन तीनों के बीच मौजूद अशोक चक्र हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। तिरंगे को सम्मान देना केवल राष्ट्रीय पर्वों तक सीमित जिम्मेदारी नहीं है, यह हमारी रोजमर्रा की देशभक्ति का भी हिस्सा है। खासकर राष्ट्रीय पर्वों के बाद कागज के झंडों को सड़क या जमीन पर फेंकना नहीं चाहिए, उनकी गरिमा बनाए रखते हुए उचित तरीके से निपटान करना चाहिए। इसलिए दोस्तों याद रखिए, तिरंगा हमारी शान है और उसकी गरिमा बनाए रखना हम सबका सम्मान है, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।
5: कोयल सी तेरी बोली,
6: आए हाय,
5: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
6: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
5: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
6: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
7: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
8: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर आपका फेवरेट प्रोग्राम आशियाना, और आज बात हो रही है बुक रीडिंग की। जी हाँ, पढ़ना सिर्फ नॉलेज बढ़ाने का ही जरिया नहीं है, बल्कि परिवार को भी करीब लाने का एक तरीका है। सोचिए, अगर रात को खाने के बाद परिवार के सभी सदस्य कुछ देर के लिए साथ बैठ जाएं, कोई कहानी पढ़े, कोई कविता सुनाए और फिर उस पर हो थोड़ी सी बातचीत, बच्चों से पूछा जाए कि कहानी में उन्हें कौन सा कैरेक्टर पसंद आया और क्यों, कहानी से उन्हें क्या सीख मिली, और इस तरह किताब बातचीत का विषय बन सकती है और साथ ही साथ इसके ज़रिए परिवार के बीच कम्युनिकेशन भी बढ़ सकता है। खासकर दादा दादी के लिए बच्चों को कहानियाँ सुनाना एक बहुत अच्छा अवसर और तरीका हो सकता है, जहाँ पर बच्चों को किताब के साथ साथ उनके अनुभव से कुछ सीखने को मिले और साथ ही साथ जो संस्कार हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर बढ़ चलें।

तो दोस्तों, आशियाना में हम बात कर रहे हैं रीडिंग हैबिट की। और अगर बात करें पढ़ाई से क्या कुछ फ़ायदा हो सकता है, भाई दोस्तों पढ़ाई से ना सोच भी बेहतर होती है। अब आप कहेंगे कैसे? किताबें ना बच्चों को सिर्फ अच्छे नंबर लाने में ही मदद नहीं करती हैं, बल्कि वो उन्हें सिखाती हैं सवाल पूछना, कल्पना करना और अलग अलग नज़रिए को समझना। क्योंकि कहानी पढ़ते हुए ना बच्चा सोचता है कि अगर वो उस कैरेक्टर की जगह पर होता तो क्या करता, और यही सोच आगे चलकर उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग क्षमता को मजबूत करती है। और बड़ों के लिए भी पढ़ना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि सीखने की ना कोई उम्र नहीं होती। परिवार में जब हर

0: ये आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: दोस्तों एक बात तो आप मानेंगे कि आजकल ना हर प्रोग्राम हर परिवार की एक सबसे बड़ी चुनौती है, वो है स्क्रीन टाइम। क्योंकि ना मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया सब जगह इस तरीके से घुस गया है कि कहीं ना कहीं हमारा खाली समय बिल्कुल ख़त्म हो गया है। क्योंकि खाली समय तो स्क्रॉल करने में बीतता चला जाता है और वही आदत आने वाले बच्चों में भी आ रही है। इसीलिए आप किताब को एक सकारात्मक ऑप्शन बना सकते हैं, जैसे कि घर में आप एक छोटा सा रीडिंग कॉर्नर बना सकते हैं जहाँ पर बच्चों की किताबें हों, कॉमिक्स हों, पत्रिकाएँ हों, कुछ एक्टिविटीज़ भी आप उसमें रख सकते हैं और साथ ही साथ बड़ों की पसंद की किताबों को भी उसमें शामिल किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर दिन आप बहुत देर तक पढ़ाई करें या बहुत ज़्यादा किताब पढ़ें, लेकिन हाँ शुरुआत सिर्फ 10 मिनट से की जा सकती है। और धीरे धीरे जब आप मोबाइल स्क्रीन को दूर करके किताबों को अपना दोस्त बनाएंगे ना, तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपके परिवार के बाकी लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा।

तो दोस्तों, आपको भी फासला मिटाना है अपने और किताबों के बीच, और इसके साथ ही आपको अपने परिवार के साथ अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। तो आज के आशियाने में एक छोटा सा संकल्प लीजिए कि हर दिन कुछ मिनट किताब के नाम करेंगे और कुछ पल अपने परिवार के नाम। तो पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए और अपने घर को विचारों से समृद्ध बनाते रहिए। अब आपके लिए पेश है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर, रतनमाला सुरेलकर जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
0: पेड़ जितना फलदार होता है उतना ही विनम्र होकर झुक जाता है और सफलता भाग्य से नहीं बल्कि सही सोच, निरंतर मेहनत और धैर्य से ही मिलती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। आप हमारे चिर परिचित श्रोता हैं, लिखते हैं, विमलेश जी और अजीत जी आपको प्यार भरा नमस्कार। हमें दिनांक 21/7/2026 और 22/7/2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया। आगे आपने लिखा है,
0: जिसमें आपने ये भी जानिए के तहत भारत के अनूठे मेलों की जानकारी दी। इसमें आपने असम और नागालैंड के मेलों की जो दुर्लभ जानकारी दी वो हमें बेहद पसंद आई
1: जी।
0: दिनांक 22 जुलाई 2026 के ही प्रसारण में आपने सुंदरिया की कहानी सुनाई, वो भी हमें बेहद पसंद आई। ऐसा लगा मानो पूरा दृश्य आंखों के सामने दिख रहा हो, बहुत अच्छी कहानी थी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक शिकायत भी है हमारा संदेश प्रोग्राम में शामिल नहीं किए जाने की, कोई नाराजगी है तो माफ करें।
1: तो राजेश जी आपको कहना चाहते हैं, कोई नाराजगी नहीं है। देखिए, हमने आपका संदेश आज के प्रसारण में सबसे पहले शामिल कर लिया
0: जी। हाँ। कुलगांव जम्मू कश्मीर से मोहम्मद असलम मीर
1: और राजा जी नगर बेंगलोर से हमारे चिर परिचित श्रोता एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी ने लिखा है,
0: अजीत जी विमलेश जी, मिट्टी की पुस्तकों से भोजपत्र से लेकर तालपत्र और ई पुस्तकों तक, पुस्तकों पर आधारित ये विषय सुनना वाकई शानदार था। वास्तव में आपकी चर्चाएं इतनी उत्कृष्ट थीं कि हमें ऐसा लगा मानो हम उन्हें ई पुस्तकों से ही पढ़ रहे हों
1: जी।
0: आपके वर्णन करने का तरीका और उन्हें सरल भाषा में समझाना बहुत ही बढ़िया था।
1: बहुत बहुत धन्यवाद एन आर प्रसाद जी और अखिला जी, आपको हम अपना आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे जी का और साथ में वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी का।
0: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा,
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो श्रोताओ, हमारा पहला प्रश्न था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया?
0: ये नारा दिया था प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने।
1: हमारा दूसरा प्रश्न था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई का आविष्कार किसने किया था?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। एआई के आविष्कार का श्रेय जाता है अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी को।
1: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, मेघालय के मावली नोंग गाँव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है, क्यों?
0: इसका उत्तर है, मावलीनोंग गांव के पास जो पुल है वो जीवित पेड़ों की जड़ों से बनाया गया है, इसलिए इसे लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है।
1: तो श्रोताओ, प्रश्नोत्तरी में आप सबकी प्रतिभागिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है?
1: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
0: श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए विकल्पों और निर्देशों का पालन कीजिए और मनचाही पाठ्य पुस्तक को डाउनलोड कीजिए।
1: जी हाँ, और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ऑडियो बुक्स यानी ध्वनि पुस्तकों के रूप में सुनना चाहते हैं तो टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम भी आप इस चैनल पर सुन सकते हैं।
0: तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम,
1: वीर कुंवर सिंह।
0: ये कार्यक्रम महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी देशभक्त राजा वीर कुंवर सिंह के जीवन और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी वीरता की गाथा प्रस्तुत करता है। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने बिहार के शाहाबाद में गंगा नदी के तट पर अंग्रेजों से लोहा लिया।
2: हमका सिपाहियों के साथ मिलकर लड़क चाहिए, महाजनन के बही खातों को जरा डालो।
3: '1857 भारतीय इतिहास का वो समय है जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण और दमन के खिलाफ हिंदुस्तान के राजाओं, जमींदारों, किसानों, काश्तकारों और जनता ने विद्रोह कर दिया था। बैरकपुर में 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे लड़ते लड़ते फांसी पर चढ़ गए थे। ये देखकर अंग्रेजों के खिलाफ पूरा देश धधक रहा था और विद्रोह की लहर फैल गई थी। भारत माता के कई सपूत आगे आए, जैसे जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ने के लिए जान की बाजी लगा दी। मेरठ में 10 मई को विद्रोह का बिगुल बजा और 3 जुलाई को पटना में हुई पीर अली की फांसी की सजा ने आग में घी डालने का काम किया। जगदीशपुर, दानापुर और आरा पर पीर अली की फांसी का गहरा असर पड़ा। जनता बगावत करने लगी। कहा जाता है कुंवर सिंह और जगदीशपुर के लोगों ने पीर अली की याद में एक मजार बनवाई, जिससे अंग्रेज और खफा हो गए। पटना के कमिश्नर ने कुंवर सिंह को मना किया, पर कुंवर सिंह कहां रुकने वाले थे।
4: अगर तुम लोगों ने फौज को इकट्ठा किया तो हम तुम्हारा काम तमाम कर देगा, अंडरस्टैंड?
3: उनकी रगों में तो देशभक्ति का जज्बा उफान ले रहा था।
5: मस्ती की थी छिड़ी रागनी, आजादी का गाना था, भारत के कोने कोने में होता यही तराना था। उधर खड़ी थी लक्ष्मीबाई और पेशवा नाना था, इधर बिहारी वीर बांकुड़ा खड़ा हुआ मस्ताना था। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। सत्रह सौ 1777 ईस्वी में कुंवर सिंह का जन्म साहबजादा सिंह के घर हुआ। लाड़ प्यार से पालन पोषण हुआ। पिता के निधन के बाद कुंवर सिंह ने सन 1826 ईस्वी में जगदीशपुर की जमींदारी की बागडोर संभाली। कुंवर सिंह के बारे में कहा जाता है कि वे एक बड़े नेक दिल इंसान थे। जो किसान समय पर लगान नहीं दे पाते थे या मुसीबत में पड़ जाते थे, वे उनकी दिल खोलकर मदद करते थे। इसी कारण कई बार वे लगान की पूरी राशि जमा नहीं करा पाते थे। उनके ऊपर धीरे धीरे कंपनी की बकाया राशि का कर्ज बढ़ता गया। अंग्रेज उनसे खफा थे, पर आम जनता बहुत खुश थी।
6: सुना तुमने?
7: क्या?
6: पूरे देश में लोगों ने कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया है।
7: हैं?
6: अब हमारे कुंवर सिंह क्या करेंगे?
7: मेरा तो मन कहता है कि कुंवर सिंह लड़ेंगे, वो समझौता करने वालों में से नहीं है।
6: ठीक कहते हो भाई। अभी देखा नहीं, जब पीर अली के मजार पर गए थे तब उनका मन कितना भारी हो गया था। अमर सिंह तो एकदम गुस्से में थे।
7: हाँ, मुझे भी लगता है कुंवर सिंह जरूर लड़ेंगे, कोई साथ दे या ना दे।
3: कुंवर सिंह चार भाई थे, वो सबसे बड़े थे। दूसरे भाई का नाम दयाल सिंह और तीसरे का नाम राजपति सिंह। अमर सिंह उनके सबसे छोटे भाई थे, वे हमेशा उनके साथ रहते थे। जब दानापुर की 40वीं देशी पलटन के सिपाहियों ने विद्रोह किया तो जगदीशपुर के लोग एकजुट हो गए। दानापुर के विद्रोही सिपाही नेता हरकिशन सिंह की चारों ओर चर्चा होने लगी।
6: बड़ बहादुर वाह हरकिशन वाह, अरे कैसे दानापुर में अंग्रेजन के छक्का छुड़ा दे। अरे का हो, अब हमार कुंवर सिंह का करी?
8: अरे सुने में आयल बा कुंवर सिंह के सब खबर हो गई बा, कभो कुछ हो सके ना। हाँ,
9: ऐसा होना चाहिए कि जिसके बारे में जान सब से बात
6: करें। हुजूर, अभी अभी खबर मिली है कि दानापुर की देशी पलटन ने विद्रोह कर दिया है, अंग्रेजों से सिपाही लड़ते

0: हुए आरा की ओर बढ़ रहे हैं। हमें क्या आदेश है?
1: क्या कहते हो अमर सिंह? ये बड़ी मुश्किल की घड़ी है। सिपाहियों का मनोबल बढ़ाना जरूरी है। हमारे जाबाज अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपकी क्या राय है?
2: भैया, सभी अंग्रेजों से मुक्ति चाहते हैं और समय आ गया है अंग्रेजों से दो दो हाथ हो जाएं। काफी समय से कैप्टन डनवर हमारे किसानों पर अत्याचार कर रहा है। अंग्रेज सैनिक हमारी खड़ी फसलों को रौंद देते हैं।
1: ठीक कहते हो अमर सिंह। रहीम खान
0: जी हुजूर,
1: सिपाहियों को संदेश भेजो कि हमसे आरा कोठी में मिले।
0: जी हुजूर।
1: तो ठीक है, आरा चलने की तैयारी करो।
3: छब्बीस जुलाई 1857, आरा में कुंवर सिंह की कोठी। चारों ओर सैनिकों की चहलकदमी। दानापुर से आए सैनिकों के सामने कुंवर सिंह खड़े हैं।
1: सैनिक भाइयों और बहादुर साथियों, अब समय आ गया है कि हम कंपनी की गुलामी की जंजीरें काटकर फेंक दें। आप सबने विद्रोह करके हिम्मत और साहस का परिचय दिया है। हरकिशन सिंह और रंजीत राम दोनों बहादुर सिपाही हैं। इनका युद्ध करने का कौशल और क्षमता सबसे उत्तम है। ये दोनों सैनिकों का नेतृत्व करेंगे। आगे बढ़िए। सबसे पहले हमें अंग्रेजों को आरा से बाहर निकालना है, फिर पूरे देश से। मैंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और बेगम हजरत महल को खबर भिजवाई है। शीघ्र ही हम सारे देश में एकजुट होकर लड़ेंगे।
4: कुंवर सिंह जिंदाबाद, अमर सिंह जिंदाबाद, हरकिशन सिंह जिंदाबाद, कुंवर सिंह जिंदाबाद, रंजीत राम जिंदाबाद।
3: सैनिकों के नारों से आरा कोठी का प्रांगण गुंजायमान हो उठा। सैनिकों की चहल पहल बढ़ गई। तभी सैनिकों की तरफ से हरकिशन सिंह आगे बढ़े और कुंवर सिंह की बगल में आ खड़े हुए। अदब से उन्हें सलामी देते हुए वो सैनिकों की तरफ मुखातिब हुए।
5: साथियों, आप सबने दानापुर में अंग्रेजी फौजों और अफसरों के द्वारा किया गया शोषण और दमन देखा है। उनके यहाँ रहते हुए हम स्वाधीन नहीं है। हमारे किसान भाई कर्ज के बोझ से दब गए हैं। अब जंग शुरू होती है। कुंवर सिंह, कुंवर सिंह, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
3: कहा जाता है कि कुंवर सिंह और हरकिशन सिंह के भाषण का सिपाहियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। 27 जुलाई को कुंवर सिंह के नेतृत्व में देशी सिपाहियों ने अंग्रेजी फौजों की आरा में घेराबंदी की। लड़ाई जमकर हुई। कई अंग्रेज सैनिक लड़ाई में मारे गए। कुंवर सिंह ने कैप्टन डनवर की फौज को पराजित किया। इतिहास में इसे कुंवर सिंह द्वारा आरा फतेह के नाम से जाना जाता है।
6: अंग्रेजी फौजों ने दोबारा तैयारी की और कुछ ही दिनों बाद मेजर आयर के कमांड में बीबीगंज के स्थान पर एक और युद्ध हुआ। कुंवर सिंह को अपने सिपाहियों के साथ जगदीशपुर लौटना पड़ा। 12 अगस्त को एक घमासान युद्ध हुआ।

0: कुंवर सिंह की सेना पराजित हुई। चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। कुंवर सिंह और उनके सिपाहियों को जगदीशपुर छोड़ना पड़ा। फिर फौज संगठित की। देश को आजाद कराने के लिए नौजवान स्वयं फौज में आगे आए। लोगों का जोश देखकर मिर्जापुर, रीवा, बांदा और कानपुर आदि स्थानों पर अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए कुंवर सिंह की सेना लखनऊ पहुंची।
1: कुंवर सिंह
2: जिंदाबाद!
1: कुंवर सिंह
2: जिंदाबाद!
1: भारत माता की
2: जय!
1: भारत माता की
2: जय!
0: लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कुंवर सिंह और उनके सहयोगियों का जोरदार स्वागत किया।
3: अल्लाह की मेहरबानी से आज हमारे बीच शाहबाद के बाबू कुंवर सिंह मौजूद हैं। इन्होंने अंग्रेजी फौज को कई जगह बड़ी शिकस्त दी है। अंग्रेज हुक्मरान इनसे घबराते हैं। हमने कुछ फैसले लिए हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करें। खुदा जानता है कि आजमगढ़ से अंग्रेजों को हटाना कितना मुश्किल काम था। हम आजमगढ़ की मिल्कियत बाबू कुंवर सिंह के सुपुर्द करते हैं। हम चाहते हैं कि बाबू कुंवर सिंह आजमगढ़ के बाकी इलाकों से अंग्रेजों को निकालकर बाहर करें।
4: बेगम साहिबा, आपके इस सम्मान से हम आपके एहसानमंद हैं। आपने एक नई जमीन दी है। अल्लाह को मंजूर होगा तो हम आजमगढ़ से भी अंग्रेजों को निकाल बाहर करेंगे।

ये एक ऐतिहासिक क्षण था। जगदीशपुर पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। कुंवर सिंह को एक नई रियासत का मालिकाना हक देकर बेगम हजरत महल ने उन्हें राज सम्मान प्रदान किया था। कहते हैं कि वहीं से लोग कुंवर सिंह को राजा कुंवर सिंह के नाम से संबोधित करने लगे। कुंवर सिंह ने बेगम हजरत महल के विश्वास को नहीं तोड़ा। 17 मार्च को कुंवर सिंह और देशी सिपाहियों की टुकड़ियां अतरौलिया के मैदान में इकट्ठा हुई। 22 मार्च को आजमगढ़ जिले में तैनात कर्नल मिलमैन ने कुंवर सिंह के सिपाहियों पर भारी हमला किया।

0: अदरौलिया का मैदान सिपाहियों के खून से लथपथ हो गया। छब्बीस मार्च को मिलमैन को पराजित करते हुए कुंवर सिंह ने आजमगढ़ और अन्य इलाकों पर कब्जा कर लिया।
1: आजमगढ़ पर विजय के बाद कुंवर सिंह जगदीशपुर लौटने लगे। रास्ते में ब्रिगेडियर डगलस की सेना के साथ घमासान युद्ध हुआ। ब्रिगेडियर डगलस की हार हुई। अंग्रेजी सेना फौजी सामान छोड़कर भाग गई। दूसरी ओर

0: जनता ने राजा कुंवर सिंह का स्वागत किया।
1: अरे देखो देखो, अरे घोड़े पर सवार होकर हमारे राजा कुंवर सिंह कैसे जा रहे हैं।
0: कुंवर सिंह गाजीपुर पहुंचे पर डगलस ने उनका पीछा जारी रखा। कहा जाता है शिवपुर घाट से गंगा नदी पार करते हुए राजा कुंवर सिंह की दाहिनी बांह में गोली लगी, जिसे बाएं हाथ की तलवार से काट कर उन्होंने गंगा में बहा दिया।

0: माँ गंगे, आज तुझको ही देता हूँ ये।
1: दुश्मन तट पर पहुंच गए जब कुंवर सिंह करते थे पार, गोली आकर लगी बाह में, दायां हाथ हुआ बेकार। हुई अपावन बाहुजान, बस काट दिया लेकर तलवार। ले गंगे ये हाथ आज तुझको ही देता हूं उपहार। वीर भक्त का वही जानवी को मानो नजराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था।
2: कहते हैं कुंवर सिंह को अपना हाथ काटते देख ब्रिगेडियर डगलस अवाक रह गया।
3: ओह माय गॉड, देखाओ शाहबाद खबर करो कि कुंवर सिंह नदी पार कर गया है।
4: यस सर।
2: घायल अवस्था में कुंवर सिंह जगदीशपुर पहुंचे। कंपनी ने 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में तोपों से लैस एक बड़ी फौज जगदीशपुर भेजी। ये 1857 के संग्राम का चरम सीमा का समय था, जब पहली बार देशी फौज ने कुंवर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों की एक बड़ी संगठित फौज को पराजित किया था। कहते हैं जगदीशपुर के लोगों ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को हरा दिया, लेकिन लंबी लड़ाई में कुंवर सिंह घायल हो गए। उनका स्वास्थ्य गिरता चला गया। इस युद्ध में वे और भी घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनका निधन हो गया। पूरा शाहबाद शोक में डूब गया। इस तरह 1857 के अमर सेनानी वीर कुंवर सिंह की स्मृतियां दर्ज हैं। वहां के लोक गीतों के वे नायक हैं। ऐसे नायक बार बार जन्म नहीं लेते।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम वीर कुंवर सिंह, और आइए अब सुनते हैं ओज और वीर रस से परिपूर्ण सुंदर कविता वीर तुम बढ़े चलो।
1: हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि द्वारका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित ये कविता बच्चों और युवाओं को साहस, संकल्प और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां और प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों न हों।
0: जी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वीर तुम बढ़े चलो। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: दिल के तराने, गाने नए पुराने,

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम के सभी श्रोता मित्रों का अभिनंदन स्वागत। आप सभी को के बोले तो कमल किशोर का नमस्कार। दोस्तों, भीषण गर्मी, उमस के बाद झमाझम बारिश, कितना सुकून मिलता है ना। बारिश का मौसम गर्मी से राहत तो देता है, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जिसके कारण कई बार परेशानी भी हो जाती है। खैर, कोई बात नहीं, और ऐसी बारिश में भीगने का आनंद भी कुछ और ही है। तो चलिए कुछ पल के लिए इस गीत के फुहार में भीग जाते हैं और इस बारिश का आनंद लेते हैं।

0: हाँ दोस्तों, बारिश में भीग तो जाइए लेकिन जरा संभल के। इस मौसम में वातावरण में नमी के कारण त्वचा संबंधी कई बीमारियां देखने को मिल जाती हैं, समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है। पसीना, नमी, गीले कपड़े और स्वच्छता में कमी त्वचा पर फंगल संक्रमण, खुजली, दाने और अन्य संक्रमणों का बहुत बढ़ जाता है। ये सभी बढ़ जाते हैं। ऐसे में त्वचा की अतिरिक्त देखभाल बेहद ज़रूरी हो जाता है। जी हाँ, मगर परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कतई ज़रूरत नहीं है। आपकी सेहत का ख्याल रखने के लिए हम हैं ना, और हमारे साथ हैं एक्सपर्ट्स भी। हर बार की तरह इस बार भी लगभग दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, दो दो एक्सपर्ट्स हैं, और हम आपको उनसे परिचय कराए देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अखिलेश थोले जी, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड सीनियर मेडिकल ऑफिसर डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल नई दिल्ली। और हमारे साथ दूसरी डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट हैं, आशना मल्होत्रा जुनेजा जी। आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार श्रोता
0: जी।
2: नमस्कार।
0: तो श्रोता मित्रों, बेझिझक होकर, बेधड़क होकर इस वक्त फोन उठाइए और बरसात के मौसम में त्वचा से संबंधित जो संक्रमण होते हैं उनके विषय में तमाम जानकारियों के लिए, यानी कि स्किन इन्फेक्शन इन रेनी सीजन, इसके विषय में हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से अभी इसी वक्त बात कीजिए, अपनी समस्याएं बताइए। और हमारे डॉक्टर से बातचीत करने के लिए, अपनी समस्याओं को बताने के लिए हमारा जो फोन नंबर है वो तुरंत नोट कर लीजिए, 011, यानी कि दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। इस फोन नंबर से पहले डायल कीजिएगा 2342 1080, 2342 1080, और दूसरा फोन नंबर है 2342 1082, यानी कि 2342 1082। और हाँ, आप व्हाट्सएप के जरिए भी अपनी समस्याएं बता सकते हैं, हमारे डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868 1070 70 9868 1070 70 70। तो इसी वक्त आप हमें फ़ोन कीजिए, डॉक्टर से बात कीजिए, अपनी समस्याएं बताइए। और चूंकि हमने आपको फ़ोन नंबर बताया और हमारे साथ हमारे श्रोता मित्र भी जुड़ गए हैं, उनकी कुछ समस्याएं हैं, सबसे पहले हम उनकी बातचीत सुन लेते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं। हेलो।
3: हेलो सर
0: जी। नमस्कार।
3: नमस्ते सर। सर, मैं कीर्ति बात कर रही हूँ दिल्ली से। मैं डॉक्टर से पूछना चाहती हूँ कि बारिशों के सीजन में हमारे पिंपल्स क्यों बढ़ जाते हैं?
0: जी डॉक्टर साहब।
1: हेलो मैम, बारिश के सीजन में स्वेटिंग बढ़ने के कारण हमारे जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, हमारे बॉडी के जो सीबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो एक्ने करते हैं, उनमें क्लॉगिंग के वजह से, ग्लैंड्स बंद होने की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, और इसीलिए सेकेंडरी इन्फेक्शन से पिंपल्स थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, और कई बार मौसम के चलते, ह्यूमिडिटी के चलते स्किन भी ऑयली हो जाती है, ऑयल ग्लैंड्स का सिक्रेशन बढ़ जाता है, इसलिए भी थोड़े एक्ने ज्यादा महसूस हो सकते हैं।
3: के लिए फिर क्या करना चाहिए? चेहरा ज्यादा टाइम धोना चाहिए?
1: मैम, चेहरा नॉर्मल पानी से, फेस वॉश करने की आपको ऐसी कोई स्पेशल नीड नहीं है, पर नॉर्मल पानी से 2 से 3 बार आप फेस धोइए, और हो सके तो ठंडे में रहिए, आपको स्वेटिंग कम हो, इसका खास ख्याल रखें।
3: थैंक यू सर।
0: तो डॉक्टर साहब, इसमें जो स्वेटिंग होती है वही मेन कारण होता है या फिर कुछ और भी कारण होते हैं?
1: आपके जो एग्जिस्टिंग कारण है एक्ने होने के, पिंपल्स होने के, वो भी होते हैं, जो हार्मोनल चेंजेस, हेयर ऑयल ज़्यादा लगाना, या कई केसेस में डेयरी प्रोडक्ट्स, मैंगो का सेवन करना, बट स्वेटिंग ज़्यादा होने से, ऑयल ग्लैंड्स का क्लॉग होने से, ऑयल ग्लैंड्स हमारे और स्वेट ग्लैंड्स बंद होने से भी पिंपल्स ज़्यादा हो सकते हैं, और कई बार जो हमें पिंपल्स लगते हैं वो पिंपल्स होते भी नहीं है, वो एक पेरिपोराइटिस नाम का इन्फेक्शन होता है, जिस जो बाल तोड़ की तरह ही होता है।
0: डॉक्टर साहब, आपने एक बात की, बड़ी बात की, कि मैंगो के ज़्यादा सेवन से भी पिंपल्स हो सकते हैं।
1: जी,
0: ये क्या यह बिल्कुल सही है?
1: सारे केसेस में नहीं, पर कुछ पेशेंट्स में देखा गया है कि मैंगो, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये एग्रीवेट करते हैं पिंपल्स।
0: जी डॉक्टर आशना जी, अभी जैसे इन्होंने कहा कि क्योंकि लड़कियों को खासकर, महिलाओं को खासकर ये हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है कि पिंपल्स ना निकले, और पिंपल्स कम से कम हो या फिर ना ही निकले तो बेटर हो, ताकि खूबसूरती बनी रहे। तो सब क्या कहना चाहेंगे इसमें, और किस प्रकार की सावधानी रहनी चाहिए कॉस्मेटिकली?
2: कॉस्मेटिकली सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपना चेहरा अच्छे से दिन में 2 बारी धोएं, गंदे हाथ चेहरे पर बार बार ना लगाएं, बहुत ज़्यादा मेकअप अगर आप यूज़ करते हैं तो ध्यान रखिए आपके मेकअप ब्रशेस, आपका मेकअप सब साफ़ रहे
0: जी।
2: और साथ ही साथ सोने से पहले आप अपना मेकअप अच्छे से उतारें, और खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखें, ज़्यादा मीठी, ज़्यादा चिकनाई, ये सब चीज़ें थोड़ी कम खाएं।
0: डॉक्टर साहब, मीठी चीज़ों से भी क्या पिंपल्स बढ़ने की संभावना रहती है?
2: जी, मीठी चीज़ों से, फास्ट फूड से, कुछ लोगों ने, जैसे सर ने कहा, कुछ लोगों में टेंडेंसी होती है, जिससे कि खाने पीने में बहुत, जो हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड बोलते हैं, उनसे एक्ने जैसी चीज़ें आगे एग्रीवेट हो सकती हैं।
0: जी डॉक्टर, इसके विषय में कुछ और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक और श्रोता मित्र जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो,
4: नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार।
0: नमस्कार जी, बताएं आप।
1: नमस्कार सर,
0: आपका शुभ नाम?
4: रघुवीर जी बोल रहे हैं उत्तराखंड से।
0: जी,
4: तो मेरा पैर में जो है, अब डॉक्टर बता रहे हैं कि यूरिक एसिड हो गया, तो उससे पहले उस जगह में उसके आसपास खुजली हुआ था बहुत, तो खुजली खुजलाते में वहाँ पे जो है, उस टाइम तो अच्छा लग रहा था खुजलाने में, लेकिन बाद में उसमें खरोच आ गया
0: जी,
4: और उसके दो दिन बाद जो है पिंडली में दर्द होने लग गया
0: जी,
4: तो मुझे लगा कि कहीं हड्डी में चोट लग गया कहीं से, लेकिन चोट तो कहीं से लगा नहीं, तो डॉक्टर साहब के पास गया तो बोला ये तो यूरिक एसिड है, तो अभी खून टेस्ट के लिए दिया है सर, अब इसके आगे हमें क्या परहेज करना पड़ेगा जिससे ऐसा ना हो पाए?
0: जी डॉक्टर
1: जी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सर, आपको कोई जॉइंट का इशू है, कोई एग्जैक्टली कोई स्किन का प्रॉब्लम है ऐसे आपकी बातों से लग नहीं रहा है, बट अगर वहाँ पर स्किन पर आपको रेडनेस है या इचिंग बहुत ज़्यादा

0: है तो एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें। हो सकता है ये कोई एलर्जिक एक्जिमा हो या जो अंडरलाइंग डिजीज है वही आपको कॉज कर रहा है, तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह जरूर लें सर।
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब, हमारे पास एक मैसेज भी आया है, व्हाट्सएप मैसेज भी है, और ये हैं विजयपुरा कर्नाटका से। इनका नाम तो इन्होंने लिखा नहीं है, और ये कहते हैं कि आई गेट फ्रीक्वेंट इचिंग इन माई रिस्ट अंडर आर्म्स एंड फुट्स। आई ऑल्सो गेट रेडनेस एंड इचिंग अराउंड माई प्यूबिक एरिया। और इन्होंने ये भी लिखा है कि मैंने बहुत सारे दवाइयों का भी इस्तेमाल किया, लेकिन उनसे संभव नहीं हो पाया, कि ठीक नहीं हो पाया।
0: सर, बिना देखे तो एग्जैक्टली डायग्नोसिस बताना बहुत मुश्किल होगा, बट अगर सिर्फ इचिंग है और स्किन पे और कोई रेडनेस नहीं है और दाग धब्बे नहीं है तो हो सकता है कि इनकी एटोपिक टेंडेंसी है। एटोपिक टेंडेंसी से मैं कहना चाहता हूँ कि बॉडी थोड़ी सेंसिटिव है, तो अगर इनको आँखों में खुजली होना, बार बार जुकाम होना, नाक में खुजली होना या कोई जेनेटिक हिस्ट्री है अस्थमा की, ये सब शिकायतें साथ में है तो हो सकता है इनकी एटोपिक टेंडेंसी है और इनको सेंसिटिविटी से इचिंग हो रही है। इनको एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए और तब तक एंटी एलर्जिक्स का सेवन करें और हो सके तो बॉडी को नहा कर मॉइस्चराइज करें। नहाने के बाद 7 से 8 मिनट के अंदर मॉइस्चराइज कर लेना चाहिए, अच्छा एक मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए, तो एंटी एलर्जिक्स और मॉइस्चराइज़र लगाए और पॉसिबल हो तो डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं।
1: जी डॉक्टर आशना जी, अक्सर अभी जैसे अभी एक हमारे श्रोता मित्र ने फोन किया था उत्तराखंड से, रघुवीर जी नाम था उनका, और इन्होंने कहा था कि पैरों में दर्द रहता है या फिर इचिंग होती है, जख्म हो गया है। पैरों की जब बात होती है तो पैरों की सुंदरता भी देखी जाती है, तो इसमें किस प्रकार की समस्या आ सकती है जब इस प्रकार की इचिंग होने लगे या फिर कुछ जख्म होने लगे, तो खासकर जब एड़ियां फटी होती हैं देखी जाती हैं तो उसमें भी जख्म होने की संभावना बनी रहती है, और खासकर बरसात के मौसम में तो ये कुछ बढ़ने की संभावना रहती है।
2: जी, बरसातों के मौसम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने पैरों का ध्यान रखना। ज़्यादातर क्या होता है, पैर बंद गीले जूतों में रह जाते हैं, ज़्यादा लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं उन पे,
1: जी
2: जिसकी वजह से पैरों में बहुत जल्दी फंगल इन्फेक्शन आ जाता है। तो सबसे ज़रूरी ये है कि हमेशा ध्यान रखें कि गीले जूते ना पहने।
1: जी
2: जब भी जूते पहन रहे हैं, पैर अच्छे से सुखा के, उंगलियों के बीच में सुखा के, साफ़ सुथरे मोज़े पहन के फिर सूखे जूते पहने।
1: जी
2: कोशिश करें बहुत लंबे समय तक गीले मौसम में बंद जूते ना पहने। एड़ियाँ यदि फटी हैं तो रोज़ रात को अच्छी तरह से एक अच्छी क्रीम लगा के, मोज़े लगा के सोएं।
1: जी डॉक्टर साहब, एक फ़ोन कॉल है, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो
3: हेलो,
1: हेलो जी, नमस्कार, आपका शुभ नाम।
3: मेरा नाम हेमंत।
1: जी हेमंत जी, क्या पूछना चाहते हैं?
3: हाँ सर, मैं ना डॉक्टर अखिलेश से बात करना चाहता हूँ रिगार्डिंग हेयर फॉल टेंडेंसी जो इंक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग
1: जी
3: रेनी सीजन, इसके रिगार्डिंग सर।
1: जी डॉक्टर साहब,
0: जी ये बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है और कई लोगों की समस्या होती है कि बारिशों के मौसम में उनका हेयर लॉस थोड़ा बढ़ जाता है, बट अगर साइंटिफिक एविडेंस की बात करें तो बारिश का पानी सीधे बालों की जड़ों को कमज़ोर करता है, ये ऐसा कोई गारंटीड प्रूफ नहीं है। कुछ आर्टिकल्स पब्लिश्ड है जो ये इसके कॉज ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जो सीजनल हेयर शेडिंग होती है उसमें ये कहा गया है कि समर्स में जो यूवी रेज का इम्पैक्ट हमारे स्कैल्प में होता है तो उससे हमारे जो एनेजन जो लंबे हेयर होते हैं उनकी शॉर्टनिंग हो जाती है, और एनेजन हेयर का काउंट जो हमारे बॉडी के लंबे हेयर होते हैं उसका काउंट बारिश होने तक थोड़ा कम होना होने लगता है यूवी रेज की वजह से। बट ये
3: ओके
0: भी कोई गारंटीड एविडेंस नहीं है, बस ये थ्योरीज है। कई बार स्कैल्प ऑयली होने की वजह से या बालों में ज़्यादा तेल लगाने की वजह से या फ्रीक्वेंट हेयर वॉशिंग करने की वजह से भी बालों का झड़ना बढ़ रहा है ऐसे महसूस हो सकता है, लेकिन अगर आपको फिर भी ऐसे लग रहा है कि बालों का झड़ना बढ़ गया है और 100 से ज़्यादा बाल एक दिन में आपके जा रहे हैं तो आप कुछ दिन वेट करें, हो सकता है ये नेचुरल नॉर्मल फिनामिना है और टेलोजन है जो अपने आप कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। फिर भी 1-2 महीने में आपको अगर लगता है कि शेडिंग हमारी परसिस्टेंट है तो आप अपने पास के डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें।
3: सर, इसमें मैं ये जानना चाह रहा था कि कुछ स्पेशल प्रिकॉशन जो हम रेनी सीजन में ले सकते हैं ताकि थोड़ा सा हेयरफॉल कम हो या फिर एलर्जेटिक जो डिसीज है वो भी कम हो।
0: सर थैंक यू आपके क्वेश्चन के लिए। आप अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए थोड़ा हाइड्रेशन मेंटेन रखें, और खासकर फीमेल्स के लिए आयरन सप्लीमेंटेशन और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन मेल्स और फीमेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ अगर आपको कोई

0: है, अगर आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम है या आपका विटामिन B12 बहुत कम है, तो आप उसको डॉक्टर की सलाह से पूरा करें, वो सप्लीमेंट्स लें और खाने में प्रोटीन डाइट अच्छा रखें।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी। और डॉक्टर आशना जी, आपके लिए एक प्रश्न है, और ये प्रश्न किया है डॉक्टर अर्चना गुलाटी ने भेजा है। कहते हैं कि हाउ टू टेक केयर ऑफ स्किन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
2: तो प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ना करें अपने चेहरे पे। बहुत बेसिक फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन यूज़ करें। बॉडी पे बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाएं। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा एलैबोरेट चीज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा रहेगा।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, वैसे देखा जाता है कि मानसून के मौसम में त्वचा यानी कि स्किन की समस्या कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसा क्यों होता है डॉक्टर आशना?
2: मॉनसून में स्किन की समस्या इसलिए बढ़ती है क्योंकि हवा में नमी बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है। ये सारा एनवायरनमेंट जो रहता है फंगस के लिए बहुत एक तरह से फेवरेबल एनवायरनमेंट रहता है बढ़ने के लिए।
1: बढ़ने के लिए
2: जी
1: जी। अभी जैसे कि डॉक्टर अखिलेश जी बता रहे थे कि बारिश के मौसम में, और जब ही क्वेश्चन भी कर रहे थे कि बारिश के मौसम में जो बाल झड़ना तेज़ हो जाता है, ज़्यादा गिरते हैं बाल, तो क्या महिलाओं के लिए तो उसके लिए खास कर ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि क्योंकि गीले बाल, क्योंकि लंबे बाल बड़े बाल होते हैं, इसलिए उनको सुखाना ज़रूरी होता है, इसमें किस प्रकार के ध्यान रखनी चाहिए?
2: बिल्कुल। सो बाल जितना हो सके उतना सूखे रखें, बट जाहिर है मौसम मौसम ऐसा है बाल कहीं ना कहीं भीगेंगे।
1: जी
2: तो इसलिए ज़रूरी रहता है कि खाने पीने पे खासकर से ध्यान दें।
1: जी
2: प्रोटीन, दाल, हरी सब्जियां, ये सब थोड़ी ज़्यादा खाएं। ध्यान रखें कि आप अपने सप्लीमेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स हम टाइम पे ले रहे हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, यानी कि खान पान का भी अगर ख्याल रखा जाए तो काफ़ी हद तक यानी कि हेयर ड्रॉप को हम बचा सकते हैं,
2: बिल्कुल,
1: कम कर सकते
2: हाँ
1: हैं।
2: जी
1: और खान पान में जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया था कि मैंगो का खासकर उन्होंने कहा था, और जो जो तेल सब का इस्तेमाल होता है वो उन पे ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि स्किन की जो समस्या है, बालों की जो समस्या है, कम हो सकती है। और डॉक्टर साहब, चूँकि अब हम काफ़ी देर से बातचीत भी कर रहे हैं, बारिश में थोड़ा सा भीगने का मौसम तो कर रहा है, लेकिन एक छोटी सी अगर एक संगीत में एक म्यूजिकल ब्रेक ले लें तो कैसा रहेगा? ब्रेक के बाद हम दोबारा लौट के आते हैं।

0: और इस छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर से लौट आए हैं। और दोस्तों हम आपको बता देते हैं अपना फोन नंबर ताकि आप हमें इसी वक्त कॉल कर सके। हमारा फोन नंबर है 011-2342-1080 और दूसरा फोन नंबर है 2342-1082। और हाँ, आप व्हाट्सएप के जरिए भी हमें मैसेज भेज सकते हैं और बारिश के मौसम में होने वाली बीमारियों यानी कि त्वचा संबंधी बीमारियों के विषय में जानकारियां ले सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं और आप व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9868107070। और चलिए एक फोन कॉल आया है, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो हेलो हेलो, लगता है कि उनसे हमारा संबंध विच्छेद हो गया है, टूट गया है। फिर कुछ देर के बाद फिर हम जुड़ेंगे और उनसे फिर बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, बारिश के मौसम में शरीर के किन अंगों में यानी कि रिस्क फैक्टर कहाँ कहाँ होता है, ज़्यादा होता है, किन अंगों में ज़्यादा त्वचा संबंधी संक्रमण की समस्या बनी रहती है?
1: जी, अगर हम संक्रमण या इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं तो हमारे बॉडी के फोल्ड्स जिसे सिलवटे कहते हैं, जैसे अंडर आर्म्स, बगल हमारी, स्तनों के नीचे का हिस्सा, प्राइवेट पार्ट्स, प्यूबिक एरिया
0: जी,
1: जांघे और उंगलियों के बीच का हिस्सा, कान के पीछे का हिस्सा, पैर की उंगलियों के बीच का हिस्सा, इन सब में नमी बढ़ने की वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
0: तो अगर ऐसे जब इन्फेक्शन, खासकर जब उमस भरी गर्मी होती है, उसमें देखा जाता है, बारिश में तो भीगते होते हैं और जब सुखा नहीं पाते हैं, गीला हो जाता है, तब ऐसी समस्या होती है। लेकिन जब उमस होती है, जैसे कि अगस्त के महीने में, जुलाई के महीने में काफ़ी उमस होती है, तो उस समय नमी ज़्यादा बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, इसमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार सुखा कर रखना चाहिए या फिर क्या, किस प्रकार की समस्या हो सकती है?
2: इस मौसम में सबसे ज़रूरी है आप किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, क्योंकि बाहरी चीज़ों को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। तो कॉटन के कपड़े सबसे सही रहते हैं। और ध्यान रखना चाहिए कि जब नहाएं तो पहले अच्छे से खुद को सुखाएं, तभी कपड़े पहने अपने।
0: जी डॉक्टर साहब, और देखा जाता है कि जो जूते मोजे होते हैं वो बारिश के मौसम में गीले हो जाते हैं, और क्या उनसे भी समस्या हो सकती है?
2: उनसे सबसे ज्यादा समस्या होती है
0: जी,
2: क्योंकि जूतों को सूखने में भी और ज्यादा समय लगता है
0: जी।
2: तो कोशिश करें कि सूखे जूते ही पहने, गीले जूते दोबारा ना पहने, और जहां तक हो सके बंद जूते ना पहने बारिश के मौसम में
0: जी। बारिश के मौसम में क्या डॉक्टर साहब घमौरियां कुछ कम हो जाती हैं क्या ऐसे, क्योंकि कई लोगों का ये मानना होता है कि अगर हम बारिश में नहा लेंगे तो घमौरियां कम हो जाएंगी, और कई बार बच्चों को बारिश भीगने के लिए भेज देते हैं, तो क्या ये सही है?
2: ऐसा नहीं है। बारिश के मौसम में भी जब नमी ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा रहती है, तो घमौरियाँ बढ़ सकती हैं
0: जी,
2: क्योंकि वो भी स्किन फोल्ड्स पे काम करती, स्किन फोल्ड्स पे ज़्यादा होती हैं घमौरियाँ, है ना। तो इसलिए हवादार रहना, कॉटन कपड़े पहनना, ये ज़्यादा ज़रूरी रहता है
0: जी। डॉक्टर अखिलेश जी,
1: जी सर,
0: हमारे पास एक मैसेज आया हुआ है, और ये मैसेज लिखने वाले, इन्होंने नाम तो नहीं लिखा है, आशीष बॉय करके नाम से है ये, और ये कहते हैं कि मेरे अंकल को दाद है और बिल्कुल भी, बहुत सारी दवाइयाँ ले ली लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है। ये आशु हैं, लखनऊ से हैं, और सर मेरे भी कभी कभी फेस पर दाने निकल आते हैं, इसके लिए क्या इलाज है?
1: जी, पहले तो दाद की बात करते हैं। दाद अगर उनका ठीक नहीं हो रहा है तो ये समस्या आज करोड़ों लोगों को इससे जूझना पड़ता है, और इसका मेन कारण है ट्रीटमेंट का पूरा ना करना या स्टीरॉयड युक्त क्रीम अपने प्राइवेट पार्ट्स पे खासकर लगाना। स्टीरॉयड युक्त क्रीम हमारी इम्यूनिटी को लोकली कम कर देती है, लगाने के बाद कुछ समय तक तो हमें शायद अच्छा लगे, खुजली महसूस ना हो, बट ऐसी क्रीम जिसमें बीटा मिथासोन हो, मोमेटासोन हो, क्लोबेटासोल हो, आप दोबारा फिर से सुन लीजिए, ऐसी क्रीम है जिसमें बीटा मिथासोन, क्लोबेटासोल या मोमेटासोन है, उन क्रीम को अगर आप प्राइवेट पार्ट्स पे या हमारे दाद वाले हिस्से पर लगा रहे हो तो स्किन की इम्यूनिटी कम होकर इन्फेक्शन पूरी तरीके से ठीक होने में बहुत मुश्किल हो जाती है। और चूंकि बहुत तरह तरह के हमने एंटीफंगल यूज़ ऑलरेडी कर रखे है और उसका रैम्पेंट यूज़ है, तो कुछ केसेस में रेजिस्टेंस भी दवाइयों के से पाया गया है, और इसमें ट्राइकोफाइटोन इंडोटीनिया नाम का एक फंगस की एक अलग प्रजाति पाई गई है जो ट्रीटमेंट से जल्दी मरती नहीं है, और इसका लंबे समय तक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो एक बार अगर ट्रीटमेंट शुरू किया है तो 6 से 8 हफ्ते कम से कम ट्रीटमेंट पूरा ले।
0: डॉक्टर साहब, दाद के विषय में कुछ और हम बातें करेंगे, जानकारियां लेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक श्रोता मित्र से जुड़ जाते हैं। हेलो।

0: होती है, जैसे एड़ियों में दरार है, क्रैक फीट जिसे हम कहते हैं, ये एक ड्राई स्किन की बीमारी है। तो इस मौसम में काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। अगर आपकी इम्प्रूव नहीं हो रही है तो आप नहाने के बाद इमिजिएटली अच्छे से मॉइस्चराइज़ करिए पैरों को, और रात में सोते हुए भी मॉइस्चराइज़ करिए। एक थिक ग्रीजी थोड़ा मोटा लेयर ऑफ मॉइस्चराइज़र आप लगाइए, और पैरों को बार बार साबुन से ना धोए, नॉर्मल पानी से धोए। और अगर डिटर्जेंट पैरों को लगता है या आप घर का बर्तन का कपड़े का काम करते हैं तो थोड़ा ऊंचे में बैठकर काम करें।
1: डॉक्टर आशना जी, अभी इन्होंने बात की मस्से की बात की, तो क्या ये बारिश के मौसम में मस्से की समस्या कुछ ज़्यादा बढ़ सकती है या फिर ये जनरल है ये?
2: मस्सों का इस मौसम से कोई लेना देना नहीं है
1: लेकिन इन्होंने प्रश्न पूछा है तो इसलिए जवाब देना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए।
2: इनको तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा के उनको निकलवाना ही पड़ेगा।
1: निकलवाना ही पड़ेगा,
2: जी
1: इसका कोई उपाय नहीं है, सर्जरी करके निकालना
2: हाँ
1: पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अभी कुछ देर पहले हम बातचीत कर रहे थे, आप जानकारी दे रहे थे दांत के विषय में, और डॉक्टर साहब ये अक्सर लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि अगर किसी एक व्यक्ति को दाद हो गया है तो क्या दूसरे व्यक्ति को भी दाद हो सकता है?
0: जी, ये बहुत ही कॉमन है कि एक घर के 3-4 लोगों को साथ में दाद हो जाए। दाद का एक दूसरे में होने का कारण ये भी है कि हमारे तौलिए, कपड़े हम एक दूसरे से साझा करें, हम एक दूसरे से शेयर करें। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। और आपके हाथों की उंगलियों के जो नाखून है उनको थोड़ा छोटा रखें, बार बार खुजली ना करें। और जैसे हमने कोविड में किया था, किसी से भी हैंड शेक करें तो आप अपना हाथ अच्छे से धोए, और प्राइवेट कपड़े, प्राइवेट पार्ट्स को थोड़ा सूखा रखें, और अपने खासकर कपड़े तौलिए एक दूसरे से शेयर ना करें।
1: डॉक्टर आशना जी, ये जो मिक्स्ड क्रीम है ये स्टीरॉयड वाली, क्या इसमें दाद में इसका इस्तेमाल करना चाहिए क्या?
2: बिल्कुल भी नहीं। अक्सर काफ़ी लोग स्टोर से, केमिस्ट से खरीद के खुद ही से ये क्रीम लगाते हैं
1: जी
2: जिससे ऊपर से दाँत की खुजली दब जाती है पर अंदर से इन्फेक्शन या संक्रमण बढ़ते रहता है जिससे कि स्थिति और ख़राब होती रहती है।
1: जी
2: तो खुद से क्रीम खरीद के लगाने से अच्छा मैं ये रेकमेंड करूँगी कि आप अपने पास किसी अच्छे विशेषज्ञ के पास जाएँ और उनको दिखाएं और उनसे लिखी हुई दवा ही खरीदें।
1: जी डॉक्टर साहब, वैसे कई बार ये होता है कि दवाइयाँ नहीं मिल पाती हैं, दूर तक हो रहती हैं, दूर हो जाती हैं, तो घरेलू कोई उपाय है?
2: घरेलू उपाय में हम प्रिवेंशन ही कर सकते हैं जिसमें हम सूती सिंथेटिक कपड़े ना पहने, कॉटन के कपड़े पहने, गर्मी पसीने में ज़्यादा ना रहें, रोज़ साबुन से नहाएं, अच्छे से सुखा के कपड़े पहने, पसीना आए तो फिर नहाएं।
1: जी डॉक्टर साहब, दाद होने का मेन कारण क्या होता है?
0: सर, दाद हमारे नमी वाले हिस्सों में जल्दी संक्रमण कर देता है। दाद हम नमी के वजह से नहीं हो रहा है, बट दाद का जो कीटाणु है वो हमेशा से शरीर पर या हवा में या कपड़ों में रहता ही है। बस नमी के कारण उसको एक खाद मिल जाता है जिस पे वो जल्दी थ्राइव करता है।
1: जी
0: तो दाद एक इन्फेक्शन है जो फंगल इन्फेक्शन है, जिसे रिंगवर्म भी कहा जाता है। तो फंगल कीटाणुओं के इन्फेक्शन संक्रमण से रिंगवर्म या दाद हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, एक फोन कौन है उनसे बातचीत कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, लगता है कि हमारा कनेक्शन उनसे छूट गया है। खैर कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब जी, बता रहे थे अभी कि जो रिंग रिंग टाइप का जो होता है
0: जी
1: इन्फेक्शन
0: सर,
1: होता है उससे काफ़ी दाद होने की संभावना बनी रहती है।
0: जी सर, जी दाद को ही रिंगवर्म कहा जाता है सर।
1: जी
0: और रिंगवर्म जो है, खासकर हमारे प्राइवेट पार्ट्स या बॉडी के फोल्ड्स पर हमें संक्रमण करता है, और इसका इलाज कम से कम 6 से 8 हफ्ते कराना पूरा ज़रूरी है। कई केसेस में ट्रीटमेंट लंबा भी चल सकता है। तो आप अपने आप से केमिस्ट या फार्मासिस्ट के पास जाकर स्टीरॉयड युक्त क्रीमें ना खरीदें, स्टीरॉयड युक्त क्रीमें ना लगाएं, डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लें और इलाज अपना पूरा कराएं।
1: डॉक्टर साहब, बारिश के मौसम में जब भी कोई इस प्रकार से रिंगवॉर्म या फिर ये जो दाद है ये हो जाए तो इसे सूखने में बहुत टाइम लगता है, तो कई लोग क्या करते हैं कि पाउडर, जो टेलकम पाउडर है वो सब
0: जी
1: लगा
0: सर,
1: लेते हैं, क्या ये सही होता है?
0: सर टैल्कम पाउडर मैं मानता हूँ कि वो आपके स्किन को ड्राई रखने में मदद करता है, बट वो इन्फेक्शन को एज सच ट्रीट नहीं कर सकता। वो इन्फेक्शन का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही उसे बार बार होने से रोक सकता है। कई केसेस में, खासकर फॉरेन कंट्रीज में ये पाया गया है कि जो टैल्कम पाउडर वाली कंपनीज हैं उन पे केसेस हुए हैं कि पाउडर के कुछ अंश है जिनसे कैंसर होने की संभावना बढ़ रही है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट यूजुअली इतने जल्दी पाउडर को प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, और अगर आप पाउडर

0: आप रहे तो बस आप ये याद रखें कि ये कोई इलाज नहीं है, बस आपकी त्वचा को सूखा रखने में मदद कर रहा
1: जी डॉक्टर साहब, एक बार फिर से हमारे श्रोता हमसे जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं। हेलो हेलो हेलो।
2: है। जी नमस्ते
1: जी नमस्कार।
2: डॉक्टर
1: जी आपका शुभ
2: जी,
1: नाम?
2: अमरोहा से फाजिया बात कर रही हूँ मैम। सर,
1: जी क्या पूछना चाहती हैं?
2: हमारे जो है ना भाई के बैक साइड पर बहुत एलर्जी होती है, गहरे गहरे दाग, वो दाग बन जाते हैं, उसका क्या करना चाहिए? डॉक्टर से भी सलाह ले चुके हैं, वो सही नहीं होते दाग गहरे गहरे।
1: जी डॉक्टर आशना जी,
3: अगर उनको एलर्जी है, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा किस प्रकार की एलर्जी है, उसकी वजह क्या है। जब तक वजह नहीं पता चलेगी, उसका इलाज करना मुश्किल हो जाएगा। तो ज़रूरी है एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, उनकी सलाह माने, कोशिश करें नाखून अपने छोटे रखें और उस एरिया को ज़्यादा ना खुजाएं, और कॉटन के कपड़े पहने, जीन्स वगैरह ना पहने।
1: जी डॉक्टर साहब, ये बरसात के मौसम में जख्म कई बार जल्दी सूखते नहीं हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए?
0: सर हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि हमें अपने स्किन को कोशिश करके ड्राई रखना है, नहाने के बाद इमीडिएटली तौलिए से ड्राई रखे, बहुत सिंथेटिक या टाइट कपड़े ना पहने, कॉटन के हवादार कपड़े आप पहने, और इन्फेक्शन होने के बाद उसका इलाज ज़रूर कराए तो ठीक होना बहुत हद तक पॉसिबल है।
1: डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि बारिश के मौसम में, मॉनसून में साबुन और सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी किया जाता है, तो क्या ये सही है, करना चाहिए?
0: सर जिनकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है या जिनको बार बार एलर्जीज एक्जिमा हो जाता है,
1: जी
0: उन लोगों ने सैनिटाइजर या साबुन का यूज़ कम से कम करना चाहिए। बट अगर आपको दाद है तो आप दूसरों से हाथ मिलाने से पहले सैनिटाइजर का यूज़ करें, और नहाते वक्त एक अच्छे साबुन का इस्तेमाल करें तो आपको संक्रमण फैलने ना देने में और अपने संक्रमण ठीक करने में भी बहुत मदद होगी।
1: जी डॉक्टर साहब, एक और फोन कॉल है, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो
4: जी नमस्कारम, पीपी
1: नमस्कारम
4: गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
1: जी
4: मुझे पूछना है, एक बीमारी है अर्टिकेरिया, सीत पित्ती।
1: जी
4: तो ये सीत पित्ती क्या है और इसका नाम सीत पित्ती क्यों है, कृपया विस्तार से बताएं।
1: जी आशना जी,
3: तो जो अर्टिकेरिया होती है, जिसको हम पित्ती बोलते हैं, वो एक तरह की एलर्जी होती है। इस एलर्जी के कई वजहें होती हैं, जैसे किसी खाने पीने की वस्तु से हो सकता है, किसी कपड़े से हो सकता है, किसी इन्फेक्शन से हो सकता है, इसके कई अनेक कारण हैं। इसका एग्जैक्ट कारण ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी दवा है वो आप रेगुलर लेंगे, उसका कोर्स पूरा करेंगे और कुछ चीज़ों का परहेज़ करेंगे। कोई भी अगर ऐसी चीज़ लगती है जिसको खाने से, पीने से या पहनने से एलर्जी बढ़ रही है, दिक्कत बढ़ रही है, तो उस चीज़ को पूरी तरह से अवॉइड करना है। और ऐसा भी नहीं करना है कि उसको आप टेस्ट करें कि आपने एक बार खाया, आपको लगा आपको एलर्जी है, तो आप फिर से एक बार चेक करने के लिए दोबारा खाएं, ऐसे नहीं करना है। परहेज़ करना है उन चीज़ों का, उसी से जल्दी ये ठीक होगा।
1: डॉक्टर साहब, एक व्हाट्सएप मैसेज आया है और ये मैसेज भेजा है सरोज मल्होत्रा जी ने साकेत मेरठ से। ये कहते हैं कि मेरे लिप्स में, होठों पे जैसे बहुत जलन सी होती है, और इसके लिए कौन सा साबुन यूज़ करना चाहिए मॉनसून में?
0: सर जलन के लिए कोई स्पेसिफिक साबुन आता नहीं है, मैं तो इनको सलाह दूंगा कि आप हो सके तो कम से कम साबुन यूज़ करें, और कोई क्लेंजिंग क्लेंजर या पीएच बैलेंस्ड क्लेंजर का यूज़ करें अपना फेस वॉश करने में। कई बार जलन का कारण हमारी अंदरूनी एलर्जीज भी होती है, खासकर एटोपिक डर्मेटाइटिस वाली बीमारी जिसमें होंठ बार बार फटते हैं और जलन हो सकती है।
1: तो डॉक्टर साहब, ये बारिश के मौसम में जब होंठ फटने फटने लगते हैं, तो उसके लिए कोई अलग से कोई ऐसे कोई उपाय?
0: सर लिप बाम का नियमित प्रयोग करना और पानी का हाइड्रेशन मेंटेन करना, पानी का सेवन करना, यही
1: जी
0: एक अलग।
1: डॉक्टर साहब, एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद में हम अपने श्रोताओं के साथ फिर मिल बैठेंगे और बहुत सारी समस्याएं सुनेंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: और इस छोटे से एक लवली ब्रेक के बाद हम फिर लौट आए हैं और हम आपको एक बार फिर से अपना फोन नंबर बता देते हैं 2342-1080 और दूसरा फोन नंबर है 2342-1082। और इन दोनों फोन नंबर से पहले दिल्ली का स्टडी कोड 011 यानी कि 011 जरूर डायल कीजिएगा। और साथ ही साथ आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए भी सवाल कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। डॉक्टर साहब हमारे साथ कुछ श्रोता और जुड़ गए हैं, उनकी समस्या सुनते हैं। हेलो।
2: हेलो
1: जी, नमस्कार, आपका शुभ नाम?
2: मेरा नाम राजेंद्र बोल रहा हूँ।
1: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: मेरा नाम राजेंद्र करमपुरा बोल रहा हूँ।
1: जी राजेंद्र जी, क्या पूछना चाहते हैं?
2: हाँ तो दोनों डॉक्टर को नमस्कार
1: जी। राजेंद्र जी आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, आपकी आवाज हमें नहीं, आपकी आवाज कट रही है, हमें समझ में नहीं आ रही है। जी
2: अब आ रही है।
1: जी अब ठीक आ रही है।
2: हेलो।
1: जी जी बताएं।
2: अब आ रही है मेरी आवाज?
1: बिल्कुल सही आ रही है, बताएं।
2: हेलो।
1: जी जी बोले अपनी। हेलो दोस्तों, इनसे हमारा संबंध फिर एक बार टूट गया है। खैर कोई बात नहीं, इनसे हम फिर दोबारा जुड़ेंगे तो और बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनसे भी हम रूबरू होते हैं। और एक समस्या ये है कि ये फोन आया है जी, एक व्हाट्सएप मैसेज ले रहे हैं और इस व्हाट्सएप मैसेज में लिखा है कि मैं कृष्णा अपनी बिटिया 27 साल के लिए एक सवाल करना है कि एक पैर के तलवे में एक्जिमा जैसी खुजली लगभग 15 से 18 वर्षों से है, इलाज लेकर थक गए हैं, समय समय पर ट्रिक रहता है, नींद में भी खुजाती रहती है, हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब, डॉक्टर अखिलेश जी।
3: सर एक्जिमा अगर उनको नज़र आ रहा है और स्किन में चेंजेस नज़र आ रहे हैं तो हो सकता है वो एक्जिमा हो या सोरियासिस हो, उनको डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलके इसका ट्रीटमेंट तो लेना ही चाहिए। पर अगर कुछ टेम्पररी रिलीफ के लिए अगर मैं कहना चाहूँ तो मॉइस्चराइज

0: इनको रखना बहुत ज़रूरी है। नहाने के बाद और शाम में सोते वक्त एक मॉइस्चराइज़र का उपयोग ज़रूर करें। अगर खुजली बहुत ज़्यादा है तो एंटी एलर्जिक्स का यूज़ करें। अगर डिटर्जेंट में पैर जाता है कपड़े धोते वक्त, तो थोड़ा ऊंचाई पे बैठ के पैर धोए। बार बार साबुन, खासकर जो हार्श साबुन होती है, जो एंटीसेप्टिक सोप्स होती है, उनका उपयोग ना करें। माइल्ड सोप का यूज़ करें, एंटी एलर्जिक्स यूज़ करें और मॉइस्चराइजर यूज़ करें।
1: डॉक्टर आशना जी, एक मैसेज है, अलका जी का है और इनकी उम्र है 46 साल और ये दिल्ली से हैं। कहते हैं कि मैम, शुड वी यूज़ ए सेपरेट बॉडी वॉश एंड फेस वॉश वाइल बेदिंग एंड और इज़ इट ओके टू यूज़ ए सोप लाइक जो बाज़ार में मिलते हैं?
2: ज़रूर हमें बॉडी वॉश फेस वॉश दोनों यूज़ करने चाहिए। फेस पे हमारी स्किन हल्की सी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो अगर हम फेस के लिए एक डिफरेंट एक अलग तरह का सोप या फेस वॉश यूज़ करना चाहें तो वो भी अच्छी चीज़ है। अगर बॉडी वाला जो आप बॉडी वॉश या बॉडी सोप यूज़ कर रहे हैं, अगर वो एक माइल्ड सोप या बॉडी वॉश है, तो उसको आप फेस पे बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है।
1: डॉक्टर अखिलेश जी, एक और मैसेज है, कहते हैं कि डॉक्टर साहब गुड आफ्टरनून, आप दोनों को गुड आफ्टरनून कहा है। और डॉक्टर साहब, बरसात में पानी दूषित हो जाता है तो पानी का इस्तेमाल किस प्रकार और कितना करना चाहिए, कृपया बताने का कष्ट करें। यह है नरदेव सिंह चौहान जी, कोटद्वार उत्तराखंड। और क्या इनसे भी कोई समस्या हो सकती है, स्किन संबंधी समस्या हो सकती है?
0: अगर पानी का सेवन की बात कर रहे हैं तो पानी फिल्टर करके पिए, और अगर आप जो नहाने के लिए या डे टू डे यूज़ में जो पानी यूज़ करते हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो अगर आपको विजिबली नज़र आ रहा है कि पानी संक्रमित है या उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्यूरिटीज़ है, तो आप उसको फिल्टर करके यूज़ कर सकते हैं। या तो आप उसमें फिट करिए एलम, जो हम कहते हैं, आपके नहाने जो आपका सप्लाई का टैंक है, सप्लाई टैंक में फिट करिए एलम को, थोड़ा मिक्स करके रखे तो वो इम्प्यूरिटीज़ को एब्जॉर्ब कर लेगा और आपकी स्किन को कोई हार्म नहीं होने देगा। वैसे पानी से बहुत ज़्यादा कोई समस्या होती नहीं है।
1: डॉक्टर साहब जी, वाटर टैंक में आपने बताया कि फिट करे तो कितनी मात्रा में होनी चाहिए?
0: अगर आपकी 500 या 1000 लीटर की टैंक है तो आधा से 1 किलो बहुत होता है। अगर ज़्यादा भी हो जाए तो कोई परेशानी नहीं है, कम भी हो जाए तो कोई परेशानी नहीं है। बस हमें ये देखना है कि हमारी इम्प्योरिटीज़ जो हमें नज़र आ रही है पानी में, वो नज़र ना आए।
1: जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर आशना जी, बलजिंदर जी हैं, ये व्हाट्सएप मैसेज आया है इनका और इनकी उम्र है 31 साल। ये कहते हैं कि मेरी आईलिड यानी कि और दूसरी बात कोहनी पर स्किन 3 मंथ से ड्राई होती है और खुजली भी होती है, सेफ हो जाती है स्किन और पपड़ी सी निकलने लगती है। मैंने सर्च किया, उसमें एक्जिमा या सोरासिस दिखा रहा था, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे टेंशन हो रही है, बताइए।
2: सबसे पहले तो सर्च बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है,
1: जी
2: ये सही तरीका नहीं है। हालांकि ये एक्जिमा या सोराइसिस दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है, वो ज़्यादा बेहतर देख के ही पता चलेगा, पर कृपया सर्च करके अपने आप से दवा ना करें किसी भी चीज़ की।
1: सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना है
2: जी। इसके अलावा जो थोड़े से प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं, एक बिल्कुल माइल्ड सोप का इस्तेमाल करें नहाने के लिए, बहुत ज़्यादा सोप भी ना यूज़ करें। उसके बाद नहाने के एकदम बाद अच्छे से कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लें, जहाँ जहाँ पे एक्जिमा हो रहा है मॉइस्चराइज़र या नारियल का तेल भी थोड़ा सा लगा लें।
1: जी डॉक्टर अखिलेश जी, एक मैसेज आया है, इन्होंने कहा कि टेल अबाउट मुल्तानी मिट्टी, इसका प्रयोग कैसे करें?
0: सर, मुल्तानी मिट्टी तो हमारे करिकुलम में नहीं है, हमारे बुक्स में तो नहीं है, बट मैं एज अ जनरल यूज़ में आपको बता सकता हूँ कि आप कभी कभी महीने में एक बार या 2-3 महीने में एक बार मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर सकते हैं। उससे स्किन को ना ही कोई बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ना ही कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। स्किन को थोड़ा सा स्क्रब करके क्लीन करने में हेल्प कर सकता है, बट उसके अलावा मुझे उसका कोई बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं लगता।
1: डॉक्टर राशना जी, क्या मॉनसून में मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए?
2: बिल्कुल, मॉनसून में बहुत लोगों को ये लगता है कि बादल हैं, धूप कम है, तो वो सनस्क्रीन का प्रयोग काफ़ी समय नहीं करते, जिससे स्किन को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है।
1: जी
2: तो हालांकि हमें सूरज दिखता नहीं है, सूरज की किरणें नहीं नज़र आती, बादल दिखते हैं, फिर भी जो यूवी रेज हैं वो बादलों के थ्रू आती हैं, हमारी स्किन को अफेक्ट करती हैं। मॉइस्चराइज़र चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, उसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं, बट सनस्क्रीन डेली की डेली, रोज़ सुबह सबको एक बार लगाना ही चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, जो सूखी त्वचा है और जो बहुत सेंसिटिव है, उनके लिए क्या सनस्क्रीन या फिर मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहिए?
2: उनको तो मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए और सनस्क्रीन भी यूज़ करना चाहिए।
1: वैसे कब यूज़ करनी चाहिए, कितनी बार यूज़ करनी चाहिए?
2: सुबह एक बार तो चेहरा धोने के बाद मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन बेहद ज़रूरी है लगाना। बाकी अगर कर सकते हैं तो हर 3-3 घंटे में दोबारा सनस्क्रीन लगाएं, अगर बाहर आउटडोर का कोई काम है, बाहर का काम है। अगर कमरे में रहते हैं या ऑफिस जॉब है तो सुबह एक बार भी काफ़ी है।
1: डॉक्टर साहब, ये बारिश में किसी प्रकार का नुकसानदायक तो नहीं हो सकता है?
2: बिल्कुल भी नहीं, पर थोड़ा सा अपनी स्किन के हिसाब से, अगर स्किन थोड़ी हैवी लगती है ये सब लगा के, तो एक लाइट वेट मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन हम यूज़ कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर अखिलेश जी, डॉक्टर साहब एक फ़ोन कॉल आ रहा है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हेलो,
3: नमस्कार सर।
1: नमस्कार, आपका शुभ नाम, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
3: मेरा नाम, मैं घासीराम बोल रहा हूँ, अलवर राजस्थान से।
1: जी, क्या प्रश्न है आपके?
3: मैं ये पूछना चाह रहा था कि नहाने के बाद डेली तेल लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए?
1: डॉक्टर साहब,
0: खम्मा गणी घासीराम जी।
3: जी
0: सर। जी, नहाने के बाद तो तेल लगाना नहीं लगाना आपकी चॉइस है सर। आप ज़रूर डेली तेल लगा सकते हो, पर अगर आपकी स्किन ऑयली है या आपके चेहरे पे मुहासे या पिंपल्स बार बार हो रहे हैं तो आप कम से कम तेल लगाए, हफ्ते में एक बार तेल लगाना भी बहुत होता है। और अगर आपको डैंड्रफ रूसी की समस्या भी बार बार हो रही है तो बहुत डेली तेल लगाने से बचे, हफ्ते में एक बार तेल लगाना बहुत होता है। और तेल कौन सा लगाए तो नारियल का तेल या वर्जिन कोकोनट ऑयल जो क्या कहा जाता है, वो आपके स्किन और हेयर के लिए ठीक होता है।
1: डॉक्टर साहब, आपने तेल लगाने की बात की, बरसात के मौसम में जैसे बारिश में अक्सर बाल जो गीले होते हैं, तो क्या उस वक्त तेल लगाना चाहिए?
2: बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब बाल गीले होते हैं, उस पर नमी होती है, उसके ऊपर हम तेल लगा देते हैं तो वो फंगस के लिए बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट बन जाता है। तो कोशिश करें कि अगर तेल का उपयोग करना है तो अच्छे से बाल सुखाने के बाद ही करें, गीले बालों पे ना लगाएं।
1: जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर अखिलेश जी, मधुमेह रोगी, मधुमेह रोगियों के लिए कई बार, डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं उनके लिए कई बार परेशानी हो जाती है बारिश के मौसम में, और ख़ासकर जब ज़ख्म हो जाते हैं तो बारिश के मौसम परेशानी होती है, उनके लिए क्या करना चाहिए?
0: सर, डायबिटीज़ के पेशेंट में जो हमारी स्किन की इम्यूनिटी है वो थोड़ी उनके ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होने की वजह से और न्यूरोपैथी मतलब नर्व्स में उतनी ताकत ना रहने की वजह से इन्फेक्शन ठीक होने में बहुत समस्या होती है। तो अगर उनको छोटा सा भी कोई कट लग रहा है या कोई छोटा सा दाना हो गया है, छोटा सा छाला हो गया है, तो तुरंत स्किन के डॉक्टर या अपने डायबिटीज़ के डॉक्टर से मिलके उसका इलाज कराए। और प्रिवेंशन से अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती है, तो हमेशा नहाने के बाद मॉइस्चराइज रखे, सॉक्स पहने, फुल पैंट्स पहने, ये बहुत ज़रूरी है।
1: जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं और हमसे श्रोता जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे श्रोताओं के साथ साथ मैसेज, यानी कि जो फ़ोन कॉल आ रहे हैं उसके साथ साथ मैसेज भी आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर हम लौटते हैं।

0: और इस छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट आए हैं और हम जुड़ने जा रहे हैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से। जी हाँ, जहाँ से मैसेज किया है जोया जी ने, और ये कहती हैं कि हाउ गुड इज रबिंग क्लैरिफाइड बटर ऑन ह्यूमन स्किन इन एनी सीजन। डॉक्टर आशना जी,
1: तो क्लैरिफाइड बटर यानी घी, तो ये क्या करता है, हमारी स्किन में से वाटर लॉस यानी पानी की हानि कम करता है, तो एक अच्छे मॉइस्चराइज़र की तरह एक ऑक्लूसिव लेयर बनाता है। तो अगर कहीं पे त्वचा बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा फ्लेकीनेस है, तो आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर किसी को मुहासों की समस्या है या उस चीज़ से सेंसिटिविटी है या एलर्जी है, वो लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते। ध्यान रखने की बात ये है कि साफ़ शुद्ध घी इस्तेमाल करें, बिना किसी और चीज़ के, कि उसमें और कोई मसाले ना हो,
0: कोई मिक्स ना हो।
1: जी
0: जी, डॉक्टर अखिलेश जी, नवजात शिशु बड़े ही संवेदनशील होते हैं और उनकी त्वचा भी बड़ी ही नाजुक होती है, तो बरसात के मौसम में किस प्रकार उनका ख्याल रखना चाहिए?
2: जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि नवजात शिशु की त्वचा बहुत ही कोमल होती है। नवजात शिशु के पेशेंट्स में ज़्यादातर हमने ये देखा है कि उनको अपने आप कोई बीमारी होने से ज़्यादा जो हमने या पेरेंट्स ने उनके ऊपर प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं या जो उनको कपड़े यूज़ किए हैं, उसके वजह से एलर्जीज या दूसरी इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आप कम से कम बच्चों को टच करें, सूती कपड़े पहने, जितना लाइट वेट हो सके उतना लाइट वेट कपड़ा पहनाएं, बहुत ज़्यादा तेल मालिश ना करें। नहाने, अगर तेल मालिश करने का बहुत ही ज़्यादा मन है तो नहाने के बाद बिना कपूर का कोई तेल, खासकर नारियल का तेल आप लगा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा उमस का मौसम है और अगर आपके घर में कूलर एसी की सुविधाएं नहीं है और पसीना बहुत आ रहा है, तो तेल ना लगाए तो ये आपके लिए बेहतर होगा।
0: डॉक्टर साहब, बरसात के मौसम में देखा जाता है कि जो ज़ख्म होते हैं वो सूखते नहीं हैं, सूखने में बहुत टाइम लग जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए?
2: सर, जैसे हमने बोला, पहले भी बात की कि डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा देखा गया है, वैसे अगर आपको नॉर्मली भी कोई ज़ख्म सूखते हुए नहीं नज़र आ रही है, तो आपके घर में कोई अगर एंटीसेप्टिक या एंटीबायोटिक क्रीम रखी है तो उसको लगा ले और जल्द से जल्द डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाए। सर,
0: उसमें किसी प्रकार का पाउडर भी वगैरह भी लगा

0: सकते हैं?
1: सर पहले पाउडर बहुत लगाने का चलन था हमारे देश में, पर अब पाउडर का कोई खास साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। तो पाउडर लगाने से बच्चे बार बार जख्म को छेड़े ना, उसको खुजली ना करे। खासकर जो लोग आयोडीन से धोते हैं और या कोई एंटीसेप्टिक लिक्विड से धोते हैं, ये भी आप ना करें, उससे भी जलन एलर्जीज हो सकती है। एक सिंपल एंटीबायोटिक क्रीम या एंटीसेप्टिक कोई क्रीम आप लगाकर आपके पास के डर्मेटोलॉजिस्ट या कोई जनरल डॉक्टर से मिले।
0: जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, और एक और प्रश्न मेरे मन में ये चल रहा है कि डॉक्टर साहब, जब कभी हम लोग बारिश के मौसम में बाहर निकलते हैं, घमौरियाँ हो जाती हैं, यानी कि बारिश के मौसम में देखा जाता है कि जैसे शुरुआत में भी हमने कहा था, डॉक्टर अर्चना जी से बात की थी तो कह रहे थे कि ऐसे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं होता है, और इन्होंने ये भी कहा था कि बारिश के मौसम में अगर बारिश में भीग जाएँ तो घमौरियाँ कम हो जाती हैं, तो इसमें और कौन कौन सी समस्या हो सकती है, इसमें किस प्रकार का ट्रीटमेंट लेना चाहिए?
1: सर अगर घमौरियों का विषय अगर है, अगर घमौरियों की बात हो रही है, तो घमौरियाँ सिर्फ और सिर्फ ओवर स्वेटिंग से होती है, और उसके ऊपर अगर हम कपड़े हवादार खुले कपड़े ना पहन रहे हैं तो उससे होती है। घमौरियाँ होती है क्योंकि हमारे स्वेट ग्लैंड्स बंद हो जाते हैं, क्लॉग हो जाते हैं, ओवर वर्कड हो जाते हैं। तो स्वेट ग्लैंड्स की एक्टिविटी कम करने के लिए हमें ठंडे में रहना है, ठंडे एटमोसफियर में रहना है, और हो सके तो AC कूलर फैन का आपको यूज़ करना है और कॉटन के कपड़े
0: डॉक्टर
1: पहनने।
0: साहब, लगभग हमारे पास वक्त समाप्त हो चुका, ख़त्म हो चुका है, चलते चलते अपने श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार का खान पान रखना चाहिए, किस प्रकार के सावधानियां रखनी चाहिए?
2: इस मौसम में कोशिश करें मीठा चिकनाई कम खाएं, दाल, हरी सब्जियां, प्रोटीन, ये सब थोड़ी ज़्यादा मात्रा में खाएं, अच्छी क्वांटिटी फाइबर की खाएं और ज़्यादा हैवी खाना ना खाएं।
0: जी डॉक्टर अखिलेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे?
1: सर बारिश के मौसम में जो भी अधिकतर परेशानियाँ होती है वो ह्यूमिडिटी या नमी से होती है। तो ह्यूमिडिटी और नमी से बचने के लिए आप ठंडे वातावरण में, ठंडे एटमॉस्फेयर में रहे, साफ सूती कपड़े पहने, एक दूसरे से अपने कपड़े शेयर ना करें। आपको अगर फंगल इन्फेक्शन, रिंगवर्म या दांत की समस्या हो जाती है तो स्टीरोइड युक्त क्रीमें ना लगाए, और खुले हवादार कपड़े ठंडे मौसम, ठंडे वातावरण में रहें।
0: तो दोस्तों, बारिश का मौसम बड़ा खुशनुमा ज़रूर होता है, लेकिन त्वचा की सेहत के लिए थोड़ी अतिरिक्त यानी कि सावधानी भी ज़रूरी होती है। स्वच्छता, त्वचा को सूखा रखने की आदत और समय पर डॉक्टर की सलाह, इन सब बातों का ख्याल रख करके, अपना करके, मानसून में होने वाली बीमारियों से हम बच सकते हैं, त्वचा संबंधी परेशानियों से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अखिलेश जी और डॉक्टर आशना मल्होत्रा जी, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और त्वचा के संक्रमण संबंधी कई बातें आपने हमसे साझा की, जानकारियां दी, और श्रोताओं के आपने सवाल ही बहुत अच्छे तरीके से दिए, और अपने श्रोता, मुझे लगता है कि अपने श्रोता ज़रूर संतुष्ट होंगे, सेटिस्फाई होंगे। आप दोनों का यहाँ पर अपना वक्त निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।
1: थैंक यू।
0: तो डॉक्टर, तो श्रोता मित्रों, अब हम आपसे विदा लेते हैं और कल एक फिर नए सब्जेक्ट के साथ आपके पास फिर हाजिर होंगे, नए एक्सपर्ट के साथ हम फिर आपके साथ रहेंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त कमल किशोर को दीजिए इजाजत, नमस्कार, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
4: नमस्कार, 4 बज चुके हैं, पेश है इस घंटे के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित होने के बाद कार्यवाही स्थगित। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आज छात्रों का विधानसभा मार्च। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर सरकारी खरीद का कारोबार एक दशक में 422 करोड़ से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना का संयुक्त विस्फोटक आयुध रोधक ईओडी अभ्यास 2026 आज से कोच्चि स्थित

दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस के अवसर पर कहा, भारत में एशियाई शेरों की आबादी लगातार बढ़ रही है और उनके आवास और विचरण का क्षेत्र भी लगातार विस्तार कर रहा है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की और खेलों में ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुगपंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो दोस्तों, जी हाँ, आप सुन रहे हैं 102.6 आकाशवाणी रेनबो। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे शालिनी, लेकर आ गई हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम अल्फा जेन। और आज अल्फा जेन में, यानी कि खास सोमवार के दिन, बात होती है युवाओं की। जी हाँ, यूथ स्पीक्स लेकर आते हैं हम, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं एक खास मेहमान, जो बात करते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दों की और रखते हैं आपके बारे में अपने विचार, और साथ बात होती है आपसे जुड़ी हुई। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आदित्य कुमार पांडे। आदित्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी रेनबो के स्टूडियो में। आदित्य DU से पढ़ाई कर रहे हैं, और इसी के साथ आज वो बात करने वाले हैं खुद से मुलाकात की। तो आदित्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने ये टॉपिक क्यों चुना।
2: धन्यवाद मैम। सबसे पहले मुझे FM रेनबो पर आकर सच में बहुत अच्छा लग रहा है। दरअसल जब मैंने अपने आसपास देखा, कॉलेज के दोस्तों को, सीनियर्स को, और यहाँ तक कि खुद को भी, तो एक चीज़ बार बार नज़र आई कि हम सब कुछ मैनेज तो कर रहे हैं, अपने क्लासेस, असाइनमेंट्स, इंटर्नशिप्स, सोशल लाइफ और भी बहुत कुछ, पर शायद इस पूरी भागदौड़ में एक चीज़ सबसे पीछे छूट जाती है, वह है खुद के लिए वक्त निकालना। हमारी जनरेशन सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है, फिर भी सबसे ज़्यादा अकेली महसूस करती है, इसलिए मुझे लगा इस टॉपिक पर बात होनी चाहिए।
1: बिल्कुल आदित्य, कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारे लोगों से घिरे होते हैं, लेकिन उस भीड़ में भी तन्हा महसूस करते हैं। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्यों ऐसा होता है युवाओं के साथ या फिर किसी के भी साथ, और कैसे इस चीज़ को डील किया जाए, इस पर होगी बात आज के अल्फा जेन में।

दोस्तों, वैसे एक बात बताइए, अगर आज के दिन को कोई टाइटल देना हो तो उसको क्या रखेंगे? बहुत ज़्यादा भाग दौड़ या कल के जैसा बीता हुआ एक और दिन? हम रोज़ इतना कुछ जीते हैं, पर उसे महसूस करने का टाइम कितनी बार निकालते हैं? ये सोचने वाली बात है ना? तो जैसा अभी बताया गया, आज की ये मुलाकात है खुद से मुलाकात। ये ना कोई लेक्चर है, ना कोई लंबा भाषण, बस एक हल्की सी बातचीत है आपकी, मेरी और उस इंसान की जिससे हम सबसे कम बातें करते हैं। तो जहाँ भी हैं, स्वागत है आपका अल्फा जेन में।

इलाही सुनकर आपके पैरों में हल्की सी बेचैनी हुई ना कहीं निकल जाने की। वैसे एक बात बताइए, आज सुबह उठते ही सबसे पहले आपने क्या देखा था, फोन की स्क्रीन या खिड़की से आती धूप? ज़्यादातर लोगों का जवाब पहला ही होगा, और इसमें कुछ गलत भी नहीं। बस इतना सोचिए, दुनिया भर की खबर तो हम रोज देख ही लेते हैं, अपना मूड कब चेक करते हैं? अगला गाना उसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश है।

0: बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
1: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
0: अरे मम्मी, एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
1: हैं? इतनी जल्दी?
0: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय काले खान स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खान से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
3: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
4: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
5: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं यूथ स्पीक्स। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं खुद से रूबरू होने की। सच कहूँ तो यही सबसे मुश्किल काम है आजकल। स्क्रीन पर दूसरों की ज़िंदगी इतनी चमकदार दिखने लगी है कि अपनी ज़िंदगी थोड़ी फीकी लगने लगती है। किसी की नई नौकरी, किसी का ट्रिप, किसी का परफेक्ट पल। पर एक बात याद रखिए, कोई अपनी बुरी तस्वीर नहीं दिखाता, कोई अपने बुरे पल को शेयर नहीं करता। तो कंपेयर करना ही है तो अपने पास्ट को खुद से कीजिए, आज वाले किसी और से नहीं।
8: बिल्कुल सही कह रहे हो आदित्य, हमें अपने पास्ट से यानी कि अपने आप से ही अपने आप को कंपेयर करना है कि हमारे कल में हम कैसे थे। हमें उससे तरक्की करनी है, उससे आगे बढ़ना है, ना कि किसी और से अपने आप को कंपेयर करके परेशान होना है कि उसके पास ये सब कुछ है या उसने ये अचीव कर लिया। और जब हम ये कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हम तरक्की की राह पर अपने आप को बढ़ते हुए पाएंगे।

0: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
1: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सराय कालेखा से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
0: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
1: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
0: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
2: मंगल भवन मंगलहारी।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

बिल्कुल दोस्तों, ये जोशीला गाना सुनने के बाद कहीं ना कहीं एक जोश आपके अंदर भी भर गया होगा। और जब जोश की बात आती है तो कुछ ही दिनों में हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस आने वाला है और इसी उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। जब बात तिरंगे की होती है ना तो मन में गर्व की भावना जागती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तिरंगे के प्रति हमारी जिम्मेदारी सिर्फ उसे सलाम करने तक सीमित है? दोस्तों, हम युवाओं की जिम्मेदारी है कि तिरंगे को केवल सोशल मीडिया की डीपी या किसी खास दिन की तस्वीर तक सीमित ना रखें, बल्कि उसके सम्मान को अपनी आदतों और व्यवहार का हिस्सा बनाएं। राष्ट्रीय पर्वों पर हाथ में तिरंगा लेना जितना गर्व की बात है ना दोस्तों, उतना ही जरूरी है कि समारोह के बाद उसे सड़क पर या कूड़े में ना छोड़ें। और शायद तिरंगे के प्रति सबसे बड़ा सम्मान यही होगा कि जब हम अपने देश के लिए अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाएंगे, चाहे वो पढ़ाई हो, काम हो, समाज के प्रति जिम्मेदारी हो या देश की प्रगति में अपना योगदान देने की बात हो। क्योंकि तिरंगे का सम्मान सिर्फ हाथ में झंडा उठाने से नहीं होता, बल्कि अपने काम से, अपनी जिम्मेदारी से देश का मान बढ़ाने से होता है।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फा जैन और आज अल्फा जैन में बात हो रही है खुद से मुलाकात की। दोस्तों अब करते हैं एक एक्टिविटी। आपको बस ये सोचना है कि आज ऐसी कौन सी बात हुई जिसके लिए आप थैंक यू बोल सकते हैं। सोचिए सोचिए, ज़रूर आपके दिमाग में पूरा दिन घूम रहा होगा कि कब आप किसको थैंक यू कहना चाहते हैं, क्यों थैंक यू कहना चाहते हैं। आपको मुझे जवाब नहीं बताना है, मैं नहीं जानना चाहती, लेकिन ये सवाल आपने अपने आप से किया, जवाब भी आपको पता लगा, तो कहीं ना कहीं आप ये तो सोचिए कि आप थैंकफुल हैं किसी के प्रति, यानी कि कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, किसी ने आपके साथ अच्छा किया, आप ग्रेटफुल हैं उस चीज़ के लिए। और क्या ये बहुत अच्छी बात नहीं है? क्या ये पॉजिटिविटी नहीं लेकर आता आपके जीवन में? इसीलिए हमेशा सकारात्मक रहने की कोशिश करें, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपका भला चाहते हैं, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके शुभचिंतक हैं, जो आपको थैंक यू बोलने का मौका दे रहे हैं। इसीलिए ग्रेटफुल रहें, ग्रेटिट्यूड शो करें।

दोस्तों, आजकल जब कोई पूछता है कैसे हो, तो सबसे कॉमन जवाब क्या होता है? बस यार, बहुत बिजी हूँ, आई एम फाइन। और पता है, ये जवाब तब प्रॉब्लम बनने लगता है जब बिजी होना हमारी पहचान ही बन जाए। गालिब की कुछ पंक्तियाँ हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। उन्होंने ये पंक्तियाँ आज की भागती हुई जिंदगी के लिए नहीं लिखी थी, पर कितनी सटीक बैठती है ना, है ना?

दोस्तों, जिंदगी के सफर में हमारी विशेष कभी खत्म नहीं होती। बेटर करियर, बेटर पैकेज, बेटर लाइफस्टाइल, ये सब जरूरी है, बहुत जरूरी है। पर अगर मंजिल तक पहुंचते पहुंचते हंसना ही भूल जाएं, तो सफर थोड़ा महंगा नहीं पड़ गया? चलिए एक सवाल छोड़े जाता हूँ। अगर अभी आपको सिर्फ 5 मिनट मिले, कोई फोन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, तो क्या आप अपने साथ कंफर्टेबल रह पाएंगे?

0: दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि खुश रहने के लिए कोई परफेक्ट मोमेंट आएगा, कोई बड़ा मौका आएगा, पर ज़िंदगी ऐसे तो नहीं चलती। निदा फाजले का एक लाइन है, सफ़र में धूप तो होगी, तो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। दोस्तों, रास्ता कभी आसान नहीं होता, पर चलते रहना सबसे ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी कल्पना कीजिए, 10 साल बाद वाला आप अगर आज वाले खुद से मिलने आए तो वो क्या पूछेगा कि कितना पैकेज है तुम्हारा, क्या तुम सक्सेसफुल हो या नहीं। शायद वो सिर्फ इतना पूछेगा कि खुश हो, और उस सवाल का जवाब सीवी में या फिर रेज्यूमे में नहीं मिलेगा, दिल में मिलेगा।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: दोस्तों, हम जिंदगी में बहुत सारे रिश्ते बनाते हैं, पर एक रिश्ता ऐसा होता है जो कभी साथ नहीं छोड़ता। वो होता है खुद से हमारा रिश्ता। हम दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देते हैं, पर एक छोटी सी गलती अपनी कभी माफ़ नहीं करते। ऐसा क्यों?
1: बिल्कुल सही कह रहे हो आदित्य। कई बार होता क्या है ना कि जब हम अपनी गलतियों को माफ़ नहीं कर पाते तो वो तकलीफ़ हमारे दिमाग में हमेशा बनी रहती है और कहीं ना कहीं वो एक ज़ख्म की तरह होती है और जिसे हम बार बार कुरेदते रहते हैं। इसीलिए ज़रूरी ये नहीं है कि एग्ज़ाम अच्छा गया या नहीं, इंटरव्यू क्लियर हुआ या नहीं, क्योंकि जब ऐसा होता है हम सोचने लगते हैं कि क्या मैं काबिल हूँ। आपको अपनी काबिलियत पर सवाल नहीं उठाना है, क्योंकि कहानी हर बार बहुत सिंपल ही होती है, हम उसे कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। क्योंकि कोई भी फेलियर कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होता, वो बस एक चैप्टर होता है, पूरी कहानी नहीं। एक चैप्टर अगर अधूरा रह गया तो कोई बात नहीं, आप दोबारा मेहनत करिए, दोबारा कोशिश करिए, क्योंकि यही तो जीवन का सार है कि भले ही गिर जाए लेकिन उठना है और आगे बढ़ते रहना है, और आगे बढ़ते रहना नहीं छोड़ना है, हमेशा मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आप कोशिश करेंगे तो आपकी कोशिश ज़रूर साकार होगी और आप अपनी ज़िंदगी के सफ़र को, अपनी मंजिल को पाएंगे और सफल होंगे।

दोस्तों, आपको हर मैदान को फतेह करना है, लेकिन उसका कोई लोड नहीं लेना है, क्योंकि हमें हमारा कर्म करना है, बाकी हमारे कर्मों का फल

हमको मिलेगा ही और कभी ना कभी सफलता हमें जरूर मिलेगी। और इसी नोट के साथ मैं आपकी दोस्त आरजे शालिनी आपको कहूंगी बाय, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, आपको जुड़े रहना है आकाशवाणी रेनबो के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो 102.6 एफएम और अब समय है मुख्य समाचारों का। लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकाकार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आज छात्रों का विधानसभा मार्च। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया जीईएम पर सरकारी खरीद का कारोबार एक दशक में 422 करोड़ से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। भारतीय नौसेना और अमरीकी नौसेना का संयुक्त विस्फोटक आयुध रोधक ईओडी अभ्यास 2026 आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस के अवसर पर कहा भारत में एशियाई शेरों की आबादी लगातार बढ़ रही है और उनके आवास तथा विचरण का क्षेत्र भी लगातार विस्तार कर रहा है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और खेलों में ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुगपंडियन ने पुरुष

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो 102.6। मैं निशा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हुए आपसे बस यही कह रही हूँ कि सिटी लाइट्स ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है। देखिए माना 10 अगस्त है, सोमवार का दिन है और अब दिन लगभग खत्म होने वाला है और अपना दिन जो अपना काम है वो लोग क्या करते हैं, रैपअप करना शुरू कर दे रहे हैं। आपने भी कर दिया होगा, कुछ अच्छे से हुआ होगा, हो सकता है आज के दिन में, हो सकता है कुछ अच्छे से ना भी हुआ हो। इट्स ओके, पता ये इट्स ओके वर्ड मुझे बहुत पसंद है। इट्स ओके टू बी अलोन, इट्स ओके टू मेक मिस्टेक, इट्स ओके टू क्राई एंड इट्स ओके टू फील टायर्ड समटाइम। तो अगर आप थक गए हैं तो कोई नहीं जी, अपने आप को भी बिल्कुल वैसा ही प्यार दीजिए जैसा कि आप दूसरों को देते हैं, है ना। हमें सेल्फ लव की तरफ भी तो आगे बढ़ना चाहिए ना। तो दिन के खत्म होते ही बस इसी खास बात के साथ शुरू करूंगी कि एवरी स्टेप एवरी लेसन एंड एवरी न्यू डे इज हेल्पिंग यू टू बिकम स्ट्रॉन्गर पर्सन। कीप दिस इन माइंड एंड एंजॉय 102.6 FM।

102.6 FM रेनबो, इसी तरह से सलाम करने का टाइम आ गया है हमारे देश के तिरंगे को। हमेशा ये जज्बा हमारे दिल में, देशभक्ति का जज्बा हमेशा बना रहता है। और अब जब खास तौर पर हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, तो इससे जुड़ने की तैयारी आपने कर ली है ना? मैंने तो कर ली है। देखिए, हर घर तिरंगा अभियान इज अ कैंपेन दैट स्टार्टेड अंडर आजादी का अमृत महोत्सव टू एनकरेज पीपल टू ब्रिंग द तिरंगा होम एंड टू होइस्ट इट टू मार्क इंडियाज इंडिपेंडेंस। और सोचिए कि 2026 में हर घर तिरंगा प्रोग्राम जो है, इसका 5th एडिशन है ये। एंड आई थिंक इस अभियान ने हमारी तिरंगे के साथ जो रिलेशनशिप है ना, उसको रीडिफाइन किया है। सोचिए, हमारे घर की छत पर या फिर बालकनी में जब हम तिरंगे को लहराते हैं, अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर उसको सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं, और राष्ट्रगान जब मिलकर हम गाते हैं, तो कितनी अच्छी फीलिंग और कितना एक अच्छा ट्रेडिशन हम अपने आने वाली जनरेशन्स को दे रहे हैं। इसीलिए सो लेट्स डू इट अगेन। 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बनिए एंड होइस्ट द फ्लैग इन योर होम्स।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप, सिटी लाइट से ये मैं निशा आपके साथ में। और अब दिल्ली के वेदर की बात कर लेते हैं। अभी अभी मैंने यही अपने किसी कलीग से पूछा कि बाहर कैसी बारिश हो रही है, उन्होंने कहा जोरदार। अब जोरदार बारिश में वो थोड़े थोड़े भीगे हुए थे, लेकिन आप मत भीगना भाई, सच में बता रही हूँ। मेरे आसपास जितने भी लोग हैं वो लोग बारिश में भीगना अफोर्ड कर ही नहीं पा रहे हैं, बहुत जल्दी बीमार पड़ जा रहे हैं, बच्चे भी और फैमिली के लोग भी। इसीलिए यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस, क्योंकि मौसम विभाग ने तो बता दिया है कि अभी ये जो दो दिन दिल्ली में कुछ इलाकों में अच्छी धूप खिली थी, कपड़े अच्छे से सूख गए थे, लेकिन अब फिर से वो लगातार झमाझम बारिश वाला दौर हो सकता है लौट आए। और ऐसा अनुमान है कि पूरे अब आने वाले 3-4 दिनों तक अच्छी बारिश आपको देखने को मिल सकती है दिल्ली और एनसीआर में। लेकिन ट्रैफिक पे आई नो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है बारिश होने की वजह से, केओस हो जा रहा है, लेकिन सबसे बेस्ट इफेक्ट जो बारिश का नज़र आया है वो AQI लेवल पे आया है। आपने नोटिस किया 31 जुलाई से लेके अब तक दिल्ली एनसीआर का जो AQI है वो 100 के नीचे नीचे बना हुआ है। इजंट इट सरप्राइजिंग? बट यस, बारिश जो है हमारे मूड को अच्छा करने के साथ साथ ना ये AQI वाली खुशखबरी भी लेकर ही आती है। तो इस अच्छी साफ स्वच्छ सुंदर हवा में दिल्ली NCR के इस वेदर को एंजॉय करते रहिए। आकाशवाणी रेनबो है ये, और मैं निशा आपके साथ।

070 इज द नंबर. वैसे भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है वो अपने आगे सोशल मीडिया पेजेस पर लगातार ट्रैफिक अपडेट्स जो है वो डाल रही है, क्योंकि कांवड़ियों के चलते और कांवड़ कैंप्स जो लगे हुए हैं जगह जगह पर, उनकी सुरक्षा के चलते बहुत सारे प्रबंध किए गए हैं, इसीलिए थोड़ी ट्रैफिक की समस्या भी है. और आज तो सावन महीने का दूसरा सोमवार है, कल शिवरात्रि का दिन है, तो स्पेशली गाजियाबाद और गुरुग्राम में जो है वो अलग अलग तरह से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है, बहुत सारी सड़कों को बंद किया गया है, तो आप खासतौर पर ध्यान रखें. हाँ, इसके बारे में मैंने सुना था कि गाजियाबाद का जो दुधेश्वर नाथ मंदिर है वहां पर बड़ी ही भारी संख्या में श्रद्धालु जो है वहां पहुंचेंगे, इसीलिए भीड़ को नियंत्रित किया जाए, वहां पर सुरक्षा इंतजाम किए जाए. तो जीटी रोड से लेकर हापुड़ से घंटाघर तक के जितने भी के बड़े वाहन होंगे वहां पर आना उनका मना होगा, और यह पाबंदी 12 अगस्त तक के लिए लगाई जा रही है. और सिर्फ मंदिर तक पहुंचना होगा तो पैदल यात्रियों को ही वहां पर जाना होगा पहले. वैसे भी जी, भगवान के अगर दर्शन करने हैं, प्रसाद पाना है, तो थोड़ी तो मेहनत मशक्कत जो भक्त है, भक्तगण है, उन्हें करनी ही पड़ती है. आकाशवाणी रेनबो सुनते रहिए, यहां पर भी आपको लगातार ट्रैफिक की अपडेट मिलती रहेगी. फिलहाल अगर आपके पास, अगर आप कहीं ट्रैफिक में फंस गए हैं, तो 9868107070 पर मुझे बताइए.

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहुं सुदर्शन।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
4: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
5: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
4: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
5: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
6: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: मंजिलों पर बिल्कुल समय से पहुंचने की फिक्र तो देखो हम दिल्ली वालों को बहुत सालों से नहीं है, क्योंकि जब से दिल्ली मेट्रो हमारी जिंदगी में आई थी हमें टाइम पर पहुंचाना इस मेट्रो ने शुरू कर दिया था। और पता है 2026 में दिल्ली मेट्रो रिकॉर्ड्स 99.95% ट्रेन पंक्चुअलिटी, कैन यू बिलीव इट, इजंट इट ग्रेट, जो दुनिया की सबसे पंक्चुअलिटी और विश्वसनीयता के मामले में जितनी भी मेट्रो है दिल्ली मेट्रो ने हांगकांग, पेरिस, न्यूयॉर्क जैसी दुनिया की सभी जो मेजर ट्रेन नेटवर्क्स हैं, मेट्रो ट्रेन नेटवर्क्स हैं, उन्हें पीछे छोड़ दिया है और उन चुनिंदा सर्वश्रेष्ठ शहरी रेल प्रणालियों में सबसे ज़्यादा ऊपर हमारी दिल्ली मेट्रो का नाम आ गया है। तो इजंट इट ग्रेट न्यूज़, चाहे सड़कों पर कितना भी ट्रैफिक हो लेकिन हमें कोई मतलब जी नहीं, हम टाइम से अपने घर या फिर अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच ही जाते हैं।
1: मैनू ओपल याद नहीं जब मैं पैदा होया, मेरी पहली दिवाली या मेरा पहला खाया परौंठा मैनू याद नहीं, पर दुनिया की सब तो मीठी आवाज जब मैं पहली बार सुनी ओपल मैनू अज भी याद है। इन्ना सोहना चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था जी।

0: के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

ऐसी यारी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है हम सभी को भाई। इस एक मतलब कंपनी मिल जाए, कहीं जाना है, घूमने जाना है, कोई खास इवेंट देखना है, या फिर मतलब मेरा ही मन कर रहा है लेकिन मेरे फ्रेंड का मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा दोस्त हमारी लाइफ में होना चाहिए जो हमारे साथ हर जगह चलने के लिए तैयार हो जाए, नो मैटर वो हमारी वजह से हमारे साथ जा रहा हो, है ना। आपकी लाइफ में है ऐसे कोई दोस्त? और अगर है तो बस आप 12 अगस्त के लिए खास इवेंट प्लान कर सकते हैं, जो कि रविंद्र संगीत पेश करने जा रहा है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जो संगीत है वहां पर स्टेज पर पेश किया जाएगा, और श्रीकांत आचार्य जो है आर्टिस्ट का नाम है, ये बहुत ही फेमस सिंगर है, सॉन्ग राइटर है, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, और 12 अगस्त को ही इज परफॉर्मिंग इन इंडिया हैबिटेट सेंटर लोधी रोड में। इस प्रोग्राम का टाइमिंग शाम को 7:30 बजे से रहेगा। एंट्री बिल्कुल फ्री है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर, तो इसीलिए अगर आप टाइमली पहुंच जाएंगे तो बहुत ही अच्छी सी सीट अपने लिए रिजर्व कर लेंगे। और इस खास इवेंट का हिस्सा बनने के लिए यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम इन योर हैंड्स।

आकाशवाणी रेनबो 102.6 FM सिटी लाइट्स, मैं निशा हूँ आपके साथ में। और बिफोर कि मैं यहाँ से चले जाऊँ, आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताई देती हूँ कि दिल्ली से बिहार के छह बड़े शहरों के लिए DTC की बसें चलाई जाएंगी और जल्दी ये होने वाला है। इसके पीछे कारण यही है जी कि दिल्ली हैज अ लार्ज पॉपुलेशन विद लिंक्स टू बिहार, तो इसीलिए जैसे ये फेस्टिव सीजन शुरू होगा या छठ पूजा का समय आएगा तो उससे पहले ही ये बस सर्विस जो है वो शुरू हो जाएगी, जिसके इनिशियल फेज में 70 बसें जो हैं स्टार्ट की जाएंगी दरभंगा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, पटना और गया, और उसके साथ साथ भागलपुर के लिए। हाँ, ताकि जब त्योहारों का मौसम आए, छठ पूजा आए, तो हमारे भाई बंधु अपने पूरे परिवार के साथ अपने मिलकर और त्योहारों को सेलिब्रेट कर पाएं, इसीलिए किया जा रहा है। ये जो बसें होंगी सेमी स्लीपर बसेस और डीलक्स बसेस मिक्स होंगी, जिसमें एयर कंडीशन एंड नॉन एयर कंडीशन जो वेरियंट है वो अवेलेबल रहेंगे, और ये हमारे सभी दोस्तों का सफर जो है स्मूथ कर देंगी, ऐसा माना जा रहा है। आकाशवाणी रेनबो पर बस फिलहाल सिटी लाइट्स में आज के लिए इतना ही। आई होप आप दिल्ली की स्मूथ सड़कों को एंजॉय कर रहे होंगे, जहां पर कहीं कहीं थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिल जाता है। तो एंड योर डे ब्यूटिफुली, कीप लिसनिंग आकाशवाणी रेनबो 102.6 FM, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आई एम निशा साइनिंग ऑफ, हैव अ ग्रेट डे।

नमस्कार, पेश हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित होने के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आज छात्रों का विधानसभा मार्च। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, बताया जीईएम पर सरकारी खरीद का कारोबार एक दशक में 422 करोड़ से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। भारतीय नौसेना और अमरीकी नौसेना का संयुक्त विस्फोटक आयुद्धरोधक ईओडी अभ्यास 2026 आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विद्यावाहिनी योजना के अंतर्गत राजधानी के 200 छात्रों को मुफ्त साइकिलें वितरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और खेलों में ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुंग पंड्यन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। बने रहिए FM रेनबो, दिल से दिल तक पर यूं ही।

आकाशवाणी रेनबो पर नीरजा है आपके साथ और प्रोग्राम है मैसेज मसाला मिक्स और ये वो खास कार्यक्रम है दिन भर का जिसमें श्रोताओं के द्वारा ही इसे खास बनाया जाता है क्योंकि आपके मैसेजेस आएंगे और फिर यहाँ पर कोई ना कोई म्यूजिकल ट्रैक होगा आपके लिए। तो दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी भी तो किसी फिल्म से कम नहीं, कभी कॉमेडी है, कभी इमोशन, कभी सस्पेंस और कभी ऐसा ट्विस्ट कि खुद हम ही कह उठते हैं कि भाई ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। तो आज मैसेज मसाला मिक्स में जरा कल्पना कीजिए, अगर आपकी जिंदगी पर कोई फिल्म बने तो उसका नाम क्या होगा। भाई मेरे नाम की तो फिल्म बन गई है नीरजा, है ना, उसका ट्रैक भी मैंने आपको सुना दिया है, लेकिन अगर आपकी जिंदगी की बात है तो उसका शीर्षक क्या होगा बताइए हमें। हमारा नंबर है 9868107070, बस इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है और जुड़ जाना है हमारे साथ और हमें आपकी बस एक नज़र ही चाहिए।

NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: आकाशवाणी रेनबो पर नीरजा है आपके साथ लेकर प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स। और बिल्कुल आज मौसम भी बहुत सुहावना है और टॉपिक भी ऐसा लेकर आई हूँ जो थोड़ा सा अलग सा है। सोचिए ना कि कैमरा ऑन है और आपकी ज़िंदगी की कहानी बड़े पर्दे पर आ रही है और डायरेक्टर भी आप ही हैं, तो फिल्म का टाइटल क्या होगा यही बताना है। कुछ सपने कुछ सफ़र अभी कहानी बाकी है, या फिर मैं हार नहीं मानूंगी। तो फिर इस तरह से ये तो मैंने ऐसे ही सोच लिया, लेकिन मेरे श्रोता क्या सोचते हैं? भाई बहुत अच्छा सोचते हैं, बिल्कुल बताने वाली हूँ। क्योंकि सबसे पहले मैसेज आया है पंकज का अमरावती महाराष्ट्र से, और कहते हैं कि अगर मेरी ज़िंदगी पर कोई फिल्म बनेगी तो उसका नाम होगा अधूरी कहानी। भाई कहानी में तो बात पूरी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन हाँ टाइटल हमें अच्छा लगा। और नरेंद्र सोनी देवीगढ़ पटियाला से हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं फिल्म का नाम होगा बंदा बिंदास। क्या बात है। और हमारे पास मैसेज विजेंद्र जी, मैं आपका मैसेज ज़रूर ले पाऊंगी अगर आप बताएं कि किस नाम से आप चाह रहे हैं कि आपकी फिल्म हो। अच्छा लिखा है हमारे दिल आपके पास है, अरे क्या बात है, ये इन्होंने टाइटल दिया है अगर इनके नाम पर फिल्म बनेगी। जोया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़ी हैं और कहती हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, सिंगल रहो और ऐश करो, सारे डॉलर अपने ऊपर खर्च करो। क्या बात है, बहुत ही इकोनॉमिकल और बड़ा ही प्रैक्टिकल सा जवाब दिया है। अनमोल राय छपरा बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं माय लाइफ बेस्ड फिल्म विल बी दोस्ती। क्या बात है, और फिलहाल दोस्ती की बात की है तो बारिश की ये बूंदें है ना, ये हम सबसे जुड़ रही हैं। और एक मैसेज और ले लेती हूँ, जर्मनी से सनी कपूर हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं मेरे नाम से तो बन भी चुकी है सनी, बट मेरे यार दोस्त मुझे बकौल बुलाते हैं, इसलिए बकलौल टाइटल ही होना चाहिए। ओके। अनिल शर्मा अंकल जी का सरिता विहार से मैसेज आया है, कहते हैं मेरे ऊपर फिल्म बने ना तो उसका शीर्षक होगा व्यस्तता ही जिंदगी, क्योंकि वरिष्ठ लोगों की परेशानी बिना काम के समय नहीं कटता। हाँ, मैंने लेखन शौक को व्यस्त रखने के लिए सफल तरीका ढूंढ लिया है, इसलिए फिल्म का शीर्षक भी दे दिया है, बिल्कुल व्यस्तता ही जिंदगी। और जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और आज तो बारिश की बूंदे बिल्कुल लेते हुए मैं स्टूडियो में पहुंची हूं, तो बिल्कुल भीग गया है मेरा तन मन, और ऐसा ही एक ट्रैक आपके लिए लेकर आई हूं।

ख्वाब अधूरे हैं ये नाम होगा। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। और अगर अगला मैं मैसेज लेना चाहूँ तो अंशिका, हमारे पास मैसेज आ गया है और वो कहती हैं कि ऐसा कोई मेरी लाइफ से रिलेटेड टॉपिक फिल्म बनती होगी तो संघर्ष, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत है तो मुझे लगता है कि संघर्ष भरा हुआ है, इसलिए संघर्ष ही मैं अपनी फिल्म का नाम रखती। और मोनीश इद्रिसी हमारे साथ बिलासपुर से जुड़े हैं, कहते हैं चलते चलते ये नाम मैं रखता। और चलते चलते सुन के तो मुझे बहुत ही अच्छा ट्रैक भी याद आ गया है। रवि जोशी हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं एक मूवी आई थी गाइड, और मुझे लगता है फिर से ऐसा ही कुछ, लेकिन इस कुछ से पहले एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है, मैं वो लगा देती हूँ और फिर बढ़ती हूँ आगे। आप डायरेक्टर साहब, आपने कौन कौन से नाम रखने हैं अपनी बनाई फिल्मों के?

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आनंद विहार से हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं टाइटल होगा जीवन चलने का नाम, क्योंकि ये जीवन कहीं भी रुकता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। और अगले हमारे जो दोस्त हैं वो कहते हैं मित्र मित्र, ये इनकी फिल्म का टाइटल होता। ओके, दोस्ती बहुत प्यार से निभाते हैं आप। अंजलि शर्मा हस्तिनापुर से कहती हैं कि अगर कोई फिल्म बने ना तो उसका नाम होगा जिंदगी रखूंगी, हसीन जिंदगी रखूंगी। ओके, तो बिल्कुल जिंदगी बहुत हसीन है और आप ज़रूर ऐसा नाम रखिए। और हमारे पास ललित राणा डेरा बस्सी पंजाब से जुड़े हैं और कहते हैं कि मूवी का नाम हो

सब अपनी अपनी जिंदगी से कुछ ना कुछ जोड़ रहे हैं। अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं हमारी जिंदगी पर आधारित कोई फिल्म बने तो फिल्म का नाम होना चाहिए सफर है जिंदगी। क्या बात है। और हमारे जीवन में आए संघर्षों के हालात को बाखूबी उसमें दिखाया जाएगा। और फिलहाल मैं एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक आपके लिए लेकर आई हूँ, उसको एंजॉय कीजिए।

आकाशवाणी रेनबो पर आरजे नीरजा है आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स और बहुत बहुत मजा आ रहा है। आज का मौसम भी अच्छा है और आपके भेजे गए संदेश से भी बहुत बढ़िया है। और जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं दोस्त, बिल्कुल जुड़े रहना इसी तरह से। और हमें मैसेज करने के लिए नंबर है 9868107070। व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना है और सीधे आपकी बात हमसे हो जाएगी। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी शांति नगर सोनीपत से जुड़े हैं और कहते हैं कि अगर उनके हिसाब से फिल्म बनती तो नाम होता जनरल नॉलेज। क्या बात है। अगला जो हमारे पास मैसेज आया है वो कहता है कि टॉपिक जो है जिंदगी से संबंधित फिल्म का है। मैं बता दूं नीरजा जी, यदि मेरी जिंदगी से होता तो फिल्म बनती उसका नाम होता हर्ष होना चाहिए था। अच्छा जी, ये हैं हर्षवर्धन पांडे और कहते हैं फिल्म का नाम हर्ष होना चाहिए। बिल्कुल, जिंदगी में हर्ष बना रहना चाहिए। और हमारे श्रोता अगर सोच रहे हैं कि नंबर एक बार से फिर से बता देती नीरजा, तो नंबर मैं बता देती हूं, नंबर है 9868107070। यही वो नंबर है जहां आपके संदेशे जो हैं वो सीधे मुझ तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, 9868107070, और यही आपके मैसेजेस आएंगे। और आज हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारी जिंदगी पर फिल्म बने, यानी आपकी जिंदगी पर फिल्म बने और डायरेक्टर आप खुद हो, तो अपनी फिल्म का टाइटल क्या रखेंगे। अगला मैसेज हमारे पास आया है मनीष का मध्य प्रदेश से और वो कहते हैं हरियाली और स्वच्छता को मैं फिल्म में प्राथमिक दूंगा। क्या बात है, टाइटल भी बता देते दोस्त तो मजा आ जाता। लेकिन चलिए, आप प्रकृति के नियम को निभा रहे हैं, ये अच्छी बात है। और अगला मैसेज आया है चंद्रकांता जी का और कहते हैं आपका मैसेज में जब से पढ़ा है चंद्रकांता याद आता है। ओके, नीरजा गुलेरी आपको याद आती हैं और चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने फिल्म का जो नाम पूछा है वो नाम आप नहीं बता पाए, वो ज़रूर बताना था। रंजीत कुमार हमारे साथ बिहार से जुड़े हैं और शीर्षक होगा रोज़। क्या बात है, आपने बड़ा बढ़िया मैसेज भेजा है, बिल्कुल टू द पॉइंट। ओके, गुड इवनिंग दीदी, मन फिल्म हमारी पहली होती, प्रमोद चिंचोलकर अकोला से हमें कह रहे हैं। क्या बात है मन, वाह। धाकर जी का मध्य प्रदेश से, गुड्डू धाकर जी का उज्जैन से मैसेज आ गया है और इन्होंने नाम रखा है फिल्म का हंसते हंसते लग गए रस्ते। क्या बात है। अगला मैसेज हमारे पास आया कंचन सोनिया विहार से हमारे साथ जुड़ी हैं और क्या मैसेज है आपका, वक्त रुक जाए। ओके, नाम होता ए वक्त रुक जा यहीं पर, ये रखना चाहती हूँ। ओके दोस्तों, बिल्कुल स्पेसिफिक, सिर्फ फिल्म का नाम और नीचे आपका नाम, आपके शहर का नाम। मज़ा आ जाएगा अगर आप इस तरह से भेजेंगे। भुवनेश अशोक विहार से हमारे साथ जुड़े हैं और टॉपिक इनका होगा, कहते हैं बनती तो उसका नाम होता हैप्पी, मिस्टर हैप्पी, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स और कजन्स कहते हैं कि आप सबको खुश रखते हैं। गुड, खुशी तो आपने यहाँ तक बांटी है। और भेरूलाल वाकतरिया धाकर उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से चलती का नाम गाड़ी, कितना प्यारा मैसेज किया है ना आपने, बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा। एक श्रोता कहते हैं भाई मेरा मैसेज पढ़ा ही नहीं। कृष्णा जी, आपका मैसेज तो हम पढ़ चुके, कृष्णा कॉटेज आपने कहा था, मुझे याद भी है। प्रोग्राम सुनते रहिए और फोन पर जो बीच में बातें हो रही है ना, इसीलिए आप भूल गए थे। प्रियंका हापुड़ से हमारे साथ जुड़ी हैं और कहती हैं हर पल खुल कर जियो। बिल्कुल, देखो ना प्रियंका, ये ट्रैक मैं आप ही के नाम कर रही हूँ।

बिल्कुल, आपसे बहुत मोहब्बत है इसीलिए कहना चाहती हूँ दोस्त, ड्राइव सेफली, आराम आराम से, मौसम का मजा और हमारे गानों का साथ आपके साथ यूं ही बना रहेगा।

0: कोयल सी तेरी बोली, कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु,
1: आए हाय,
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

आकाशवाणी रेनबो पर नीरजा चतुर्वेदी है आपके साथ और प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स। और मैसेजेस की तो भाई झड़ी लग गई है, फिल्म तो अब बन के ही रहेगी। गुन्नौर से आदिल कमल तस्दीक अली मुजफ्फर अली कहते हैं कि फिल्म का नाम होगा दोबारा जन्म।

ना देना भगवान। अरे बाप रे इतना, अरे ऐसे कैसे कह रहे हो दोस्त। फिर से आएंगे और फिर से इसी तरह से जिएंगे बढ़िया तरीके से। अगला हमारे पास मैसेज आया है, अरे दोस्त दीदी को तुमने सब कुछ लिखा है लेकिन अपना नाम कहीं नहीं लिखा। विजेंद्र जी अकोला महाराष्ट्र से हैं हमारे पास, और टाइटल क्या है? टाइटल तो आपने नहीं बताया ना, कौन सा नाम शामिल करना चाहेंगे? दीदी नाम रखना चाहेंगे। ओके चलिए, फिल्म दीदी ही हो सकती है। और बारिश नहीं है वहाँ पर, बारिश नहीं है यहाँ पर, बारिश है, वो बारिश मंगा रहे हैं। फिलहाल मैंने एक गाना भेजा था, पहुँची कि नहीं पहुँची, लगता है अभी नहीं पहुँची। अगला मैसेज हमारे पास आया है, ये आप अपना नाम लिखना भूल गए क्या? कन्हैया लाल, रीटा देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, और फिल्म का नाम क्यों नहीं लिखा हमें? फिल्म का नाम ज़रूर लिखना था। आपकी मुबारकबाद तो बिल्कुल मिल गई है लेकिन फिल्म का नाम आपको बताना था। बंगाल से सुखलाल बाला हमारे साथ हैं, और फलक तक इनको लगता है कि फिल्म का नाम होना चाहिए था। जी बिल्कुल। और सरफराज आलम कहते हैं कुछ ख्वाब अधूरे हैं ऐसा टाइटल होगा। ओके, राजेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं ऑल राउंडर, वाह क्या बात है। और यहाँ पर ये कृष्णा जी कितने शैतान हैं आप, कृष्ण कुमार मिश्र जी, आपको पता है ये तीसरी बार आप मैसेज लिखकर भेज रहे हैं कि आपका नाम नहीं पढ़ा या आपका मैसेज नहीं पढ़ा। दोस्त आपका नाम हो चुका और आपकी बात भी हो चुकी। कैलाश शर्मा गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हैं और टाइटल रखते हैं संघर्ष। दोस्तों बिल्कुल सिर्फ फिल्म का नाम और नीचे एक स्पेस छोड़कर अपना नाम और अपनी शहर का नाम लिख के भेजिए, इतना ही काफ़ी है। देखिए हम इंस्ट्रक्शंस को ना बहुत ही प्यार से अगर सुने तो मज़ा आ जाए। और अगले हमारे दोस्त हैं गाज़ियाबाद पूजा कॉलोनी से कपिल। ओके, ये कहते हैं कि मूवी अगर बनती तो उसका नाम होता द ब्लाइंड लव स्टोरी, क्योंकि क्योंकि इनका कहना है कि मैं देख नहीं सकता सुन सकता हूँ। ओके, अगला हमारे पास मैसेज आया है, दोस्त मैसेज समझ नहीं आ रहा है, आपने हिंदी में लिखी है तो मज़ा आ जाएगा, है ना, ये अलग, इससे अलग हम नहीं पढ़ सकते। अनिल शर्मा जी कहते हैं नीचा, मैं तो नीरजा ही लिख देता, जैसे नीरजा एयर हॉस्टेस थी ना और फिल्म बनी थी। अरे वाह अनिल जी, बिल्कुल वो तो मैं पहले ही कह रही थी कि, और प्रोग्राम की शुरुआत भी नीरजा के ही ट्रैक से की थी कि एक फिल्म तो है ना मेरे नाम पर, बस उसी पर ये ख्याल आया कि अगर आपके नाम पर होती तो क्या होती। इमरान अली हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं जियो अपनी ज़िंदगी, ये नाम मैं रखता। ओके, सोनू बिजनौर से हैं और कहते हैं परिवार, परिवार ये टाइटल रखते हैं क्योंकि ये फैमिली मैन है और परिवार के साथ रहना बहुत पसंद करते हैं। थैंक यू। और फिलहाल मुझे लगता है कि मुझे अब अगला ट्रैक चला देना चाहिए, दीपा बिजनौर से, और कहती हैं जीवन शैली, ये नाम रखती है। और फिलहाल ये जीवन शैली ये कहती है कि दोस्त गाने चलाते रहो, और मैं तो कहूँगी दोस्त जीवन ऐसा होना चाहिए कि हर पल हम ऐसे जिएं कि जैसे बस ये आखिरी ही है तो फिर जी लेते हैं ना, सोचते क्यों रहते हैं। एंजॉय कीजिए हर पल, हर मोमेंट।

आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं वही कार्यक्रम जिसको खास बना दिया है आपने। तो आप हैं अपनी फिल्म के डायरेक्टर और नाम रखते हैं कि अगला हमारा जो श्रोता है उन्होंने काजल उत्तराखंड से हैं और नाम रखा है जियो और जीने दो जिसमें किसी की रोक टोक ना हो। क्या बात है। और प्रेरणा ये जो मैसेज आपने भेजा है सिर्फ हम शब्दों में आपकी बात समझ सकते हैं और वॉइस नोट हमें नहीं पता लगेगा, ठीक है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अरे वाह क्या बात है। कुलदीप उपाध्याय जी ने बहुत ही प्यारा मैसेज लिखा है, कहते हैं शिकी विकी यही होगा मेरी फिल्म का नाम। दीपक है हमारे साथ गाजियाबाद से और कहते हैं चलती का नाम जिंदगी में ये नाम रखूंगा, वाओ। और अगला मैसेज राजेश शर्मा जी, आपकी फिल्म का नाम है ना मुझे समझ नहीं आया, ये आन शायद आन आन है इसका नाम और कुछ ख्वाहिशें बाकी हैं, कंचन ऐसा कह रही हैं। बहुत अच्छा लगा कंचन, बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने भेजा है। इसी तरह से ईशा अपने फिल्म का नाम भेजती हैं कि जिंदगी खूबसूरत है इसे जियो और सबको जीने दो। और अगला हमारे पास मैसेज आया है बचपन का भी बचपन काफ़ी ख़तरनाक हो, अंश सोनिया विहार से। अरे ऐसा क्यों लिखा है, बचपन तो बहुत प्यारा होता है। गया बिहार से हमारे पास मैसेज तो आ गया है लेकिन बब्बन कुमार हैं और आपने अपनी फिल्म का नाम नहीं बताया, आप भूल गए। लेकिन दोस्तों जिंदगी जैसी भी हो उसमें प्यार रहना चाहिए, एक दूसरे का साथ रहना चाहिए और आगे बढ़ता रहना चाहिए।

मैं सोच रही थी अगर मेरी फिल्म होती तो क्या नाम होता, अपने दम पर ख्वाबों की उड़ान, मेरी कहानी, मेरे नियम। और अगले हमारे श्रोता लिख रहे हैं ऑलराउंडर, बिल्कुल। राजेश जी मैसेज मिल गया है, ऑलराउंडर हैं आप, यही नाम रखा है ना फिल्म का। कह रहे हैं राजेश जी फिल्म में हीरोइन भी रखूंगा, अभी नाम नहीं सोचा है किसे रखूंगा। अच्छा जी, जिंदगी पिंग पोंग हो गई है। प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से कहते हैं, और

और बैठे बिठाए प्रवीण जी का मैसेज आ गया है रेवाड़ी से, कहते हैं मैं फिल्म का नाम रखता उदासी। और नवीन जी हमारे साथ जुड़े हैं गुड़गांव से, कहते हैं जिंदगी के ख्वाब ये नाम रखता नीरजा जी मैं। आकाशवाणी रेनबो पर इसी तरह से बने रहिए, सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: वेलकम टू द शो कंट्री कार्निवल, वेयर कल्चर्स कम अलाइव, ट्रेडिशन शाइन एंड एवरी कॉर्नर टेल्स अ स्टोरी। गेट रेडी फॉर अ वाइब्रेंट सेलिब्रेशन ऑफ म्यूजिक।

0: ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
1: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

वेलकम बैक टू द शो दैट इज़ कंट्री कार्निवल विद मी सुहासनी एंड ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट डिक्सी चिक्स सॉन्ग दैट्स कमिंग अप नेक्स्ट देर इज़ ट्रबल एंड कांट बिलीव द सॉन्ग वॉज रिलीज इन 1998 इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम बट समटाइम्स ट्रैवलिंग समवेयर और सेइंग दैट यू आर इन ट्रबल इज़ एब्सोल्युटली राइट टू करेक्ट टू से डिफाइंस अ फ्यू थिंग्स इन लाइफ Because this song was, now the band is known as Chicks and this was one of their number one singles on the Hot Country Singles and Tracks in the August 1998 and they have performed a lot, many songs but they also won a Grammy Award for the best country performance by a duo or group for this particular track.

नमस्कार, पेश हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। संसद ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। इस विधेयक के माध्यम से भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन किया गया है। लोकसभा में अधिग्रहण सुधार विधेयक 2026 पारित होने के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया, जीईएम पर सरकारी खरीद का कारोबार एक दशक में 422 करोड़ से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपये से अधिक हुआ। भारतीय नौसेना और अमरीकी नौसेना का संयुक्त विस्फोटक आयुध रोधक ईओडी अभ्यास 2026 आज से कोची स्थित दक्षिण नौसेना कमान में शुरू। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विद्यावाहिनी योजना के अंतर्गत राजधानी के 200 छात्राओं को मुफ्त साइकिलें वितरित की। मणिपुर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत इम्फाल में बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में हजारों बाइक सवारों ने हिस्सा लिया। रैली का उद्देश्य देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना है। और खेलों में ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। बने रहिए एफएम रेनबो पर। यूं ही

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी में मैं हूँ नीरज, आपके साथ प्रोग्राम है म्यूजिक मस्ती। तो हो जाइए तैयार, म्यूजिक मैं लेकर आ रही हूँ, मस्ती वो तो आप सब में है।

आकाशवाणी रेनबो पर सुरों की महफिल सज चुकी है और मस्ती के मूड में मैं तो आ चुकी हूँ दोस्त। आप बताइएगा क्या हाल है। फिलहाल नीरज श्रीधर और सुनिधि चौहान की आवाज में ये ट्रैक आपके लिए।

होता है ना ऐसा कि कभी कोई धुन दिल को छू जाती है और कभी कोई गीत चेहरे पर मुस्कान ले आता है। आ गए क्या चेहरे पे वो रौनक। गुरु रंधावा और हीर की आवाज में एक बार फिर से ये ट्रैक।

और ये उनके लिए कि उनके उनका कद बड़ा लंबा है। मैडम भी हैं जी, हमारे वाले का भी है।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

आकाशवाणी रेनबो पर मैं हूँ नीरजा चतुर्वेदी, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक मस्ती। और भाई दोस्तों, कहते हैं संगीत दिल की भाषा है, तो आज आपकी दिल की प्लेलिस्ट में कौन सा गाना बज रहा है? कहीं यही तो नहीं है सुनिधि चौहान की आवाज में?

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी रेनबो पर आप हैं नीरजा चतुर्वेदी के साथ और प्रोग्राम सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती। और मैं तो कहूंगी शाम का ये वक्त जब काम का तनाव भी ना हो और दिन भर की थकान जब उतारनी हो तो एक अच्छा गाना आपका पूरा मूड पूरा मौसम बदल देगा। बिल्कुल यही सोचकर कि जिंदगी की जो गुनगुनाहट है ना वो फिर से लौट आए। ना फ्लोर से उतरना है दोस्त और ना हाथ छोड़ना है।

एक मस्ती। और अगला गाना कौन सा होगा जो आपके पैरों को फिर से थिरका देगा? गाने की धुन हो या बोल हो, बिल्कुल दिल में बस जाएगी दोस्त। और मन जो करता है ना हर रोज मिलने का, वही लेकर आई हूँ।

कुछ गाने तो याद बन जाते हैं और कुछ यादें गीतों से ताज़ा हो जाती हैं। कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा, है ना? बस उस कुछ कुछ के लिए ये ट्रैक है आपके लिए, सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में आपके लिए। एक स्लो मोशन सालसा कर लीजिए ना उनके साथ।

0: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: आकाशवाणी रेनबो पर नीरजा चतुर्वेदी है आपके साथ और प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक मस्ती। और मैं तो कहूंगी दोस्तों कि वॉल्यूम जरा बढ़ा लीजिए, क्योंकि अब बारी है दिल खोलकर म्यूजिक मस्ती करने की, क्योंकि मैडम आ गई हैं आपसे वही कहने जो आप बार बार सुनना चाहते हैं।

आकाशवाणी रेनबो के जो श्रोता हैं वो किसी हीरो से कम तो नहीं है, है ना? तो उन्हें बता दिया जाए कि फिर क्या होने वाला है। 9 बजे होंगे समाचार प्रियंका त्रिपाठी के साथ और फिर वो प्रोग्राम पेश करेंगी आपकी याद आती रही। 10:02 पर वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम होगा सुहासिनी के साथ और एक बार फिर से प्रियंका हमारे बीच ले आएंगी। 11:02 पर कार्यक्रम रंगे महफिल और फिलहाल मेरी महफिल में एक और गाना होगा। मैं सोच रही थी कि अगर जिंदगी का कोई ऐसा गीत हो जिसे मैं चाहूँ कि बैकग्राउंड में बजे तो कौन सा होगा, यही होगा दोस्त।

0: आकाशवाणी रेनबो पर मैं नीरजा लेना चाह रही हूँ आपसे इजाजत इसी वादे के साथ कि मिलूंगी ना बहुत जल्दी. फिलहाल ये ट्रैक एंजॉय कीजिए. नमस्कार. और हाँ, मैं प्रियंका के साथ डांसिंग फ्लोर पर ही हूँ आपकी तरह.
1: इंतजार कर रही हूँ.
0: बिल्कुल.

और पेश इस घंटे के मुख्य समाचार। संसद ने विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन के उद्देश्य से कराधान विधेयक पारित कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यूपीआई लेन देन निःशुल्क बने रहेंगे। डिजिटल बैंकिंग अभिलेखों को साक्ष्य रूप में कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक भी संसद से पारित। लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित होने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षों से गृहमंत्री अमित शाह के छात्र आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर वक्तव्य के लिए लोकसभा चलने देने की अपील की। झारखंड में भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज, पुलिस छात्रों को रांची विधानसभा की ओर बढ़ने से रोका। स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ समारोह में युवा शक्ति और विकसित भारत 2047 में युवाओं के योगदान की झलक, पहली बार लाल किले की प्राचीर से गूंजेगा वंदे मातरम। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विद्या वाहिनी योजना के अंतर्गत राजधानी के 200 छात्राओं को मुफ्त साइकिलें वितरित की। दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना में लगभग 6 लाख महिलाओं ने पंजीकरण कराया। राजधानी दिल्ली में भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली गई। मणिपुर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत इम्फाल में बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में हजारों बाइक सवारों ने हिस्सा लिया। रैली का उद्देश्य देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना है। और FIH हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में भारत को पूल डी में रखा गया है। AIR FM रेनबो पर ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: सांस को बहुत देर लगती है आने में, हर सांस से पहले आपकी याद आ जाती है। आपकी याद के जब जख्म भरने लगते हैं किसी बहाने से, आपको फिर हम याद करने लगते हैं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: जी हाँ, प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना, जिसका नाम है आपकी याद आती रही, और मैं हूँ आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी FM रेनबो पर। और 10 बजे तक मिक्स पूरा एकदम तड़का मार लॉन्ग 90s और उसके साथ साथ कुछ 2000 से भी चुनेंगे, मतलब उस गुलिस्तान से भी कुछ फूल चुनकर लाएंगे जो बहुत ही खूबसूरत रहे थे अपने टाइम पर, लोगों ने बहुत पसंद किया था। उन सॉन्ग्स की भी अच्छी खासी लिस्ट है जिसमें से कुछ कुछ कुछ कुछ हम निकाल कर आपके लिए यहाँ इस रेडियो स्टेशन पर, इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए पेश करते रहेंगे। फिलहाल ये जो सॉन्ग है फ्रॉम द मूवी रंगीला, एन्जॉय दिस वन। हरिहरन।

0: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
1: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सराय काली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
0: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
1: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
0: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

वैसे तो अपनी फिल्म इंडस्ट्री में ना, जो अपनी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, इसका हर एक पीरियड, हर एक जो एरा रहा है वो उसको आप गोल्डन कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, नो डाउट। लेकिन उसके साथ साथ चाहे आप उसमें 40 के दशक की बात कर लीजिए, 50 की बात कर लीजिए, 60s, 70s, 80s, 90s को अगर आप गोल्डन कहेंगे ना, तो इसमें कोई ज़रा सी भी गलत बात नहीं है, क्योंकि दिस इज़ द एरा जहाँ आपको कलरफुल चीज़ें मिलती हैं, कॉमेडी मिलती है, एक्शन मिलता है, रोमांस मिलता है ऑफ कोर्स, और जो एक क्यूट लव स्टोरीज होती हैं वो मिलती हैं, सीरियस लव स्टोरी भी मिलती है, बागी टाइप ऑफ मूवीज, और जो मतलब एक तरीके से हर एक परसेप्शन को छूने की कोशिश इस एरा में की गई थी, और कई जो आर्ट मूवीज आती थी उनमें भी एक सोशल जो आईना होता है उसे दिखाने की कोशिश भी उनमें की गई थी, मतलब ऑल दैट 90s एरा इज टू गुड। हालांकि जो क्रिमिनल मूवी का ये सॉन्ग है ना कुमार शानू की आवाज़ में, दिस इज़ माई फेवरेट वन ऑफ द 90s। एंजॉय दिस वन, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी FM रेनबो पर, मैं हूँ आपके साथ प्रियंका।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल,
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

भुला न सके हम तुझे कभी भी, भुला न सके हम तुझे भी कभी भी, तेरी यादों में जीते हैं हम आज भी अभी भी।

0: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी। कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी। दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी।

और अब लेते हैं आपसे इजाज़त, क्योंकि वक्त हो चुका है आपसे अब कहने का टाटा। लेकिन 11 बजे फिर से मिलेंगे गज़लों के साथ, खूबसूरत नज़मों के साथ। फिलहाल छोड़े जा रही हूँ आपको श्रेया घोषाल की आवाज़ के साथ। ख्याल रखिएगा अपना।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: वेलकम बैक, यू आर ट्यून इन टू द शो रेनबो शोकेस विद मी सुहासनी एंड वी आर ऑलमोस्ट 20 मिनट्स इन द शो एंड आई हैव फ्यू मैसेजेस सो लेट्स गो थ्रू देम। आई हैव अ मैसेज फ्रॉम राजकुमार फ्रॉम

महाराष्ट्र अकोला एंड ही सेज गुड इवनिंग आरजे वेलकम हाउ आर यू वंदे मातरम येस आई एम एब्सोल्युटली फाइन होपफुली यू आर टू गुड एज वेल एंड ऑल्सो आई हैव मैसेज फ्रॉम अनुभव फ्रॉम बिहार ही सेज हेलो हाउ आर यू होप यू आर फाइन इन योर लाइफ आई एम एब्सोल्युटली गुड आई एम जस्ट एन्जॉइंग द रेनी सीजन एंड एन्जॉइंग द थिंग्स कम विथ इट लाइक ट्रैफिक एंड लिटल बिट ऑफ ह्यूमिडिटी वेल लेट्स मूव ऑन टू टुडेज artist that is none other than Jonas Brothers and of course they came back with a bang in 2019 and they came back after 6 years after that hiatus from their split and with the release of Sucker in 2019 the song became 34th song in the history of debut number one in Billboard Hot 100 and it became Jonas Brothers number one single on the chart. So here comes that track and also from their sixth studio album titled The Album in 2023 they have two more singles Wayful Horse and Wings. So we also have those songs on our playlist.

और पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आश्वासन दिया, यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने की अपील की, कहा कि गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन। हिमाचल और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। और FIH हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले नहीं होंगे, पुरुष और महिला टीम पूल डी में शामिल हैं। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

प्रोग्राम चल रहा रंगे महफिल, मैं हूँ आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। और अब 12 बजे तक हम और आप साथ रहेंगे खूबसूरत गज़लों के साथ, खूबसूरत नज़मों के साथ और बहुत ही बेहतरीन शायरों की लिखी हुई कुछ ख़ास लाइनों के साथ। फिलहाल पंकज उदास साहब की आवाज़ में ये गज़ल है आपके लिए, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेनबो पर।

तेरे बदन की खलाओं में आँख खुलती है, तेरे बदन की खलाओं में आँख खुलती है।

हवा के जिस्म से जब जब लपट के सोता हूँ। ये जो अल्फाज आपने सुने ये अमीर इमाम साहब के हैं, भारत के जाने माने शायर हैं, ये गज़लकार हैं। ये अनूठे अंदाज के लिए बड़े ख़ास इनके कलम से निकले हुए अल्फाजों को समझा जाता है, माना जाता है। और उत्तर प्रदेश के संभल में जन्म हुआ था उनके 1984 में। और ऐसी पता नहीं कितनी ही इनके कलम से निकली हुई नज़में हैं जो कि एक अलग मकाम रखती हैं और एक अलग जगह रखती हैं। प्रोग्राम आपका वही है रंगे महफिल, मैं हूँ आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी FM रेनबो पर। क्यों ना अपनी खूबी एक किस्मत पे इतराती हवा, क्यों ना अपनी खूबी एक किस्मत पे इतराती हवा, फूल जैसे एक बदन को छूकर आई थी हवा।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: बहुत खूबसूरत हैं आंखें तुम्हारी, बना दीजिए इनको किस्मत हमारी।
1: उसे और क्या चाहिए जिंदगी में, जिसे मिल गई है मोहब्बत तुम्हारी।
2: जी हाँ, प्रोग्राम आपके चल रंगे महफिल में हूँ आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। हमारे देश में बेहतरीन शायरों की और उनके अल्फाजों की, उनके कलम से निकले हुए चंद जो नज़में थी ना, उनका कोई जवाब नहीं है। चाहे अभी की बात कर लीजिए, पहले की बात कर लीजिए, मेरे ताकि मीर साहब एक तरीके से अगर देखा जाए तो 17वीं शताब्दी के शायर। आगरा में जन्म हुआ था इनका और उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए थे। भारत के बहुत ही अच्छे शायरों में इनकी गिनती होती है। इनकी लिखी हुई नज़में लोगों को भी काफ़ी पसंद आती हैं और उन्हीं नज़मों में से एक पूरी गज़ल है, गज़ल के अशआर हैं ये। सोचा आपके लिए ज़रा पढ़ दें इनको। हस्ती अपनी हबाब किसी है, हस्ती अपनी हबाब किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है। नाजुकू उसके लबों की क्या कहिए, नाजुकू उसके लबों की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब किसी है। चश्मे दिल खोल इस भी आलम पर, या के औकात ख्वाब किसी है। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब खराब सी है। नुक्ता खाल में तेरा अब्रू बैतक इंतखाब किसी है। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना खराब किसी है। आतिश गम में दिल भुना शायद, आतिश गम में दिल भुना शायद, देर से वो कबाब किसी है। देखिए अब्र की तरह अब के मेरे चश्मे पर आप किसी हैं। मेरुन नीमबाज आँखों में, मेरुन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब से है।

रहजन नहीं तो फिर क्या है? आंख रहजन नहीं तो फिर क्या है? लूट लेती है एक साथ काफिला दिल का।

हाँ तो भैया क्या प्लान है 31 दिसंबर की रात का? FM रेनबो का प्लान है आपके साथ मिलकर कुछ मौज कुछ मस्ती करने का। हाँ तो भाई मिलकर बढ़ाएंगे 2026 में पहला कदम। इस मुलाकात में आपके साथ रहेंगे संतोष राव, माला नेगी, राजेश कुमार, प्रवीण कुमार, वीर दमन और ओपी राठौर भी। 31 दिसंबर की रात उमंग 2026 में न्यू ईयर पार्टी सिर्फ FM रेनबो पर। न्यू ईयर स्पेशल उमंग 2026 रात 9 बजे से नए साल तक सिर्फ FM रेनबो पर।

0: है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग एफएम रेनबो दिल्ली पर।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
3: अब तो जाते हैं बुध कदे से मीर, अब तो जाते हैं बुध कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। चलिए इजाजत दीजिए, ख्याल रखिएगा अपना और जगजीत साहब की आवाज़ के साथ छोड़े जा रही हूँ आपको, और सुनते रहिए आप अपना रेडियो स्टेशन AIRFM रेनबो इंडिया।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल। समय हुआ है रात्रि के 12 बज चुके हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आश्वासन दिया, यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी मिल गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन होगा। दक्षिण अमेरिका देश कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया, जिससे पश्चिमी कोलंबिया के शहरों में 47 लोगों की मौत होने और दर्जनों इमारतों के ढहने की खबर है। भारतीय मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और FIH हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले नहीं होंगे। पुरुष और महिला टीम पूल डी में शामिल है। ये थे एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

रात्रि के 12:03 हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और अब आप सुनेंगे नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक जीरो आर शो में, जिसमें आप गाने सुनेंगे वो जो कुछ गाने आप भूल चुके हैं उन गानों को याद करेंगे और कुछ गाने नए गाने होंगे, तो उन सभी गानों का आप मजा लीजिए और ऐसे ही गानों की दुनिया में खो जाइए। तो स्टार्टिंग करते हैं विशाल भारद्वाज की आवाज में फ्रॉम द मूवी सात खून माफ।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं जीरो आर शो में नॉनस्टॉप बॉलीवुड हिट म्यूजिक। और रात के 12:54 हो चुके हैं और अब इस शो का टाइम यही पूरा होता है और 1 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार। लेकिन अभी के लिए रोमियो मूवी से ये गाना सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में।

नमस्कार, प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आश्वासन दिया, यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने के वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी मिल गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन होगा। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया, जिससे पश्चिमी कोलंबिया के शहरों में 47 लोगों की मौत होने और दर्जनों इमारतों के ढहने की खबर है। भारतीय मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। FIH हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले नहीं होंगे। पुरुष और महिला टीम पूल डी में शामिल है। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

सुहानी रात। कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना उदित नारायण की आवाज में, फिल्म सिर्फ तुम से। आइए अब सुनते हैं क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता फिल्म से अगला गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में।

सुहानी रात कार्यक्रम जारी है आकाशवाणी के रेनबो चैनल से। आइए अब सुनते हैं गुना फिल्म से कार्यक्रम का अगला गीत, अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाजों में। गीत लिखा है प्रवीण भारद्वाज ने और संगीत दिया है आनंद राज।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरी सी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
0: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
6: नंबर अननोन

0: यानी अपरिचित है।
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
0: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
0: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
0: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
0: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
0: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। कार्यक्रम जारी है सुहानी रात। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में अब ये गीत। फिल्म है साजन चले ससुराल। गायक कलाकार हैं कुमार सानू और अलका याग्निक।

राज फिल्म से आइए आप सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज़ में ये अगला गीत। समीर के लिखे बोल हैं और नदीम श्रवण का संगीत।

और अब पेश है सुहानी रात कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, कभी खुशी कभी गम फिल्म से कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, अमित कुमार, उदित नारायण और सोनू निगम की आवाजों में।

रात्रि के 2 बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं AIR FM रेनबो चैनल और अब सुनिए मुख्य समाचार। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आश्वासन दिया, UPI लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी मिल गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन होगा। यूक्रेन ने कल मध्य रूस के तातारस्तान इलाके में निज़्नेकामस्क के पेट्रोलियम हब पर हमला किया, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई है और 75 लोगों के घायल होने की खबर है। भारतीय मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और FIH हॉकी विश्व कप 2006 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले नहीं होंगे। पुरुष और महिला टीम पूल डी में शामिल हैं। ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।

आधी रात के 2:53 हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम भुलाए ना बने, जिसमें सॉफ्ट मेलोडियस सॉन्ग्स का आप मजा लेंगे, वो भी नॉन स्टॉप। तो अभी शुरुआत करते हैं भूपेंद्र सिंह की आवाज में इस गाने के साथ, फ्रॉम द मूवी सत्या। तो ऐसे ही गानों की लड़ी चलती रहेगी और आप नॉन स्टॉप गानों का मजा लीजिए।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
4: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में

हम सबकी जिम्मेदारी है, आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर टाइम हुआ है रात के 2:39 और आप सुन रहे हैं भुलाई ना बने शो, जिसमें आप सुन रहे हैं वो गाने जो आप किसी टाइम पे भूल चुके थे और बहुत ज्यादा भी सुनते थे, लेकिन उन गानों को दोबारा से रिमाइंड करने का टाइम आ चुका है और उन गानों को ही एंजॉय कीजिए। चित्रा की आवाज में फ्रॉम द मूवी अशोका।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर टाइम हुआ है रात के 2:50 और आप सुन रहे हैं भुलाई न बने शो, जिसमें वो गानों का आप मजा ले रहे हैं जो आप किसी टाइम पर सुनते थे लेकिन अब भूल चुके हैं। उन गानों को दोबारा से रिमाइंड करने का टाइम आ चुका है। नॉनस्टॉप गाने आप एंजॉय कीजिए और ये गाना है फ्रॉम द मूवी अनजान अनजानी।

आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल पर भोर आप सुन रहे हैं भुलाई ना बने शो। रात के 2:55 और अब ये शो ऑलमोस्ट एंड अप के लिए आ चुका है, तो इस शो का ये लास्ट गाना है, लेकिन नॉन स्टॉप गाने चलते रहेंगे। और दोपहर 3 और क्षमा कीजिए, अभी यानी थोड़ी देर में आधी रात को 3 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार।

प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आश्वासन दिया, यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी मिल गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन होगा। पश्चिमी कोलंबिया में कल 7.4 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया, जिसमें कम से कम 111 लोगों की मौत हो गई है और 87 से अधिक लोग घायल हुए हैं। भारतीय मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। FIH हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले नहीं होंगे। पुरुष और महिला टीम पूल डी में शामिल है। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

मिडनाइट मेलोडीज कार्यक्रम का सबसे पहला गीत आपने सुना शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल की आवाजों में। फिल्म था चांदनी चौक टू चाइना। आइए अब सुनते हैं हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म से कार्यक्रम का अगला गीत अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में।

इरशाद कामिल के लिखे बोलों को अभी आप सुन रहे थे अभिजीत श्रीवास्तव की आवाज़ में, फिल्म भारत से। विशाल शेखर का संगीत था।

टू स्टेट्स फिल्म से अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपता को। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे बोल थे और शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: एफएम रेनबो चैनल पर कार्यक्रम जारी रहेगा मिडनाइट मेलेडीज इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान

0: कल्याण मंत्रालय।
1: अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मिडनाइट मेलेडीज में।

आइए सुनते हैं तेरा सरूर टू फिल्म से अरिजीत सिंह और नीति मोहन को। गीत लिखा है समीर अंजान ने, संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

अरिजीत सिंह, नीति मोहन और सुजेन डिमेलो की आवाजों में अभी आपने सुना ये गीत। आइए अब सुनते हैं रंगून फिल्म से एक बार फिर से अरिजीत सिंह की आवाज में गुलजार का लिखा हुआ गीत और विशाल भारद्वाज का दिया हुआ संगीत।

अक्षय त्रिपाठी का लिखा हुआ गीत था और विशाल मिश्रा का संगीत। कार्यक्रम जारी है मिडनाइट मेलेडीज़।

आर को ब्रावो मुखर्जी की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत रुस्तम फिल्म से। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत अरिजीत सिंह, अमाल मलिक और तुलसी कुमार की आवाज़ों में, फिल्म एयरलिफ्ट से।

सुबह के 4 बज चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो पर अब सुनिए मुख्य समाचार। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी मिल गई है।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन होगा। पश्चिमी कोलंबिया में कल 7.4 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया, जिसमें कम से कम 111 लोगों की मौत हो गई है और 87 से अधिक लोग घायल हुए हैं। भारतीय मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और FIH हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले नहीं होंगे। पुरुष और महिला टीम पूल डी में शामिल है। ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।

सुबह के 4:02 और 45 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और ये टाइम होता है नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक का। और अब शुरू होता है सारे गामा, जिसमें आप बिना रुके गानों को सुनेंगे एक के बाद एक। तो अभी शुरुआत करते हैं फिलहाल मूवी से आशा भोसले जी की आवाज में इस गाने के साथ, और इस गाने के बाद ही एक के बाद एक गाने की झड़ी शुरू हो जाएगी। तो बस आप ऐसे गानों का मजा लेते रहिए और गानों की दुनिया में खो जाइए।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

नमस्कार, प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आश्वासन दिया, यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी मिली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने की अपील की। कहा, गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन होगा। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से भारी तबाही, 111 लोगों की मौत और 87 घायल, कई लोगों के मलबे में

दबे होने की आशंका। यूक्रेन ने कल मध्य रूस के तातरस्तान इलाके में निज़्नेकम्स्क के पेट्रोलियम पर हब पर हमला किया, जिसमें 13 लोगों की मौत और 75 लोग घायल हुए। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और खेलों में FIH हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले नहीं होंगे। पुरुष और महिला टीम पूल डी में शामिल है। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना।